आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है, तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
1: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
0: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
1: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
0: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: व्यक्तियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्यौहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
2: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
3: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में JPSC JSSC परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
6: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बेछोरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। आईएमडी ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं, झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक, और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्य की पहली सुर्खी है, पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है, संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है, मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है, एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है, टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा, हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है, कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan to flag off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam in a short while. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic West Bengal today. And in Commonwealth Fencing Championship, Karan Singh, Sharjin Shantimol and Tanishka Khatri clinch gold medals in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 is to be tabled for consideration and passing. More from our correspondent.
9: The Kerala Alteration of Name Bill seeks to change the name of State of Kerala to Keralam in the first schedule of the Constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. The resolution stated that while the state is known as Keralam in Malayalam, its name is recorded as Kerala in the first schedule of the Constitution. Meanwhile, the Mines and Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2026 aims to amend the Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957. The bill aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly and well-equipped to fulfill the country's growing demand for critical minerals. Dilnashi Arzu, Akashwani News, Delhi.
8: Prime Minister Narendra Modi will release the autobiography of former President Ramnath Kovind, titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles, in New Delhi today. The Prime Minister will also address a gathering on the occasion. The autobiography offers a deeply personal account of former President Ramnath Kovind's life journey, tracing his experiences, struggles and achievements from his early years to his distinguished public life and eventual service as the 14th President of India. The book provides insights into the values, experiences and circumstances that shaped his journey and public service. Various programs are being organized across the country under Har Ghar Tiranga campaign. Vice President C.P. Radhakrishnan will flag off the Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam in New Delhi in a short while. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi urged citizens to celebrate the Independence Day with honour, pride and glory and take a pledge for a developed India. In a video message posted on Instagram, Mr. Modi urged people to hoist the national flag at every home as part of the Har Ghar Tiranga, Ghar Ghar Tiranga, Har Mandapam.

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: कोई मिल गया,
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
3: बिंदास मॉर्निंग।

बस बस बस बस बस भैया बहुत सारा म्यूजिक बज गया है। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? सुप्रभात, नमस्कारम, आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक ठंडा ठंडा ताजा ताजा फ्रेश वाला गुड मॉर्निंग, बिकॉज आज की जो धूप है ना वो हमें ये फील करा रही है भाई कि आज आप कहीं भी आप बच नहीं पाओगे। आप कहीं भी चले जाओ, आज सूर्य देवता आपको ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे। इतनी तेज वाली गर्मी है, लग रहा है सूरज चाचू बिल्कुल नहा धो के प्रकट हुए हैं। हां जी, बहुत भयंकर गर्मी है यार। दोस्तों आप जुड़ चुके हैं एफ ए मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद के साथ। यह है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। वक्त हुआ है 8:23 और आज बहुत ही खूबसूरत तारीख है 12 अगस्त की। जी हाँ श्रोताओं, आप सभी का खुले दिल के साथ, खुली बाहों के साथ वेलकम बैक है जी।

श्रोताओं कहते हैं इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दर्द देता है तो कोई सुकून देता है, कोई तकलीफ देता है तो कोई सहारा बन जाता है। आगे बढ़ते हुए आपसे कहना चाहेंगे कि आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। आज का दिन बहुत स्पेशल है। क्यों खास है आज का दिन, क्या कुछ स्पेशलिटी है आज की तारीख में, डेफिनेटली सब कुछ आपको पता लगेगा। एवरीथिंग इसी रेडियो स्टेशन।

0: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना

0: बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
4: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
3: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

0: सुप्रभात, अच्छे गानों के बाद वेलकम बैक है। बज के 37 मिनट का समय हो रहा है, यस 8:37 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में, और फिलहाल वेंसडे मॉर्निंग है। ढेर सारे मैसेजेस आपके पहुंच रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इन प्यारे प्यारे तमाम संदेशों के लिए, धन्यवाद। हमारे पास मैसेज पहुंचा है यहाँ पर, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हाल चाल है। गुड मॉर्निंग, ये रिधमा हमारे साथ जुड़ चुकी है लाइन पार से, सुप्रभात पहुंचाती है। इसके अलावा हमारे पास मंजीश जी का मैसेज पहुंच रहा है मानसरोवर कॉलोनी से, लिखते हैं गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हैं आप। इस वक्त हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और निकल रहे हैं अपने सफर की ओर, आपके गाने सुनते हुए बहुत आनंद आ रहा है। हाय गुड मॉर्निंग, शुभम मेरे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं बच्चों को स्कूल छोड़कर आ रहा हूं। अरे हाँ, आज तो बच्चों का स्कूल शुरू हो गया है ना, दो दिन की छुट्टी के बाद फाइनली बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। वेरी वेरी नाइस है, ऑल द वे बेस्ट जो बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। एंड फाइनली जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी अभी जब आ रहा था स्टूडियो तो मैंने देखा बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, पापा स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, मम्मियाँ स्कूल छोड़ने जा रही हैं, कुछ बच्चों की स्कूल वैन आ रही हैं, बसेस आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह बच्चों के स्कूल जाते देखते हैं। वैसे आपके बच्चे स्कूल पहुंचे या नहीं ये भी आप मुझे बताओ यार फटाफट से, अगर आप छोड़ के आ रहे हो या छोड़ने जा रहे हो तो भी आप मुझे बता सकते हो। मेरा व्हाट्सएप का नंबर बहुत सिंपल है, 9837896896 पे आनंद के साथ जुड़ चुके हैं आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, 12 अगस्त की सुबह इस इंडिपेंडेंस डे क्या स्पेशल हो रहा है मुरादाबाद के अंदर, ये लेटेस्ट जानकारी आपको मिलेगी मेरे साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल आज 12 अगस्त की सुबह क्या कुछ खास कहती है इस पे हम एक नजर डालेंगे, फिर लौट कर आएंगे। तो और कौन कौन से स्पेशल डेज आज मनाए जाते हैं, हाँ जी इस पे बात करेंगे। सावन चल रहा है भैया, सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज वेंसडे है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है और खूबसूरत गीतों का यहाँ पर माहौल भी बना हुआ है, तो सारी चीजें तो आपको यहाँ पर मिल रही है। हौले हौले बहुत सारी और भी जानकारियां हैं जो आपको मैं पहुंचाता रहूंगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बस आप हमारे साथ अपने संदेशों को पहुंचा सकते हैं 9837896896 पर। आने वाला अगला बहुत ही धांसू गाना, इसको सुनते हैं आगे बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या कुछ खास है आज हेडलाइंस में, क्या कुछ स्पेशल है इस पे हम बात करेंगे। 90s का बड़ा ही अमेजिंग गाना आपके रेडियो पे निकाल दिया है मैंने शानुदा की आवाज में, इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। ये बुधवार की सुबह है।
1: चोरी चोरी दिल तेरा चाहेंगे, ला ला ला ला ला ला ला ला, अपना तुझे हम बनाएंगे।
0: सुजाता एंड शानुदा की आवाज में एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं इस ट्रैक को। गुड मॉर्निंग।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है। तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: क्या बात है जी, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 RJ आनंद के साथ। चलिए मैं वापस लौट कर आता हूँ। इस गाने के बाद मेरी एंट्री होने वाली है। एक धांसू गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। वेंसडे की सुबह 8:46 हो रहे हैं, स्टेशन क्लॉक में आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मैं वापस आता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आज 12 अगस्त को क्या स्पेशल है, आज की तारीख क्यों खास है, क्या कुछ स्पेशल है आज की तारीख में। ये सारी कड़क अपडेट आपको पता लगेंगी मेरे साथ स्टेशन ऑफ द नेशन पर। आप ऐसे ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद और बढ़िया बढ़िया गानों के लिए ट्यून इन रहिए यार हमारे साथ। अभी इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं एंड लौट कर आते हैं, फिर आपके साथ बात करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। ये है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वंडरफुल गाना इस गाने के बाद. वेलकम बैक है वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन. आनंद के साथ सुन रहे हैं आप एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक. अच्छे से गाने सुनते हुए जो है जब आगे बढ़ते हैं तो मजा आता है. कविता कृष्णमूर्ति की ब्यूटीफुल आवाजों में भी आपने इस गाने को सुना. चलिए आगे बढ़ते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग और एक बार जोरदार तालियां. थैंक यू सो मच. मैंने कहा था अगर आप इम्पीरियल तिराहे पे जो है आज बहुत अच्छा एक रैली होने वाला है. दिस इज द भव्य रैली. एंड अगर आप इस रैली में जा रहे हैं या कोई अपडेट अगर आप मुझे पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज डू टेल 9837896896. जो भी कड़क अपडेट है आप मुझे डेफिनेटली पहुंचा सकते हैं. मेरे पास मैसेज आ गए हैं लेकिन अभी फिलहाल आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं आप सुन रहे हैं
1: FM
0: मुरादाबाद 89.6 FM. ये FM मुरादाबाद सुन रहे बॉस. वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है आज 12 अगस्त को. इसके अलावा इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है. बाकी एक बार एक नजर डाल लेते हैं और आज के इतिहास के पन्नों पर क्या कुछ खास रहा है आज की तारीख में. आपको बता दें आज के दिन बॉलीवुड के बिग बच्चन यानी अमिताभ बच्चन जी की माता जी का जन्म हुआ था आज के दिन सन 1914 में. जी हाँ, आज के दिन उनकी मदर का जो है जन्म हुआ था श्रोताओं. और आज के दिन जैसे कि मैंने बताया इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है. इसके अलावा विश्व हाथी दिवस यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे आज मनाया जाता है. 12 अगस्त से जुड़ी कुछ और विशेष जानकारियां हौले हौले आप तक पहुंचती रहेंगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन. आपके ढेर सारे मैसेज मुझ तक आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. एंड आपको बताते चलें आज ही के दिन आमिर खान की जो फिल्म थी तारे जमी पर उसके लिए उनको एक गोलापुरी श्रीनिवास में मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया था आज ही के दिन श्रोताओं. आज का दिन और तमाम सारी बातों के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. और बाकी धीरे धीरे आपको हम सारी चीजें बताते रहेंगे. बात करें आज के दिन जन्मे कुछ खास लोगों की तो इरफान हबीब का जन्म हुआ जो भारतीय इतिहासकार हैं. आज के दिन 1931 को इनका जन्म हुआ था श्रोताओं आज ही के दिन. इसके अलावा ज्ञानेन्द्र पांडे जी का जन्म हुआ आज के दिन 1972 में जो भारतीय क्रिकेटर हैं. आज के दिन इनका जन्म हुआ था श्रोताओं. ये आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें. और अभी आगे बढ़ते हैं और अगर आप भी हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो आपका मोस्ट वेलकम है 9837896896 पर. सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं.
2: मर्यादाओं से घिरा है इश्क मेरा, तुम्हें चाहना भी है और सबसे छुपाना भी है. दिल में रोशन है तुम्हारी याद का दिया, मगर इस रोशनी को दुनिया से बचाना भी है. निगाहों में बसा है ख्वाब तुम्हारा, लबों पर खामोशी को सजाना भी है. करीब रहकर भी फासलों का लिहाज, हर धड़कन को यूं ही समझाना भी है. सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम. मैं आपका दोस्त कुलदीप गुप्ता उधौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से और आप सुन रहे हैं मुरादाबाद 89.6 रेडियो. बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो. ओके, धन्यवाद.
0: वो भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं. हमें बहुत खुशी हो रही है और ऐसी तमाम प्यारे प्यारे संदेश आपके पास हैं. थैंक यू सो मच. और बाकी इंपीरियल तिराहे पर अगर आप पहुंच रहे हैं तो ऑल द वे बेस्ट. नहीं पहुंचे हैं तो जरूर पहुंचिए, वहां पर भी कुछ स्पेशल हो रहा है.
3: अभी तो आनंद यहां पर यार थोड़ा सा टाइम लगेगा.
0: ओके.
3: और अभी बच्चे स्कूल वगैरह से आ रहे हैं अभी तो शायद उसके बाद दिल्ली निकले. तो अगर तुम अपना शो थोड़ी देर के लिए वो शेड्यूल करके आ सकते हो तो और ज्यादा बेहतर रहेगा.
0: ओके जी, देखिए चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शो को शेड्यूल करके आ पाऊँ लेकिन पॉसिबल नहीं है बॉस. लेकिन थैंक यू सो मच, आपने हमें बोला कि हम वहां पर पहुंचे. तो देखिए अभी जो है शुरू नहीं हुई है इम्पीरियल से जो आज प्रोग्राम होने वाला है हर घर तिरंगा अभियान को लेकर एक भव्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है इम्पीरियल तिराहा से. अभी 8 बजे का समय था लेकिन थोड़ी बहुत इधर उधर हो ही जाता है यार, हम इंडियंस हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है. लेकिन अभी जैसे भाई ने बताया कि अभी बच्चे जो है आ रहे हैं स्कूल से तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो मुझे लगता है कि 9 बजे के समथिंग शायद स्टार्ट हो जाए और अगर थोड़ा सा डिले हो जाएगा तो मैं भी पहुंच सकता हूं इस रैली का हिस्सा बनने. एंड बाकी आप लोग भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए 9837896896 पर. आप जा रहे हैं क्या इंपीरियल की तरफ आज तो मुझे जरूर बताइएगा आप. 8:56 हो रहे हैं, ढेर सारे लिसनर्स मेरे साथ जुड़े हैं, आपके संदेशों को मैं जरूर शामिल करूंगा, अभी लौट कर आऊंगा तो इसी स्टेशन पर, और आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं 9837896896 पर। हमें इंतजार है आपके प्यारे प्यारे संदेशों का, जुड़ी ना हमारे साथ, फटाफट से आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम इंतजार कर रहे हैं आपके मैसेजेस का। इसी नंबर पे आप हमें संदेश पहुंचाइए 9837896896, इस नंबर पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्यारी प्यारी बातें, अपनी सुंदर सुंदर विचार हम तक जरूर साझा करिएगा आज की सुबह। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगी तो हमें बेहद खुशी होगी। चलिए आने वाला गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, फुल ऑन वाइव आपको देगा ये गाना, है फाल्गुनी पाठक की आवाज में। आप जहां भी निकल रहे हैं विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।

0: गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। ये वेंसडे की सुबह है, स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है सुबह के 9:01।
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
2: अरे आनंद इज बैक।
3: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है, तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं।
3: हाँ जी भैया, देखो बात ऐसी है, खास मौके तो बार बार आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज का जो मौका है वो शायद कल ना मिले आपको। हाँ जी, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 आनंद के साथ, और लेडीज एंड जेंटलमैन, एक अमेजिंग यू नो वाइब यहाँ पर आपको मिल रही है। आई एम श्योर आपको मजा आ रहा होगा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यार फाइनली। हाँ जी, कैसे हाल चाल है? ढेर सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, एंड दिस इज माई लास्ट आवर। यहाँ पर आपसे ढेर सारी बातें होंगी। वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है आज, इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है आज, जेंजी को हम सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज यूथ मतलब जेंजी, राइट? अभी ये पता नहीं जेंजी वर्ड आया कहां से, सीरियसली बता रहा हूं, मतलब मेरे को सुनने में बड़ा अजीब लगता है। मैं क्या ही कर सकते हैं भाई, जमाने के साथ चलना जरूरी है। और क्या स्पेशल हो रहा है अभी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड इंपीरियल तौराहे पे अगर आप पहुंच गए हैं, वहां पे कुछ लेटेस्ट हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो प्लीज मुझे बताओ यार 9837896896। पर देखो मैं वहां जा नहीं पा रहा हूं, तो शायद आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। आने वाला गाना इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, लौट कर आता हूं, उसके बाद ढेर सारी बातें आपको बतानी है बैक टू बैक। क्या कुछ खास चल रहा है, एक बेंगलुरु का किस्सा बहुत वायरल हुआ, इज गोइंग वेरी वेरी वायरल, वर्क फ्रॉम होम को लेकर बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है लड़की। क्या हुआ है ऐसा जो भाई साहब ये बहुत ट्रेंड कर रही है आज सुबह सोशल मीडिया पे, आता हूँ लौट के फिर बताता हूँ। एक बॉलीवुड की बहुत ही प्यारी खूबसूरत सेलिब्रिटी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आप कुछ कहना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो 9837896896 पे, 9837896896 पे। एल बी राइट बैक गाइस।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
2: लेकिन सोनिया
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
2: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
3: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: दुनिया के लिए जफर बस एक पहेली था।
5: मुझे समझ नहीं आता।

ब्यूटीफुल ट्रैक कलंक का टाइटल सॉन्ग अभी आप एंजॉय कर रहे थे मेरी यानी आनंद के साथ। वंस अगेन वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद। एंड गाइस फाइनली मुझे भी जाना पड़ेगा इंपीरियल तेरा। मैं जब वीडियोस देख रहा हूँ, फोटोज देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे शेयर किए हैं। यहाँ पे मुझे अमनदीप ने शेयर किया है, बहुत ही सुंदर माहौल वहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब इतने प्यारे तिरंगे लोगों ने अपने गालों पे एकदम जोशीले अंदाज में जो है खुद को एकदम रंग में रंग लिया है, तो मेरे को लग रहा है कि मुझे स्टूडियो से बाहर निकल के जाना चाहिए। सो फटाफट से मैं भी पहुंचने वाला हूँ, जरा सी देर में कुछ अच्छे गाने आपके लिए छोड़ के जाऊंगा यहाँ पर, डोंट वरी। एंड 9:11 का समय हो रहा है स्टेशन क्लॉक में। यार देखो कुछ नया हो रहा है, हर घर तिरंगा अभियान का जो रैली इतना प्यारा इंपीरियल से इसकी शुरुआत हो गई है, तो हो सकता है मैं भी आपको वहीं मिल जाऊं। थोड़ी सी देर में अगर आप पहुंच रहे हैं तो मैं भी पहुंच रहा हूँ, जरा सी देर में स्टूडियो से निकल के सीधा आपको वहीं मिलने वाला हूँ। एंड बाकी लेटेस्ट कड़क अपडेट के लिए प्लीज फॉलो कीजिए FM मुरादाबाद 89.6 की ऑफिशियल आईडी, वहां पर आपको सारी कड़क अपडेट देने वाला हूँ। लेकिन अभी फिलहाल कड़क अपडेट ये है कि भैया अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी यूट्यूब ने। हाँ जी देखिए क्या हो रहा है ना कि रातों रात कोई इंसान को अगर कह दिया जाए कि भैया तुम्हारी जॉब से तुम्हें आउट कर दिया है, या भैया तुम्हारी कल से जॉब पे आने नहीं है, तुम्हारा मतलब कैंसिल हो गया है, तो उस बंदे को कैसा लगेगा? कैन यू इमेजिन? वैसे यूट्यूबर्स के साथ हो रहा है यार। अब यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन का एक नया रूल सेट कर दिया है, ये रूल जो है 2027 में स्टार्ट होने वाला है। पहले जो वॉच टाइम था वो 4000 कुछ था ना, मतलब 4000 के समथिंग था आई थिंक, लेकिन अब उसको बढ़ाकर इन्होंने 8000 कर दिया, यानी कि 8000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए। मतलब सो टिपिकल यार, लोग 4000 नहीं कर पाते, 8000 घंटे वॉच टाइम कैसे पॉसिबल होगा? आई डोंट नो। आई नो जिसके पास टैलेंट है वो कर लेगा, दिस इज वेरी इजी। बट अभी ये जो यूट्यूब ने एक नया रूल फॉलो कर दिया है क्रिएटर्स के लिए, मतलब थोड़ा सा तो आफत आ गई है यार, नो डाउट, है ना? मतलब थोड़ा सा मुश्किलें तो बड़ी है, बट आई थिंक ऐसा होना तो नहीं चाहिए था यार, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जिनका कंटेंट अच्छा है, जिनके पास अच्छी क्रिएटिविटी, ऑफकोर्स उनके लिए 8000 घंटा वॉच टाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मतलब ऑफकोर्स होगा बट बहुत ज्यादा टिपिकल वाला नहीं होगा। जिनके पास अच्छा टैलेंट है वो डेफिनेटली यहां तक पहुंच जाएंगे। एंड पीपल हैव अपलोडिंग 1 crore सेल्फी विद तिरंगा। कैन यू इमेजिन, 1 crore लोगों ने हर घर तिरंगा की सेल्फी अपलोड भी कर दी है हरघरतिरंगा.com पे जाके। अगर अभी तक आपने नहीं किए तो फिर आप क्या करें? व्हाट इज दिस यार, करो ना अपने छतों पे, अपने घरों में जहां पे भी आप हैं, एक तिरंगे के साथ आपने सेल्फी लेनी है एंड उसको अपलोड करना है www.hargartiranga.com पे जाके। सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा एंड आपको बहुत प्राउड फील होगा यार, तो आप डेफिनेटली इसमें भी एनरोल हो सकते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट, जैसे अभी ये रैली हो रही है मुरादाबाद की, सबसे भव्य, आप इसमें भी इनरोल हो सकते हैं। बाकी आप लोगों के ढेर सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। और गाइज अभी मैं निकलता हूँ, हाँ फिर मैं आपको मिलूंगा। अब वापस आने का तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, लेकिन मैं आपको टुमारो डेफिनेटली मिलने वाला हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। 9:13 हो रहे हैं, बट अच्छे गाने डेफिनेटली छोड़ के जाऊंगा आपके लिए इस स्टेशन पर। विकी सागर मेरे साथ जुड़े थे, लिखते हैं रेडियो वाला आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग। सहारनपुर से जोन रोजी पलविलीज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हेलो हाय गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है? एंड मेरे पास मैसेज आ रहा था जिला मुरादाबाद संभल से नूरी जी का, हाय गुड मॉर्निंग। एक और मैसेज मेरे पास आ रहा है, हाय गुड मॉर्निंग कैसे हाल चाल है? आचल सैनी गुड मॉर्निंग पहुंचाती है। गुड मॉर्निंग आनंद भाई, अमित वर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग कैसे हाल चाल है? जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तूर से आकांक्षा सैनी हमारे साथ जुड़ी है, गुड मॉर्निंग कैसे हाल चाल है जी? राजा कश्यप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की मॉर्निंग। एंड हमारे पास मैसेज पहुंचा है रिहाना का, रानी नांगल से गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं। ये हमारे साथ दुर्गेश सैनी जुड़ चुके थे एंड बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े, गुड मॉर्निंग जी कैसे हाल चाल है आनंद जी? ये नाइमुल अकरम जी मेरे साथ जुड़े, लिखते हैं आज बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं इसलिए स्कूल नहीं जा पा रही, कोई बात नहीं आज बच्चे को रेस्ट दो। हाय गुड मॉर्निंग, जय श्री राम कैसे हाल चाल है? गुड मॉर्निंग जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। ये यूपी से मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल मेरे साथ जुड़े हैं। सो गाइज अभी मैं पहुंच रहा हूँ उस रैली में जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, आई एम सो यू नो हैप्पी और मुझे जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड अगर अभी वहां आप नहीं जा रहे तो आप भी आइए, मैं भी आपको वहीं मिलने वाला हूँ। जरा सी दिन में इंपीरियल के आसपास मैं आपको नजर आऊंगा एंड वहां से लाइव कलर का अपडेट आपको देने वाला हूँ, क्या स्पेशल चल रहा है सब कुछ आपको पता लगेगा मेरे इसी स्टेशन पे भी और हमारे इंस्टाग्राम पे भी। फॉलो कर लो, ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से, मेरा आईडी है रेडियो वाला आनंद के नाम से, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड बाकी थैंक यू सो मच आप जुड़े हमारे साथ। 9:15 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में एंड बस आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, और भी बहुत सारी चीजें जो होले होले आपको पता लगेंगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
8: कहा मेरी कसम,
7: मिस कर दिया तो रीलोड।
9: चाय चाय चाय,
7: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय।
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: क्या मेरी कसम,
1: मिस कर दिया तो रीलोड।
3: चाय चाय चाय,
4: बिंदास मॉर्निंग
1: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
4: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद।
6: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और दोस्तों, कल तक तो बारिश की बूंदें और आज सूरज देवता का फुल ऑन स्वैग, ऐसी चमचमाती धूप निकल रही है। लगता है सूरज ने आज अपना ब्राइटनेस मोड फुल मोड पे रखा हुआ है। हाँ, इतनी तेज धूप, मौसम भी ना बड़ा नटखट है, कभी बारिश से भिगो देता है तो कभी धूप से चमचमाता है। बस हमें हर मौसम में मुस्कुराना आना चाहिए और मुस्कुराते रहना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ एवरीवन कि मुस्कुराते रहिए मौसम की तरह, चाहे मौसम बारिश वाला हो या धूप वाला हो। दोस्तों, आपका फेवरेट शो शुरू हो चुका है मॉर्निंग मसाला और समय हुआ है 10:09 राइट नाउ। स्टूडियो की घड़ी में 12 अगस्त की तारीख है आज। वेडनेसडे की ब्यूटीफुल मॉर्निंग और आज का मॉर्निंग थॉट बस इतना सा है कि जिस काम को हर रोज की मजबूरी समझते हैं आप, जिस काम को हर रोज मजबूरी समझते हैं, शायद वही किसी और की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो। हम रोज काम पर जाते हैं, कभी थकते हैं तो कभी कहते हैं आज काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, हमारे पास काम है, हमारी जो बॉडी है हमारा साथ देती है और हम अपने पैरों पर खड़े होकर काम करने के काबिल हैं, ये भी तो किसी नेमत से कम नहीं है एवरीवन। इसीलिए आज से शिकायत कम और थैंक यू गॉड ज्यादा कहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको इतना सक्षम बनाया है, सब कुछ आपको दिया है तो थैंक यू तो बनता है ना आज की मॉर्निंग। क्योंकि दोस्तों, हमारी जिंदगी में ना जो भी अच्छा है, चाहे वो हमारा काम हो, परिवार हो, दोस्त हो या कोई ऐसा इंसान जिसने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया हो, हर किसी के लिए दिल से शुक्रिया कहना चाहिए। कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ नया पाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो हमारे पास है उसकी कद्र करने की जरूरत होती है। तो आज की सुबह मुस्कुराइए और कहिए थैंक यू गॉड, आपने मुझे काम करने की ताकत दी है, अपनों का साथ, आपको जो आपके अपनों ने साथ दिया है उनका भी थैंक यू कहिएगा। हैव अ ग्रेटफुल वेडनेसडे, कीप स्माइलिंग एंड कीप शाइनिंग एवरीवन। बस मैं आती हूँ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर और आप भी मुझे अपने मैसेज पहुंचा दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896। आज मुरादाबाद में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं सब आपको पता लगेगी ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, अभी आपने ट्रैक सुना बोल हल्के हल्के, लेकिन हम हल्के हल्के नहीं बोलने वाले हैं, हम जोर जोर से बोलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आज मुरादाबाद की धरती से देशभक्ति का शानदार रंग देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार मुरादाबाद। आज मुरादाबाद शहर में देशभक्ति का जोश देखने को मिल रहा है। स्वतंत्रता दिवस से पहले हमारे शहर में तिरंगा यात्रा निकली जा रही है, और जिगर कॉलोनी से मेयर विनोद अग्रवाल जी ने इस विशेष पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा उन वीर योद्धाओं और महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का एक खूबसूरत प्रयास है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च नौछावर कर दिया। तो आज मुरादाबाद की सड़कों पर लहराता तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, बल्कि हमारी शान, हमारी पहचान और हमारी आज़ादी की कहानी है। तिरंगा ऊंचा रहे, हमारा देश से बढ़कर कुछ नहीं है प्यारा। और आप ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप भी जा सकते हैं वहां पर। और इस स्वतंत्रता दिवस पर हम भी अपने दिल में देशभक्ति की लौ जलाएं और गर्व से कहें जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों, सुनते हैं देशभक्ति गाना, एंड आज क्या कुछ स्पेशल है सब आपको पता लगेगा ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं पर बने रहना है मेरे साथ। क्या कुछ और है सब आपको पता लगेगा, नई नई अपडेट्स आपको मिलने वाली है सिर्फ एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, दिल की गला तो हम भी आपसे कहने के लिए आए हैं, और मुझे पता है कि आप भी दिल से दिल तक हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि दिल से दिल का रिश्ता है आपका और हमारा, है ना। दोस्तों, शुभ नाम है मॉर्निंग मसाला, खुशी है आपके साथ, और वक्त हुआ है अभी 10:33 राइट नाउ। आप भी अपनी घड़ियां मिला लीजिए, लेकिन आज की धूप इतनी तेज है ना बाहर, ऐसा लग रहा है 10:11 बज चुके हैं, है ना। इतनी तेज वाली धूप है, जब मैं आ रही थी तो हे भगवान, घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बचाना पड़ता है आप सब से इतना प्यार जो हम करते हैं।

और दोस्तों आज सेलिब्रेट किया जाता है बहुत ही अच्छा डे। कौन सा डे मनाया जाता है बताती हूँ मैं आपको। दोस्तों युवा सिर्फ उम्र का नाम नहीं है, युवा वो सोच है जो बदलाव लाने का क्रेज रखती है। और आज बात एक ऐसे ही दिन की है जो हर युवा की एनर्जी, ड्रीम्स, पोटेंशियल सेलिब्रेट करता है। हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है आज। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1999 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है और उन्हें समाज के विकास में आगे बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटी देना। लेकिन मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं भी आपसे एक सवाल मालूम करने वाली हूँ। तो सवाल अभी पूछा जाए या थोड़ा सा इंतजार करवाया जाए आपको? क्या कहती है हमारी ऑडियंस? अच्छा, थोड़ा सा इंतजार कराते हैं। चलो ठीक है, करवा देते हैं। अभी जो मैसेज आए हैं आपके, उनको जल्दी से हम शामिल कर लेते हैं। मुझे पता है आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। विकी सागर जी हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं आज की सुबह। अरे वाह, आज पूजा भाभी जी का बर्थडे है। ओके, हमारी तरफ से जन्मदिन की पूजा भाभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैनी मैनी रिटर्न ऑफ द डे भाभी जी। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रानी नांगल से, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत अच्छी हूँ डियर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हर हर महादेव, खुशी मैम क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छे हैं। ये मैसेज पहुंचाते हैं बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से। एंड ये एक ट्रैक सुनना चाहते हैं फ्रॉम द मूवी गदर से, उर्जा काली कोवा तेरे मुंह विच खंड पावा, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है। एंड उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। शाबरीन जी मैसेज पहुंचाती हैं मिलक से। एंड उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है गौरव टेलर जी का, नवीन नगर मुरादाबाद से, कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम आपको भी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं हम, ईश्वर की कृपा है और आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं, तो अच्छे ही रहते हैं। और इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट आज की मॉर्निंग हमारे साथ शेयर किया है। कहते हैं कि रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई हो तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई हो तो टिकना मुश्किल है। एग्जैक्टली राइट सर, आई एग्री विद यू, हम आपकी बातों से सहमत हैं। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आए, प्रिय प्रसारक जी को आदाब, आपको भी आदाब। और ये अपना मैसेज पहुंचाते हैं उत्तराखंड धनुरी तीलीवाला से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी जी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए हैं मुरादाबाद यूपी से, रणवीर सिंह जठलाल जी का, कहते हैं हेलो गुड मॉर्निंग मैम, आप सबको हमारी तरफ से बुधवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम जी आपको भी राम राम। ये तिरंगा हमारी शान है, ये तिरंगा हमारी पहचान है, इसके लिए वीरों ने कुर्बानी दी है, इसीलिए ये हर दिन हिंदुस्तान की जान है। और इन्होंने एक प्यारे से ट्रैक की रिक्वेस्ट भेजी है फ्रॉम द मूवी कर्मा से, हम पूरा प्रयास करेंगे इसको प्ले करने का। तो चलिए दोस्तों अभी सुनते हैं कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद करेंगे आपसे बहुत सारी बातें। आपको कहीं नहीं जाना है, ऐसे ही बने रहना है, सुनते रहना है FM मुरादाबाद 89.6। और एक बहुत ही प्यारा गाना आप सभी के लिए, तो एंजॉय कीजिएगा। और आज क्या हो कुछ और स्पेशल है सब आपको यहाँ पर पता लगेगा। अभी लौट कर आऊंगी तो एक सवाल भी मैं आपसे मालूम करने वाली हूँ।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी. और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी कुली नंबर 1 से, सारा अली खान और साथ में वरुण धवन का डांस. ओए होए, क्या ही बोले हम, कमाल ही कर दिया. जावेद मोहसिन, दीप नेगी, नेहा कक्कड़ की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़.

और दोस्तों यहाँ पर लगातार बैक टू बैक आपके मैसेज भी आ रहे हैं। आज बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टर्स का बर्थडे है, सब आपको पता लगेगा कि इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं।

और दोस्तों आज इंटरनेशनल यूथ डे है, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन भी है आज की सुबह कि आपका कोई ड्रीम है जिसे पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, या अपना ड्रीम आपने अचीव कर लिया है, अचीव कर चुके हैं आप, तो हमें बताइएगा, क्योंकि आपकी कहानी किसी और युवा के लिए इंस्पायर बन सकती है, जी हाँ, प्रेरणादायक बन सकती है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो हमारे यूथ हमें सुन रहे हैं, अगर आपका कोई ड्रीम जिसे पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं या फिर अपना ड्रीम आपने अचीव कर लिया है, तो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक कहानी किसी और युवा को प्रेरणा दे सकती है। तो फटाफट से अपना मैसेज पहुंचा दीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, जिला अमरोहा नई बस्ती पतेई खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी जी का, और ये साथ में बहरुल हसन जी के साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी सुन रही है इस वक्त रेडियो को। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का, लक्ष्मी जी का। गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, कैसी हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, माय फेवरेट आरजे खुशी जी, राधे राधे, आपको भी राधे राधे। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं, जिला मुरादाबाद लदावली से अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए, हाय दी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? दरक्षा फातिमा जी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। और आज लाइबा का बर्थडे है, लाइबा काजमी का, तो ये कहती है कि आज मैं उन्हें एक ट्रैक डेडिकेट करना चाहती हूँ। लाइबा को हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड ये एक प्यारा सा ट्रैक सुनना चाहती हैं, बिल्कुल सुनवाएंगे आपको, इंतजार कीजिएगा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, राधे राधे खुशी, आपको भी राधे राधे मैम। काफी लॉन्ग टाइम के बाद आज आपका मैसेज आया है, बताइएगा अलका मैम कहाँ चले जाते हैं आप, हाँ हमें छोड़कर, ऐसे मत किया करो, पता है आपको हम याद करते रहते हैं और आप हैं कि हमसे दूर चले जाते हो। देखिए आप कहीं भी जाइए, लेकिन हमें मैसेज जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये हमें इंतजार रहता है आपके मैसेजों का। नेक्स्ट हमें थैंक यू पहुंचाते हैं विकी सागर जी, मोस्ट वेलकम सर। परम प्रजापति जी का हमारे पास एक वॉइस नोट आया है, हम उसको भी आकर प्ले करेंगे। एंड उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया संदीप सागर जी का, जिला मुरादाबाद से, कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, गुड मॉर्निंग आपको भी, मैं बहुत अच्छी हूँ सर। तो चलिए दोस्तों अभी सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद आपके साथ फिर से कनेक्ट होते हैं। आप बस कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए, और अभी लौट कर आएंगे तो बताएंगे कि आज कौन सी ब्यूटीफुल अदाकारा का बर्थडे है। जी हाँ, जब उनके गाने सुनते हैं ना हम, तो हम ना नाचने के लिए ऑटोमेटिकली, मतलब नाचने का मन नहीं करता है, लेकिन डांस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कौन सी अदाकारा है आकर अभी मैं बताती हूँ ना, थोड़ा सा इंतजार तो करो, हो आप चाहते हैं कि खुशी फटाफट से सब कुछ बता दे, हाँ थोड़ा सा इंतजार करवाऊंगी मैं आपको। चलो अभी सुनो एक शानदार से गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर करेंगे आपसे बहुत सारी बातें, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप तक पहुँचानी है, तो बस आप मुस्कुराइए।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और अभी आपने सुनाई प्यारा सा ट्रैक। शंकी गोस्वामी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। हरियाणवी गाने बड़े ही प्यारे होते हैं ना। और दोस्तों आज बर्थडे है हमारी रेडियो लिस्टर लाइबा काजमी का, और हमारी तरफ से लाइबा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मुस्कान यूं ही हमेशा खिलखिलाती रहे, आपकी आवाज मिठास, आपकी जो आवाज में मिठास है ना और आपकी जो पॉजिटिविटी है वो हर किसी के चेहरे पर ना मुस्कान लेकर आ जाती है। तो आपको वंस अगेन हैप्पी बर्थडे डियर। समय हुआ है 11:07 और दोस्तों

आज बॉलीवुड की उस यूथ, हाँ जी, उस यंग और एनर्जेटिक एक्टर्स का बर्थडे है जिनके स्माइल, सिंपलिसिटी, कॉन्फिडेंस और अलग अंदाज से ऑडियंस के बीच अपनी एक खास पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सारा अली खान जी की। सारा अली खान जी ने साल 2018 में फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग डेब्यू किया एंड इस फिल्म में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ काम किया और अपनी पहली फिल्म से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसी साल आई सिम्भा जिसने उनकी करियर को एक स्ट्रांग स्टार बना दिया और भी बहुत सारी फिल्में हैं उनकी एंड जबरदस्त एक्टिंग है और उनकी स्माइल, उनकी क्यूटनेस कितनी खूबसूरत लगती है एवरीवन। आखिर सैफ अली खान जी की बेटी हैं वो। और यहाँ पर आपके बैक टू बैक जो मैसेज आ रहे हैं वो है, दिल ही खुश कर दिया है आपने तो यहाँ पर। थैंक यू सो मच मुरादाबादी इतना प्यार देने के लिए और मुरादाबाद से बाहर भी हमारे लिसनर्स हमें सुनते हैं, उनका भी दिल से शुक्रिया। तो चलिए जो मैसेज हमारे पास आए मैं उनको जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज पहुँचाती हैं ललिता कश्यप जी नवीन नगर मुरादाबाद से, कहती हैं, हेलो गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव आपको भी। और ये कहती है, मैम आज तो सूरज भगवान जी ना बहुत खुशबू वाला इत्र लगाकर आए हैं, उनकी खुशबू कितनी महक रही है ना। हाँ मैम, धूप तो बहुत ज्यादा तेज है। और ये कहते हैं कि ललिता जी हमें पहुंचाती हैं, बोलती हैं कि मैम मैं गर्मा गर्म कचौड़ियां बना रही हूँ, आप आइए ब्रेकफास्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और आपने कहा है ना, मैं सच में आ जाती पर क्या करूँ, मेरे को अभी परमिशन नहीं है ना। इतने प्यार से आपने कचौड़ियों का नाम लिया है ना, ओए होए होए, खुशबू इधर तक आ रही है मैम, बस ध्यान से बनाइएगा ठीक है। कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि हमारा जब ध्यान दूसरी तरफ होता है ना, तो फिर किचन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो

जाती है। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं ध्यान से रेडियो को सुनती हूँ ना, तो मैं उसी में मशरूफ हो जाती हूँ, खो जाती हूँ। मम्मी मेरे को बुलाती रहती है उतने तो किचन में, भैया इतनी गड़बड़ी हो जाती है पूछिए मत। कभी गैस पर दूध रखा हुआ उबल जाता है, गैस से बाहर बहकर सीधा किचन में वो घूमने लगता है। कभी तो रोटियां जल जाती हैं, कभी चाय में चीनी डालना हम भूल जाते हैं। अक्सर ये गलतियां मेरे साथ बहुत होती हैं, मैं कर देती हूँ, लेकिन मम्मी तो मम्मी है ना, क्षमा कर देती है उनको। बट आप ऐसी गलतियां मत करना, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? हर हर महादेव, आपको भी हर हर महादेव। परम सिंह जी, हम बहुत अच्छे हैं। लोधीपुर से अपना मैसेज पहुंचाते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का। साथ में सैयद शारिक अली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं। गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, हम बहुत अच्छे हैं। आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हमारे पास एक गाने की रिक्वेस्ट की थी, आई रिमेम्बर, मुझे याद आया, रणवीर सिंह जी ने, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तो सुनते हैं ये शानदार सा देशभक्ति गीत, लौट कर आती हूँ मैं। आप कहीं मत जाइए और अपने संदेश भी पहुँचाइए। और आज और कौन सी डे सेलिब्रेट किए जाते हैं वो सब हम आपको बताएंगे। बस आप जुड़े रहिएगा FM मुरादाबाद 89.6 पर खुशी के साथ।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

बिल्कुल दोस्तों, आपके दिल में है फिर मुरादाबाद 89.6 और उस पर आती है खुशी, और जब खुशी आती है तो आपके चेहरे पर भी खुशी आ ही जाती है ना। दोस्तों आज है 12 अगस्त और आज मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। जी हाँ, वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सिर्फ हाथी के प्रति प्यार जताना नहीं, बल्कि उनके संरक्षण, सुरक्षित आवास और उनके जो सामान मौजूद, मतलब उनके सामने मौजूद खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना। विश्व हाथी दिवस की शुरुआत 12 अगस्त 2012 को हुई थी। और दोस्तों हाथियों को कई तरह के खतरे होते हैं, जैसे जंगलों और प्रकृति आवास का कम होना, अवैध शिकारी और हाथी दांत का व्यापार, इंसानों और हाथियों के बीच बड़ा संघर्ष, कैद में हाथी के साथ होने वाला दुर्व्यवहार। इसलिए ये दिन हमें याद दिलाता है कि हाथियों को सिर्फ देखने या पूजने की नहीं, बल्कि उनके प्राकृतिक जीवन और जंगलों को बचाने की भी जरूरत है। दोस्तों आज 12 अगस्त है और आज मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और दोस्तों हाथी सिर्फ जंगल का सबसे विशाल जीव नहीं, बल्कि हमारी परिस्थितियों को तंत्र का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। एंड दोस्तों हाथी और उनके प्राकृतिक घर यानी जंगल की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जंगल की रक्षा करना बहुत जरूरी है। पेड़ पौधे इतने कट रहे हैं और लगाए बहुत कम जा रहे हैं, तो मेरा सभी से निवेदन है कि जरूर पेड़ पौधे लगाएं। क्योंकि दोस्तों जंगल बचेगा तभी तो हाथी बचेंगे, और हाथी बचेंगे तभी तो हमारी प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी। और आज हरियाली अमावस भी है, तो आप सभी को हरियाली अमावस की हार्दिक शुभकामनाएं। समय हुआ है अभी 11:26, यहाँ पर बैक टू बैक आप सभी के मैसेज आ रहे हैं, तो मैं उनको भी क्विकली शामिल करूंगी। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, आपसे हम एक सवाल भी पूछने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है।

सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है, तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, अभी आपने प्यारा सा ट्रैक एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी चेन्नई एक्सप्रेस से, और हम भी अभी आपके साथ हैं, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए। और दोस्तों, अब हम देते हैं आपको वेदर अपडेट। जी हाँ, देश के कई हिस्सों में आज 12 अगस्त को दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय रहने वाला है, और मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। एंड पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की संभावनाएं हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी बारिश का अनुमान है। तो अगर आज घर से बाहर निकल रहे हैं तो छाता साथ रखिए। जहां पर जल भराव वाले रास्ते जो होते हैं, उन रास्तों से आप जाने से बचें। मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखिए और आप सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ। और यहां पर खूबसूरत मैसेज आए हैं तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। एंड हमारे पास यहाँ पर आया है मैसेज फ्रॉम पुरकाजीपुर मुजफ्फरनगर से। मैसेज हमें पहुँचाती हैं लाइबा काजमी जी, एंड साथ में मोहम्मद कामिल जी हैं, अफरोज हैं और शुभनम जी हैं, दरक्षा हैं। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। एंड कहती हैं हैव अ स्वीट डे स्वीट हार्ट, प्रोग्राम आपका मैं सुन रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। एंड मन तो करता है कि एवरी डे मैं आपको मैसेज करूँ, लेकिन स्टडी की वजह से नहीं कर पाती हैं शायद, राइट? यही रीजन है ना। कहती हैं कि जब आप प्रोग्राम में आती हैं तो चार चांद लगा देती हैं। ओहो, रियली? तभी मैं बोलूँ कि मेरे स्टूडियो में इतनी रोशनी क्यों है, अब समझ में आया मुझे। कहती हैं कि मैम आपकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है, आप बहुत प्यारी हैं। थैंक यू, ये तो आपका प्यार है डियर, और आप खुद प्यारे हैं। कहते हैं ना कि जो इंसान खुद प्यारा होता है ना, तो उसको सभी लोग प्यारे लगते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। एंड मैं क्या कहूँ, शब्द कम पड़ रहे हैं, देखिए आपकी तारीफ में। बहुत प्यारी हैं आप। And once again, many return of the day, Laiba. आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहें और जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप सबको अचीव करें। हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक। और इन्होंने ब्रेकफास्ट में आज हमें बहुत सारे फ्रूट्स भेजे हैं और साथ में चॉकलेट भी भेजी। ओहो, वैसे ये बताएं आपको, चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है और लेकिन ज्यादा खाती नहीं हूँ क्योंकि मम्मा मेरे को अलाउ नहीं करती है ज्यादा चॉकलेट खाने के लिए, बट मैं चोरी चोरी खा लेती हूँ कभी कभी। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाती है लाइन पार से। लाइन पार प्रकाश नगर चौराहा से मैसेज पहुंचाते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और हमारे पास टेक्स्ट मैसेज भी बहुत सारे आए हैं तो मैं उनको भी शामिल करने वाली हूँ। एंड आपकी जो सवाल, मैं एक सवाल भी पूछने वाली हूँ। बातों बातों में इतना ज्यादा मैं मशरूफ हो जाती हूँ ना कि भूल जाती हूँ, लेकिन अभी मुझे याद आ गया है तो अभी बस मैं लौट कर आती हूँ। उसके बाद पूछने वाली हूँ एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपसे आज की मॉर्निंग, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो सही जवाब पहुंचा पाएंगे। तो बस मैं आती हूँ छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, आप कहीं मचाइए, मुस्कुराइएगा।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
5: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
4: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
5: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
4: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
6: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी। वक्त हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में 11:49 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में टाइमिंग हो गई है। आप भी अपनी घड़ियां मिला लीजिए। और आज की मॉर्निंग मैंने आपसे कहा था कि हम आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा आपको काम करना है। क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों मैं ना कुछ ट्रैक प्ले कर रही हूँ और आपको मुझे बताने हैं कि मैंने कितने, आपको उन ट्रैक को ना काउंट करना है। बहुत सिंपल सा काम करना है, ठीक है? तो आप मुझे बताइएगा कि मैंने कितने गाने प्ले किए हैं। आपको काउंट करना है और ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। करें स्टार्ट। ओके चलो 1 2 3 स्टार्ट। आपको बताना है कि ये जो मैं ट्रैक प्ले कर रही हूँ कितने ट्रैक हैं, एंड आपको काउंट करना है। बस इतना सिंपल सा काम करना है।

हाँ जी, आज की मॉर्निंग में आपको इतना सिंपल से काम करना है, जो ट्रैक मैंने प्ले किए हैं आप मुझे काउंट करके बताइए कि मैंने कितने ट्रैक प्ले किए हैं। फटाफट से अपना मैसेज टाइप कीजिएगा, मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896। बताइएगा, मैं आपको ऑप्शन भी दे दूं। चलो दे देती हूँ, इतने प्यारे लिसनर हैं आप, तो हम आपको ऑप्शन दे सकते हैं। वैसे ऑप्शन ना भी देना तो भी आप गेस कर लेंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। देखिए, ऑप्शन ए है 4, ठीक है, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 8। अब आपको बताने हैं ये जो मैंने ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा सही जवाब है। फटाफट से राइट आंसर पहुंचाइए, नंबर मैं आपको बता रही हूँ 9837896896। बताइएगा कि मैंने कितने गाने प्ले किए हैं। और मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए एक अमेजिंग ट्रैक फ्रॉम द मूवी जरा हटके जरा बचके, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है एंड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और ये मेरी पसंद आप सबको भी पसंद आएगी। तो सुनते हैं ये गाना, उसके बाद लौट कर आती हूँ मैं। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए, बताइएगा कि कितने ट्रैक मैंने प्ले किए हैं अभी। काउंट कर लिए ना आपने? वेरी गुड, अरे वाह क्या बात है, आपकी मैथ बहुत अच्छी है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ और वक्त हुआ है 11:58। और अभी आपने सुना ये शानदार सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी जरा हटके जरा बचके। वरुण जैन, सचिन जिगर एंड शहदा फरीदी और साथ में अल्तमस फरीदी जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में खूबसूरत सा गाना, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध ले आऊंगा। है ना, देखो 16-17 सितारे ना चांद तो मैं नहीं लेकर आ सकती आपके लिए, लेकिन हाँ मेरा प्यार ऑलवेज आपके लिए है, ढेर सारा प्यार आपको। और बस आपके लिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लाइफ में हमेशा खुश रहें और जो भी आप चाहते हैं वो सब आपको मिल जाए।

आज की मॉर्निंग मैंने आपसे अभी बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन भी पूछा है ना। मैंने अभी कुछ यू नो हिट ट्रैक प्ले किए थे, आपको काउंट करना था कि वो कितने गाने मतलब मैंने प्ले किए हैं, और हमारे पास सही जवाब आ गए। OMG, मैंने कहा था ना कि हमारे जो लिसनर्स हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और चलिए मैं फिर से सुनवा देती हूँ, है ना, एक छोटा सा टैक्स और फिर से सुनवा देती हूँ, और आप इस बारे ध्यान से सुनो, और जिनके राइट आंसर आए हैं ना उनका भी नाम हम लेने वाले हैं। वो हमारे वैसे तो जो हमारे लिसनर्स हैं वो सभी एक्टिव हैं, लेकिन कुछ लिसनर कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं, तो उनका नाम बस लेने वाले हैं हम। लेकिन ये गाने एक बार मैं फिर से सुना देती हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा आप।

0: जी दोस्तों, अब आपने सही से सुन लिया है ना, अभी आपकी काउंटिंग एकदम ठीक हो गई होगी। हाँ लेकिन लकी विनर तो एक ही बनेंगे, और जो लकी विनर बने हैं ना, पहले उनके लिए हम जोरदार तालियां बजा देते हैं, फिर उनका नाम ऑन एयर रीड करते हैं। ये जोरदार तालियां हमारे सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और हमारे पास सबसे पहले सही जवाब पहुंचाते हैं। ये नाम हमें मिल चुका है, एंड सबसे पहले हमें सही जवाब पहुंचाती हैं अलका वर्मा जी बुद्धि बिहार से। और मैम, आज की हमारी बनती हैं आप लकी स्टार। जी हाँ, क्योंकि आपने दिया है सही जवाब। ये हमने टॉप 5 ट्रैक प्ले किए थे और मैम ने सही काउंट किया है। एंड नेक्स्ट हमारे पास सही जवाब आया है अमित वर्मा जी का हिमगिरी मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग खुशी जी, राधे राधे। आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और आपने जो ट्रैक प्ले किए हैं ना, उनकी काउंटिंग है 5 एग्जैक्टली। तो अमित वर्मा जी के लिए जोरदार क्लैपिंग एंड कंग्रेचुलेशन आपको, एंड अलका मैम को भी, क्योंकि उन्होंने भी सही जवाब दिया है। बाकी श्रोताओं ने जवाब तो दिए हैं, लेकिन आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। पता है आपने क्या किया है? बता देती हूँ, आपने ये किया है, जो लिसनर्स हमारे कनेक्ट हुए हैं ना हमारे साथ में, उन्होंने देखिए, ओह हो, आपने डिलीट भी कर दिया। ये तो गलत बात है भाई, ऐसे ही चीटिंग ना किया करो आप। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया बबलू जी का, और ये कह रहे हैं खुशी जी, आपने जो ट्रैक प्ले किए थे ना, वो 6 थे, लेकिन सर आप ध्यान से नहीं सुन पाए, 5 ही गाने थे। बट कोई बात नहीं, चलता है। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रवि सैनी जी का, और ये भी कहते हैं कि मैम आपने 6 ट्रैक प्ले किए थे। ओके, और उसके अलावा एक और मैसेज आया है, टोटल 8 ट्रैक आपने प्ले किए थे। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं उषा अरोड़ा जी चंदन नगर मुरादाबाद से। उषा मैम, लगता है कि आपका ध्यान किचन में था। हाँ ये गाने आपने को पसंद आए, इसलिए आपने ज्यादा। एंड हमारे पास नेक्स्ट मैसेज आया है 8 और 9। ओ माय गॉड, 8-9 गाने? नहीं बाबा, 5 ही थे। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास परम जी का है, और परम जी ने फर्स्ट आंसर दिया है 7 एंड सेकंड आंसर दिया है 5, तो आप पास होते हैं, आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है। ललिता जी ने भी हमें आंसर पहुंचाया है, लेकिन बहुत ज्यादा डिसाइड किया मैम ने, पहले तो 5 फिर 8 इसके बाद 6। ओके, कहते हैं कि मैम हम सॉन्ग नहीं सुन पाए थे, अभी अभी हमने सुना। ओके, बट कोई बात नहीं, आपने हमें जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एवरीवन, आप सबने अच्छा पार्टिसिपेट किया। देखिए, मुझे लगता है कि कोशिश हमें करनी चाहिए, और गलती करने से ना कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। जब हम गलती करते हैं ना, तभी हम सीखते भी हैं, ठीक है। गलती कीजिए, लेकिन गलती से सीखिए। अगर गलती दोबारा से करेंगे तो फिर वो गलती नहीं होती है, फिर वो क्या होता है, वहां गलती हो जाती है ना। तो चलो, अभी मैं चलती हूँ। फिलहाल मैं मिलने वाली हूँ आपको, सी यू सून 3 से 5। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, यूं ही मुस्कुराते रहिए जैसे अभी आप खिलखिलाकर मुस्कुरा रहे हैं। बाकी मुलाकात करते हैं एंड नई बातों के साथ, नई मुस्कुराहट के साथ और नई पॉजिटिविटी के साथ। तब तक के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं पर बने रहना है, चिपके रहना है, सुनते रहना है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और अपने हर एक पल को एंजॉय करना है अपने अपनों के साथ। बाय बाय।
1: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: चलो चले शिव के धाम।

0: एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
1: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
0: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पे, हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद। और ऑफ कोर्स जब आप मुरादाबाद रेडियो सुनते हो तो यहाँ एंटरटेनमेंट के साथ साथ होती है ढेर सारी जानकारी। और आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल है। आप सुन रहे हैं किसान भाइयों आपका फेवरेट प्रोग्राम खेती किसानी, और आज इस प्रोग्राम में एक खास विषय पे चर्चा करने वाले हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान भी उपस्थित है हमारे बीच में, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड से हमारे साथ एक के सिंह वरिष्ठ प्रबंधक जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज सर के साथ बहुत सारी बातचीत हम करने वाले हैं स्टूडियो में, और ढेर सारी जानकारियां जो है किसान भाइयों आज आपको मिलने वाली है। तो आइए सर का स्वागत करते हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 के स्टूडियो में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? नमस्कार।
1: मैं बहुत अच्छा हूं आनंद जी, और जो आपने स्वागत किया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत जो धन्यवाद, और जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार
0: जी। और आज का विषय बहुत ही स्पेशल है। आज की वार्ता का जो विषय है वो है घुलनशील पोषण उत्पाद एवं उनके लाभ। आज इस पर हम बात करेंगे। सर आपका स्वागत है हमारे स्टेशन में।
1: आनंद जी स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा और मेरी जो कंपनी चंबल फर्टिलाइजर की ओर से नमस्कार जी, स्वागत इस कार्यक्रम में।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहला प्रश्न होगा भारत सरकार की जो ये
1: पीएम प्रणाम योजना है,
0: पीएम प्रणाम योजना,
1: और पीएम प्रणाम खास तौर से जो जो हमारी खेती है, जो हम जो मतलब फसल उगाने का तरीका है
0: जी,
1: उसमें जो पोषण का तरीका है उसके उसका संज्ञान भारत सरकार ने वैज्ञानिकों के द्वारा लिया है, और उसमें प्रयास ये है कि जो जो जो उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है
0: जी, जी।
1: वो संतुलित हो और सही ढंग से हो, जिससे कि उनका जो अतिरिक्त इस्तेमाल है या सही ढंग से जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है उससे जो होने वाले नुकसान है उनसे हमारी खेती बचे, नंबर एक तो उसका ये उद्देश्य है
0: जी।
1: तो उसके लिए सरकार ओवरऑल बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है, जैसे कि शैक्षणिक योजनाएं हैं, बहुत सी ऐसी जानकारियां लोगों तक जो उपलब्ध जो हो रही है सरकार की तरफ से, जिससे उनको जो जानकारी मिल रही है कि संतुलित उर्वरक उपयोग क्या लाभ है। बहुत सारे उर्वरक ऐसे भारत सरकार की ओर से लाए जा रहे हैं जिनमें एक संतुलन के रूप में ही जो पोषक तत्व उपलब्ध है, जिनको कि हम एनपीके बोल देते हैं। बहुत से एनपीके ऐसे भी हैं जिनमें सल्फर का भी पोषक तत्व है। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, ये सारे पोषक तत्व करीब करीब उसमें उपलब्ध होते हैं। तो ओवरऑल एक ही उर्वरक में हमें सारे पोषण उपलब्ध हो जाते हैं, तो हमें अलग से उर्वरक और किसी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह की कुछ योजना है। इसके अलावा ये है कि ओवरऑल अगर हम जो देखें तो एक समग्र रूप में जो खेती में जो खर्चा है उसको कम करना का उद्देश्य है। तो वो ऐसा खर्चा नहीं है कि खाद के ऊपर ही, मतलब सरकार ये चाहती है कि जो अपना खाद है उसके ऊपर ही खर्चा कम हो, जो हमारे किसान है जो वो खेती पे खर्चा कर रहे उसमें भी कमी आनी चाहिए, क्योंकि जब उनके खर्चे में कमी होगी तो उनकी आमदनी में उसी अनुपात में वृद्धि भी हो। दूसरा ये है कि जो हमारे अपने जो संसाधन है, अपने संसाधन जैसे गोबर की खाद है
0: जी,
1: कंपोस्ट खाद है
0: जी,
1: इसके अलावा जो फसल अवशेष है, फसल अवशेष मान के चलो जैसे कि हमने धान उगाया, धान का ऊपर का हिस्सा हमने अनाज ले लिया, पुआल रह गया उस, ठीक है, अब जो वो है हम उसको सुधारे तो बेकार की चीज है, नहीं, जितना पौधे ने जो पोषण उसमें से खेत में से लिया है लगभग उसका 50-60% जो भी उसने उसमें से तत्व लिए वो उस चीज में उपलब्ध होते हैं, 30-40% सिर्फ अनाज में गए हैं, बाकी पौधे में। अगर वह पौधे का जो अवशेष है जिसको हम फेंक रहे हैं, अगर हमने उसको सड़ा के खेत में ही इकट्ठा किया या खेती जो जो मिट्टी उसमें मिला दिया, तो वो एक तरह से उर्वरक का ही काम करेगा, पोषण का ही काम करेगा, और अगर हम अच्छे से ध्यान देंगे, मिट्टी की जांच कराएंगे, तो उसी अनुपात में हम जो उर्वरक का इस्तेमाल है उसमें कुछ कमी ला सकते हैं, जिससे हमारे खर्चे कम होंगे। तो भारत सरकार का बड़ा बड़ा ही एक अहम जो एक तरह से मतलब प्रयास है कि कैसे भी टिकाऊ खेती की तरफ हम जाए, जो हमारी जो उर्वरक जो आयतित उर्वरक हैं उनके जो इस्तेमाल में जो मतलब जो है एक तरह से अंधाधुंध उनका जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें जो कैसे कमी लगाई जाए, या जो उनका असंतुलित जो उपयोग हो रहा है उसको जो एक तरह से संतुलन में लाया जाए, और जो हमारे खेती में संसाधन अपने हैं जो कि पोषण है हमारी फसल के लिए, जो कि एक तरह से जो हमारी खेत की मिट्टी है उसके लिए आहार है, वह हम ज्यादा से ज्यादा जागृत करें, हम उसके बारे में जानकारी रखें और उसका हमारे किसान लाभ ले सकें, जिससे कि हम धीरे धीरे टिकाऊ खेती की ओर बढ़े। टिकाऊ खेती से अर्थ ये है कि ऐसा न हो कि हम इसी तरह से जो हमारे उर्वरक हैं या जो मतलब पोषण है उसका असंतुलित इस्तेमाल किए और जो हम लगातार जो फसलें उगाते जा रहे हैं उससे बहुत अत्यधिक जो मतलब जो दोहन करते रहे, तो एक दिन ऐसा न हो कि हमारे खेत अच्छी फसल न उगा पाए। तो ये पीएम प्रणाम का एक अहम उद्देश्य जो ये है, इसके लिए सरकार हर स्तर पर कार्य कर रही है, हम लोग भी जागरूकता का अभियान अपनी ओर से जारी रखते हैं, किसानों को समझाते हैं, गांव गांव जाके मीटिंगें अन्य कार्यक्रम इस तरह से आयोजित करके संतुलित उर्वरक उपयोग में हम अपनी जानकारी देते हैं। हमारी कृषि की प्रयोगशालाएं भी हैं, उनसे मिट्टी की जांच हमारे यहाँ पे जो फ्री होती है, लगभग साल के लगभग 3000 सैंपल हम जो चेक करते हैं और उसकी रिपोर्ट सीधे फार्मर तक पहुँचाते हैं, और उसके साथ साथ उनको समझाते भी हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है और किस तरह से आपने जो उर्वरक है उनका इस्तेमाल करना है, पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना है और अपने खेत को कैसे स्वस्थ रखना है।
0: इसी बीच मेरा प्रश्न रहेगा सर कि प्रधानमंत्री द्वारा उर्वरक उपयोग के बारे में जो संबोधन दिया गया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे श्रोताओं को भी दीजिए।
1: आनंद जी, वो जो संबोधन है वो खास तौर से जो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी सलाह दी है कि जो भी उर्वरक है उनका हम सही ढंग से इस्तेमाल करें। अगर सही ढंग से इस्तेमाल होगा तो उनकी सही मात्रा का इस्तेमाल होगा। अगर सही ढंग से हम जो है उसको जो है मतलब नहीं करते हैं तो ज्यादा मात्रा का हम इस्तेमाल करने लगते हैं। तो उसी के बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा संबोधन दिया है और उसकी एक रिकॉर्डिंग है, तो आप मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो आप अवश्य किसानों को सुनाएं, उससे उनको एक मार्गदर्शन जो आएगा कि वो उर्वरक के उपयोग में सावधानी बरतें और उसका सही जो इस्तेमाल हो उसके बारे में संज्ञा।
0: थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, बिना किसी देरी के आइए जरा सुनते हैं इस ऑडियो को।
2: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती मां हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती मां को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है।
0: बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये जानकारी और मुझे उम्मीद है श्रोताओं आपको भी अच्छी लगी होगी। इसी बीच अनिल कुमार सर आपका स्वागत है एक बार फिर से,
3: और इसी बात के साथ बिना किसी देरी घुलनशील पोषण क्या है और इसके लाभ क्या है इसके बारे में बताइए।
1: जी हाँ, घुलनशील पोषण मतलब ऐसे मान के चलिए कि जो भी रासायनिक उर्वरक या और उत्पाद हम इस्तेमाल करते हैं वो स्थूल रूप में होते हैं, दाने के रूप में होते हैं या चूरे के रूप में होते हैं, और उनको हम अपने खेत में फैलाते बिखेरते मिट्टी में मिलाते हैं। लेकिन पोषण की अन्य तकनीकियां भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि हम उनको घोलें और पानी में अच्छे से घोल के फिर हम उसका छिड़काव, उस समय ये क्यों आवश्यक है या इसकी क्यों आवश्यकता होती है, हमें इसके क्या लाभ हैं? इसके लाभ ये होते हैं कि जो हमारी खड़ी फसल है उसमें फसल हमारी अच्छी बड़ी हो गई, अच्छा साइज ले गई है, तो अगर उसमें हम कोई उर्वरक इस्तेमाल करते हैं जो हमें छींट के डालना है तो उसके आड़े क्या आता है, फसल के पत्ते आ जाते हैं और वो मिट्टी पर सही ढंग से नहीं आ पाती, और जो है जो हमारी फसल है उसके पत्ते के ऊपर गिरती है तो वो पत्तों को भी खराब करती है।
3: हाँ जी,
1: नंबर एक ये है
3: जी।
1: दूसरा ये है कि जब भी इस तरह के हम उर्वरक प्रयोग करते हैं जो कि स्थूल रूप में होते हैं तो उनका बहुत सारा हिस्सा नष्ट भी हो जाता है, हवा में उड़ के है या जो पानी के साथ नीचे जो है आपका निकल जाता है, बह के चला जाता है, तो इन सारी जो स्थितियों से जो हम एक तरह से इस तरह का बचाव करें कि जो भी पोषण हम दें वो पौधे को सीधा मिले और पूरी पूरी मात्रा में मिल जाए। तो जो भी ये हमारे जो इस तरह के उर्वरक हैं जो कि पानी में घोल के इनका स्प्रे किया जाता है, उनके अंदर ये विशेषता होती है कि वो पूरी पूरी मात्रा में पौधे को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो पौधे की पत्तियां हैं उनके अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं जिनको हम अंग्रेजी में स्टोमेटा बोल देते हैं, वो इसको सोखती हैं और अपना जो उनका तंत्र है जाइलम फ्लोएम जो भी है उसके द्वारा जो पौधे के हर अंग में इसको भेजती है, हर एक सेल में हर एक कोशिका में इसको भेजती है, जिससे उसका अच्छा विकास होता है, अच्छे से पोषण मिलता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि आप पौधे की मांग के अनुसार ही इस तरह के पोषक तत्व या इस तरह के उत्पाद चुन सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि हमें इसमें 5 तरह के सूक्ष्म तत्व देने हैं और एक मुख्य तत्व देना है, तो उस तरह का उत्पाद भी आज की तारीख में उपलब्ध है बाजार में। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कोई खास पोषक तत्व है उसका भी हो सकता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, वो आप पूछ सकते हैं कि हम इसमें इसको ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बहुत सारी सुविधाएं हैं। दूसरी बात यह है कि आपने सुना होगा कि एक हमारे पास एक तकनीक आई है ड्रोन तकनीक, आमतौर पर शादियों में भी हम देखते हैं फोटोग्राफी के लिए होता है, लेकिन इसका खेती में भी बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ड्रोन है जिनके अंदर हम घोल की टंकी लगाते हैं, फिर उसमें GPS लगा होता है, फिर वो उस हिसाब से मार्क करके खेत में समान रूप से फसल के ऊपर छिड़काव करता है।
3: अरे वाह।
1: तो उससे क्या होता है कि हमारी समय की बचत होती है, पानी की बचत होती है और बिल्कुल सही मात्रा में पोषण हमारे पौधे को मिल जाता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप धीरे धीरे प्रयास ये करें कि ड्रोन तकनीकी का आप इस्तेमाल करें, और ये जो इस तरह के जो मतलब अब मैं ये कहूँ कि आपकी जो ये है सिर्फ इसी के लिए इस्तेमाल नहीं, इससे कीटनाशक का भी इस्तेमाल जो स्प्रे कर सकते हैं और जो खरपतवार नाशी का भी स्प्रे कर सकते हैं, फफूंद नाशी का भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन पोषण में इसका खास महत्व है, क्योंकि जब आप खेत में घुस नहीं सकते हैं तो ये ऊपर से ही आप एक जगह बैठे रिमोट से कंट्रोल करके ये आराम से काम कर। आजकल ऐसा भी है कि सपोज अगर आपके पास नहीं है तो बहुत से लोग रिमोट रखते हैं, भारत सरकार ने अपनी योजना लाई है, उनसे आप उनको आप अनुरोध करेंगे, वो आपके आएंगे, आपसे वो एक शुल्क लेंगे और आपके यहाँ पर वो ड्रोन से स्प्रे करके जाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, आगे के समय में ये सब तकनीकियां हमारे और जो काम आएंगी और हमें सहायता करेंगी अच्छी खेती करने के लिए। तो ये जो ऐसे उत्पाद हैं, जो ऐसे पोषण उत्पाद हैं जो पानी में घोल के स्प्रे किए जाते हैं, इनके लाभ तो मैंने आपको बताई, इनके उपयोग की जो तकनीकियां हैं उनमें भी बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। तो ये सारी जानकारियां मैं समझता हूँ किसान इनका संज्ञान लेंगे और इनको अपनी खेती में बढ़ावा देते रहेंगे।
3: क्या सर प्रश्न

0: जरूरत है। तो उस समय पर ये उत्तम परिणाम है, काफी लाभदायक उत्पाद है। 250 ml की पैकिंग में भी आता है, तो ये 250 ml एक एकड़ के लिए है, तो उसी हिसाब से इसकी पैकिंग जो तैयार की गई है। आप इसका प्रयोग करके अनेक लाभ अपनी फसल में ले सकते हैं, उसका विकास अच्छा होगा और उसका तने वगैरह का विकास भी बड़े अच्छे से होगा।
1: अरे वाह जी, बहुत बढ़िया सर। इसी बीच में आपसे ये और पूछना चाहूंगा कि उत्तम परिणाम का उपयोग कैसे और करें।
0: हाँ, उत्तम परिणाम का कैसे और कब उपयोग करें?
1: जी,
0: तो कैसे करें उसमें आप देखिए, इसका स्प्रे करना है जो फसल के ऊपर, सामान्यतः सभी फसलों के लिए 250 ml 200 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव कीजिए। अगर आपकी फसल, आपको लग रहा है कि 200 ml पर वो आपके जो 200 लीटर पानी ज्यादा है, तो 150 लीटर पानी ले सकते हैं, और आपको लग रहा है कि थोड़ा पानी की ज्यादा, तो 250 लीटर भी आप पानी ले सकते हैं, और जो फसल पे छिड़काव आपको करना है।
1: जी जी,
0: आपने पूछा कि जो इसकी मतलब जो कैसे करें स्प्रे, इसके बारे में पूछा है उपयोग कैसे करें, और जो मतलब कब करें तो अलग अलग फसल की अवस्थाएं हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे धान की जो फसल है उसमें जब शाखाएं जो निकलना शुरू हो जाती हैं और पौधा सघन होना शुरू हो जाता है, उस समय पर इसका आप करें। और दूसरा, अगर आपको लगता है फिर भी आपको आवश्यकता पड़ रही है, तो जब इसकी जो है फूल बनने की अवस्था है, या जब आपको लग रहा है कि फूल बना, अनाज भी बनना शुरू हो गया, उस समय पर भी आप इसका एक स्प्रे कर सकते हैं। दो स्प्रे रिकमेंडेड है, लेकिन अगर आपको लगता है दो नहीं हो पाए तो एक स्प्रे करके भी इन बीच में कोई भी समय चुन के आप धान में स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी फसल फिर आती है कपास है। इसका जो शाखा विकास है, फूल बनने की अवस्था है, इनमें से कोई भी अवस्था आप जो चुन लें, उस अवस्था पर आप इसका स्प्रे करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। फसल का जो तना है, फूल का जो विकास है, और जो भी इसका पूरा जो तंत्र है वो सशक्त हो जाता है, और फिर वो ज्यादा मात्रा में फल और उसका फूल का वो जो एक तरह से निर्माण करेगा
1: जी।
0: और जिससे कि हमें उपज अच्छी रहेगी। उसके बाद जैसे उड़द मूंग यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं, उसके लिए भी बड़ा जो है सही समय ये, जब फूल आने वाली अवस्था हो और फूल से फली बनने के बीच की भी अवस्था है, उसमें भी आप इसका स्प्रे करें और लाभ ले सकते हैं
1: जी।
0: मूंगफली के बारे में अगर हम आ जाए, तो मूंगफली में जब फलियां, आपको लग रहा है कि फलियां अब तैयार होनी शुरू हो गई हैं, नीचे कोई पौधा उखाड़ के देख सकते हैं, उस समय पे आप इसका स्प्रे करिए, तो उससे फलियों का विकास अच्छा होगा, ज्यादा मात्रा में फलियां होंगी। जैसे कभी कभी आप देखते हैं ना कि कुछ फलियां छोटी सी रह गई, या उसमें और लग सकती थी लेकिन नहीं लगी, तो वो कमी इससे पूरी हो जाएगी। इसके अलावा मक्का की फसल अगर हम ले लें, तो उसमें जब मक्का, अब मैं आप अगर घुसे और आपके जो करीब करीब 4 फीट के आसपास की जब मक्का हो जाए, तो उसमें आप उस समय एक स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा स्प्रे आप फूल आने की अवस्था, जब उसकी ऊपर वाली मंजरी निकलती है, उस समय पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली अवस्था चूक गए, तो इसके बीच की कोई भी अवस्था आप चुन लें, उस समय पे आपको उत्तम परिणाम का इस्तेमाल करना है। जी हाँ आनंद जी।
1: जी ए के सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको करता हूँ हमारे किसान भाइयों की ओर से। आप बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लगातार साझा कर रहे हैं। एक और प्रश्न जो मेरे जहन में आ रहा है, उत्तम परिणाम का उपयोग कौन कौन सी फसलों में हो सकता है?
0: हाँ, लगभग सभी फसलों में, कोई ऐसी फसल नहीं है जिसमें नहीं हो सकता। खास तौर से अगर मैं आपको बताऊं, तो उत्तम परिणाम के जो जहां पर भी किसानों ने प्रयोग किए हैं, उन्होंने हर फसल में इसके बड़े शानदार परिणाम पाए हैं। सब्जी वाली फसलें हैं, जहां पर लोग सब्जियां उगाते हैं
1: जी।
0: और सब्जियां उगा के वो फिर जो है सेल करते हैं बाजार में, वह इसको हर सब्जी में जो मतलब प्रयोग करें, और उसकी दो ही अवस्था है, एक तो जब उसकी शाखाएं बन रही हो, दूसरा जब उसमें फूल और फल आने की बीच की अवस्था हो
1: जी,
0: उस समय पर इसका आप प्रयोग करें और जो उपयोग करें, और अच्छा उत्पादन लें, उत्पादन अच्छा लें, क्वालिटी अच्छी लें। और क्वालिटी से अच्छा ये होता है कि जब कोई भी सब्जी हम ले रहे हैं तो

0: उसका जो एक स्वाभाविक स्वाद होता है वह विकसित हो, तो वह विकसित होता है तो बाजार में भी जब लोग उसका प्रयोग करते हैं या जो लोग उसको बनाते हैं तो सोचते हाँ यार ये सब्जी बहुत अच्छी लग रही है, सब्जियां है। इसके अलावा बहुत सारे जो फल हैं जो कि हमारे क्षेत्र में होते हैं उन पे हम इसका स्प्रे कर सकते हैं और वो फूल वाली अवस्था पे करें, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अनाज वाली सारी फसलों पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गन्ना है उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी फल पे इसका आप जो इस्तेमाल करें उसके आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप फूल की खेती भी करते हैं जैसे कि गेंदा, गेंदा भी आपने जो लगाया इस समय पर लगाते हैं गेंदा, जो कि उसके जो है फूल आते हैं आसपास के शहरों में बेचते हैं और खास तौर से दिवाली के टाइम पे बहुत ज्यादा उनका इस्तेमाल होता है। मूल चूल बात यही है कि उत्तम परिणाम को हर फसल पर आप प्रयोग करें। दो अवस्थाएं हैं, जब उसका विकास हो रहा हो और जब उसके फल फूल वाली अवस्था हो, इन अवस्था में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी आनंद
1: जी, जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक और प्रश्न है मेरा आपसे कि उत्तम परिणाम के उपयोग की मात्रा के बारे में एक बार आप थोड़ा सा जरूर बताएं हमारे किसान भाइयों को।
0: हाँ आनंद जी, देखिए उत्तम परिणाम के दो तरह से इस्तेमाल होते हैं, एक तो जो फसल के ऊपर छिड़काव करके
1: जी, जी।
0: दूसरा बीज उपचार। बीज उपचार के लिए जैसे कि सामान्य फसलें हैं तो उसके लिए जैसे अनाज वाली फसलें और सामान्य फसलें उनकी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ तो उसमें एक एकड़ का जो बीज है उसमें 100 ml मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। 100 से 250 ml के हिसाब से बीज की मात्रा देख लें, जैसे किसी फसल में बीज ज्यादा लगता है किसी फसल में बीज कम लगता है एकड़ में, उस हिसाब से आप डिसाइड कर लें। उससे जो जो आपका बीज है उसके ऊपर आप उत्तम परिणाम का लेप करें, थोड़ी देर छाया में सुखाएं और फिर उसकी बिजाई। इसके अलावा आलू है गन्ना है उसमें कंद होता है तो उसका भी आप 250 ml मात्रा आपको लेनी है, क्योंकि इनकी जो संख्या ज्यादा होती है मात्रा भी ज्यादा होती है। 250 ml से आपको उपचार करना है, छाया में सुखाना है और फिर इसकी बिजाई कर देनी है। तो इससे क्या है अंकुरण बहुत अच्छा होता है
1: जी।
0: अंकुरण होता है, इसके अलावा जो जो जड़े हैं उनका विकास और बड़ा स्वस्थ विकास होता है। इसके बाद फिर आता है खड़ी फसल में, खड़ी फसल में मात्रा 250 ml है एक एकड़ के लिए और जो सामान्य स्प्रेयर से अगर कर रहे हैं तो 250 लीटर पानी आपको चाहिए, 200 से 250 लीटर सामान्य स्प्रेयर जो हाथ वाले हैं या जो ट्रैक्टर वाले उनकी बात में कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ड्रोन के द्वारा छिड़काव करते हैं तो 250 ml मात्रा को ज्यादा से ज्यादा जो उसकी एक टंकी होती है उसको पानी चाहिए सिर्फ जो 10 लीटर, इससे ज्यादा पानी नहीं चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि 240 लीटर पानी की बचत है, फिर भी समान रूप से और बहुत ही जो है आपके जो है सही ढंग से और इफेक्टिवली उसका स्प्रे होता है। तो ड्रोन की जो तकनीक है बड़ी सार्थक तकनीक है और इसका प्रयोग करके आप अनेक लाभ ले सकते।
1: उत्तम परिणाम उपयोग के क्या क्या लाभ हैं?
0: जी हाँ, लाभ की बात यह है तो एक समग्र उत्पाद है, समग्र लाभ देता है, समग्र विकास के लिए काम करता है
1: जी।
0: तो सबसे पहले जब बीज उपचार आपने किया है तो जो उसकी जड़ों का जो विकास है वो तेज होता है और काफी सघन होता है। जहाँ जहाँ पर पौधे की ये शाखाएं जाती हैं जो खेत के नीचे होती हैं जिनको जड़ कहते हैं, जितनी ज्यादा फैलती है उतना ज्यादा पोषण वो लेती हैं, उतना ज्यादा वो पानी लेती हैं। जब पोषण और पानी लेंगी तो पौधे का विकास बहुत अच्छा होगा, वो स्थायी रूप से और सशक्त रूप से खेत में खड़ा रहता है। ठीक है, नंबर एक ये हो गया
1: जी।
0: पौधों की जो भी उसको अपने ऊर्जा चाहिए उसके संचालन में जो है ये सहायक होता है
1: जी।
0: क्योंकि जब शुरुआत में इस्तेमाल हुआ या जब इसको तो इसका जो जो जो आपके पौधे के तंत्र का तंत्र होता है उसको सशक्त करता है
1: जी।
0: तो जो एक आवश्यक ऊर्जा है या पोषण है उसको ये जो है उसकी पूर्ति करता है। इसके अलावा फूल बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो तीव्रता लाता है, फूलों की संख्या ज्यादा बनती है, वो ज्यादा स्वस्थ होते हैं और ऐसे नहीं होते कि फूल बना और नीचे गिर गया फिर उसमें फल नहीं बना, ऐसा नहीं होता है, या फूल बना उसमें दाना नहीं बना, तो ये दोनों ही प्रक्रियाओं में सहायक होता है। चौथा, जब हमारा पौधा स्वस्थ है
1: जी,
0: ताकतवर है, उसका विकास अच्छे से हुआ है तो उसको रोग से जो रोग को रोकने की क्षमता आ जाती है, रोग को सहन करने की क्षमता आ जाती है, तो आसानी से उस फसल में रोग अपना असर नहीं दिखा पाते हैं। तो ये क्योंकि आप जैसे होता है ना, कोई आदमी स्वस्थ है तो भैया ये आदमी तो बिल्कुल फिट फाट है, तो इसको जुकाम बुकाम भी नहीं होता, बुखार भी नहीं आता या अस्वस्थ नहीं होता। इसी तरह से हमारे पौधों के साथ होता है। पांचवा है कि जो हम उत्पाद ले रहे हैं, जो उत्पादन आ रहा है फसल का, जो उपज आ रही है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, शाइनिंग होती है उसमें, स्वाद अच्छा होता है। और उसमें कोई जैसे होता है ना कि जैसे अमरूद है, अमरूद हम लेके उसमें चकत्ते ज्यादा है, लेकिन अगर उत्तम बना सके तो बड़ा अच्छा निखारा हुआ आपका जो फल होगा। तो उसको जब इस तरह की जो अच्छी क्वालिटी की चीजें आप लोगों को देते हैं तो लोग उनको पसंद करते हैं और भाव भी ज्यादा मिलते हैं, तो क्वालिटी को अच्छा करता है। दूसरा ये है कि ये जब इस्तेमाल होता है तो अन्य पोषक तत्वों का भी जो पौधा अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है। जैसे सपोज मान के कोई आदमी स्वस्थ है
1: जी,
0: तो उसने जो भी खाता है वो उसके अंग लगता है,
1: अंग लगता है।
0: अब उसने घी खाया, घी भी उसके काम आ गया, उसने हरी सब्जी खाई वो भी उसके काम आ गई। तो हम ये कहें कि ये पौधे के को एक तरह से हर अवस्था में और हर चीज के लिए फायदेमंद है उत्तम प्रणाम। मेरा किसानों से अनुरोध है कि आप उत्तम प्रणाम का जो उपयोग करके अवश्य देखें, और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो एक खेत में करें और दूसरे में न करें, और फिर उसका अंतर देखें। लेकिन ध्यान ये रखें कि अगर बूंदाबांदी हो रही है तो उस समय पर ध्यान रखें कि जब आप स्प्रे करने जा रहे हैं तो उसके 8-10 घंटे तक कोई बारिश वारिश न हो, क्योंकि पौधे में उसका असर होता है, उसकी पत्तियों में सोखता है। अगर पानी ऊपर से इमिडिएटली आ जाता है तो वो उसका असर कम हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि जो उत्तम प्रणाम के बारे में या जो ऐसा पोषण जो कि स्प्रे के द्वारा ड्रोन के द्वारा हमने देना है वो जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी।
1: तो श्रोताओं, आज के कम में जो है श्री एके सिंह जी ने जो है बहुत ही खूबसूरत जानकारी आपके साथ साझा करी, घुलनशील पोषण से जुड़ी और उत्तम प्रणाम के बारे में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी हमारे तमाम सुनने वालों के साथ। सर, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों को जो लिसनर्स हमें रेडियो पे सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से?
0: जरूर आनंद जी,
1: जी
0: कि पोषण जो हम जो इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों में,
1: जी जी,
0: हमारी सोच यही है कि भाई रासायनिक जो उर्वरक आते हैं कट्टे में हम उन्हीं का ही प्रयोग करें। ऐसे ही है, अब काफी अनुसंधान हुए हैं और उससे ये आया है कि जो खड़ी फसल में अगर हम स्प्रे करते हैं तो बहुत कम मात्रा में, बहुत कम खर्चे में हम उसका उतना ही लाभ ले सकते हैं जितना कि हम स्थूल उर्वरक के प्रयोग से ले रहे हैं, और उससे कहीं ज्यादा ले सकते
1: जी।
0: तो मैं आशा करता हूं कि हम अपने यहाँ ऐसे संसाधन थोड़े से ठीक करें जिससे कि हम स्थूल उर्वरक की जगह जो इस तरह के उर्वरक आ रहे हैं उनको घोल के छिड़काव करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। स्थूल उर्वरक कभी कभी हम बहुत अत्यधिक मात्रा में या असंतुलित रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका लाभ होता है लेकिन हानि भी हमें होती है। हानि पर्यावरण के रूप में होती है, हानि हमें अतिरिक्त खर्चे के रूप में होती है, हानि हमें एक तरह से ये होती है कि जो हम खेत में इस्तेमाल किए वो बहुत सारा हमारे और संसाधनों में जाके मिल जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो हम धीरे धीरे प्रयास करें कि जो इस तरह के जो उत्पाद आ रहे हैं जो कि पानी में घुलनशील हैं और उनका फसल पर छिड़काव होता है, उनका हम प्रयोग करना अपनी खेती में शामिल करें।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एके जी, आप आए और आपने तमाम जानकारियां साझा करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी रही होगी। और इसी बात के साथ मैं आर्य आनंद अब आपसे लूंगा इजाजत। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी नमस्कार, आप जुड़े।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और सभी श्रोताओं को मेरा धन्यवाद कि उन्होंने ये कार्यक्रम सुना।
1: बिल्कुल सर, नमस्कार सर, आपको भी श्रोताओं नमस्कार। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: हल्का बुखार आता था। लोग बोले मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसका बुखार कम ही नहीं हुआ। उसका वजन गिरने लगा, चेहरा पीला पड़ गया, पेट फूलने लगा। हमने कहा सरोज चलो अस्पताल चलते हैं, लेकिन उसके घर वाले बोले अरे ये तो किसी की नजर लग गई है या कोई
1: शाये हैं।
0: महीने तक इलाज नहीं हुआ। जब अस्पताल पहुंची तब तक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इलाज हुआ,
1: जान तो बच गई,
0: लेकिन बाद में उसके शरीर पर दाने निकल आए, चेहरा खराब हो गया। डॉक्टर बोले ये PKDL है, कालाजार की बीमारी। आज भी वो घर से कम निकलती हैं। लोग देखकर फुसफुसाते हैं। सोचिए आरजे बहन, अगर समय पर इलाज हो जाता तो ये सब नहीं होता।
2: ये तो बहुत दर्दनाक है दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। तो आज हम समझेंगे कालाजार क्या है, कैसा होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। टीकन देवी जी, सबसे पहले ये बताइए ये कालाजार होता क्या है।
0: देखिए आरजे खुशी, कालाजार एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसे हम आम भाषा में भले ही कालाजार कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम विसरल लीसमेनियासिस है। यह बीमारी एक बहुत ही छोटे से कीड़े के काटने से फैलती है, जिसे रेत मक्खी या सैड फ्लाइड कहा जाता है। अब ये मक्खी इतनी छोटी होती है कि कई बार हमें दिखती भी नहीं है, और खास बात यह है कि यह ज्यादातर रात के समय काटती है, जब लोग सो रहे होते हैं। जब यह रेत मक्खी किसी इंसान को काटती है तो इसके साथ एक छोटा सा परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह परजीवी धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे लीवर, पीलिया यानी तिल्ली और खून को नुकसान पहुंचाने लगता है। यही वजह है कि शुरुआत में यह बीमारी साधारण लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को काफी कमजोर कर देती है।
2: अच्छा, तो इसका मतलब है कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन टीकन देवी जी इसके लक्षण कैसे पहचाने, लोगों को कैसे पता चले कि ये कालाजार हो सकता है।
0: बहुत अच्छा सवाल है आरजे खुशी। देखिए इसके लक्षण एकदम से तेज नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को लंबे समय तक बुखार बना रहता है, जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। इसके साथ साथ व्यक्ति का वजन कम होने लगता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है और वह पहले जैसा काम नहीं कर पाता। धीरे धीरे पेट भी फूलने लग जाता है, क्योंकि अंदर की तिल्ली और लीवर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा खून की कमी भी हो जाती है, जिससे चेहरा पीला पड़ जाता है और व्यक्ति बहुत कमजोर दिखने लगता है। यही वजह है कि कई बार लोग इसे साधारण बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है।
2: मतलब देखने में तो ये सामान्य बुखार जैसा लगता है, लेकिन असल में ये अंदर से बहुत खतरनाक बीमारी होती है।
0: बिल्कुल सही समझे आप। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो करीब 95% मामलों में यह जानलेवा साबित हो जाती है। इसीलिए लक्षणों को पहचानना और समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है।
2: यह बीमारी किन इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है?
0: भारत में यह बीमारी खास तौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ज्यादा पाई जाती है। इन राज्यों में करीब 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के खतरे में हैं।
2: इतने सारे लोग जोखिम में हैं? ये तो सच में चिंता की बात है।
0: हाँ आरजे खुशी, और खास बात यह है कि यह बीमारी ज्यादा उन लोगों को प्रभावित करती है जो कच्चे घरों में रहते हैं, जिन घरों की दीवारों में दरारें होती हैं, जहां साफ सफाई की कमी होती है और जहां पशु घर के बहुत पास रखे जाते हैं, वहां यह रेत मक्खी आसानी से पनपती है और ऐसे वातावरण में इस बीमारी का खतरा और बढ़ जाता है।
2: अगर किसी को लगे कि उसे ये लक्षण है तो उसे क्या करना चाहिए?
0: सबसे पहले तो बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। आजकल वहाँ पर बहुत सी आसान और तेज जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। एक ऐसा टेस्ट होता है जो लगभग 10 मिनट में यह बता देता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं, और सबसे जरूरी बात कि इसका इलाज सरकारी अस्पतालों में की तरह मुफ्त किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति पैसों की वजह से इलाज से वंचित न रहे।
2: मुफ्त इलाज, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है।
0: बिल्कुल, और अब तो इलाज के लिए बहुत प्रभावी दवाइयाँ भी उपलब्ध है, जैसे कि लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो जल्द असर करती है और मरीज को जल्द ठीक होने में मदद करती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि मरीज को पूरा इलाज लेना चाहिए, बीच में दवा छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बीमारी दोबारा लौट सकती है।
2: टीकन देवी जी, आपने अभी बताया कि लोग समय पर अस्पताल जाएं, लेकिन एक बात बताइए, कई बार लोग सोचते हैं कि जांच में बहुत समय लगेगा या बहुत पैसे लगेंगे, तो क्या सच में जांच इतनी मुश्किल होती है?
0: नहीं नहीं आरजे खुशी, अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही है। पहले के समय में जरूर जांच में समय लगता था, लेकिन अब सरकार ने इतनी सुविधाएं दे दी है कि गांव के पास ही सब सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत जल्द काला आजार की जांच हो जाती है। आजकल एक खास तरह का टेस्ट होता है जिसमे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस उंगली से एक छोटा सा खून का सैंपल लिया जाता है और करीब 10 मिनट के अंदर ही पता चल जाता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं।
2: सिर्फ 10 मिनट में? ये तो बहुत ही आसान हो गया है।
0: हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि अब किसी को भी जांच कराने में डरने या देरी करने की जरूरत नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि शहर जाना पड़ेगा, बड़े अस्पताल में इलाज करनी पड़ेगी, लेकिन अब ये सुविधाएं गांव के पास ही उपलब्ध है।
2: लेकिन टीकन देवी जी, क्या ये टेस्ट पूरी तरह भरोसेमंद होता है?
0: देखिए, ये टेस्ट बहुत हद तक सही परिणाम देता है और शुरुआती पहचान के लिए बहुत उपयोगी है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू कर सकते हैं, और अगर किसी केस में डॉक्टर को और पुष्टि की जरूरत लगे तो वे आगे की जांच भी करवा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यह टेस्ट हमें समय पर बीमारी पकड़ने में मदद करता है, जिससे इलाज जल्द शुरू हो सके और बीमारी गंभीर होने से पहले ही रोक दी जाए।
2: मतलब अब सबसे बड़ी बाधा यानी देर से पता चलना, वो भी काफी हद तक खत्म हो गई है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं तो हमेशा लोगों से यही कहती हूँ, अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो रहा हो या कमजोरी महसूस हो रहे हो, तो बिना सोचे समझे सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाए और टेस्ट कराए। डरने की नहीं, समझदारी दिखाने की जरूरत है।
2: और क्या आशा दीदी भी इसमें मदद करती हैं?
0: हाँ बिल्कुल, आशा दीदी और दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर ऐसे लक्षण वाले लोगों की पहचान करते हैं। वे लोगों को समझाते हैं, उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने में मदद करते हैं और कई बार खुद टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर किसी को जाने में दिक्कत हो तो आशा दीदी से मदद जरूर लेनी चाहिए, वे आपके सबसे करीब की स्वास्थ्य साथी है।
2: ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब अब जानकारी, जांच और इलाज तीनों एक ही गांव के पास उपलब्ध हैं।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि अब काला आजार को हराना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, बस जरूरत है कि लोग समय पर कदम उठाएं।
2: सरकार इस बीमारी को खत्म करने के लिए क्या कर रही है?
0: सरकार इस दिशा में काफी काम कर रही है, एक बड़ा कार्यक्रम चला रहा है जिनका नाम है राष्ट्रीय काला आजार उन्मूलन कार्यक्रम, और यह NCVBDC के तहत आता है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्षण यह है कि हर ब्लॉक में काला आजार के मामले 10,000 लोगों में से एक से भी कम हो जाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने 2023 में यह लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो कि बहुत ही उपलब्धि है।
2: ये तो सच में गर्व की बात है।
0: हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लापरवाह हो जाए, अभी भी सावधानी बहुत जरूरी है। सरकार हर साल लाखों घरों में स्प्रे करवाती है, करीब 3.5 से 3.8 करोड़ लोगों के घरों में दीवारों पर दवा का छिड़काव किया जाता है, जिसमें रेत मक्खियां खत्म हो सके और बीमारी फैलने से रोकी जा सके।
2: तो आम लोग खुद क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए?
0: बहुत आसान उपाय है जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। सबसे पहले तो घर की दीवारों की दरारों को भरना चाहिए ताकि मक्खियों को छिपने की जगह ना मिले। घर और आसपास की साफ सफाई बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा पशुओं को घर से थोड़ा दूर रखना चाहिए ताकि मक्खियां इंसानों के पास ना आए। रात में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जमीन पर या खुले में बाहर सोने से बचे। इन छोटे छोटे उपायों से हम काला आजार जैसी बीमारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
2: टीकन देवी जी, एक बात बताइए, गांव में लोग इस बीमारी को लेकर किस तरह की गलतफहमियां रखते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग बीमारी से ज्यादा डर उसके बारे में सुनी सुनाई बातों से जताते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे खुशी, और यही सबसे बड़ी समस्या भी है। हमारे गाँव में आज भी बहुत लोग काला आजार को भूत प्रेत साया या किसी की बुरी नजर का असर मान लेते हैं। जब किसी को लंबे समय तक बुखार रहता है, शरीर कमजोर हो जाता है और पेट फूल जाता है, तो लोग सीधे डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूक या ओझगुनी के पास चले जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, अरे भाई, ये कोई जादू टोना नहीं, ये एक बीमारी है और इसका इलाज भी है। अगर समय पर सही इलाज मिल जाए तो व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो सकता है।
2: हाँ, और शायद इसी वजह से लोग देर कर देते हैं इलाज कराने में।
0: बिल्कुल, और एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं कि यह बीमारी छूने से फैलती है, इसीलिए मरीज से दूरी बना लेते हैं। कुछ लोग मरीज को तो अलग कमरे में रखने लगते हैं या उसे बात तक नहीं करते, लेकिन सच्चाई यही है कि काला आजार छूने, साथ बैठने या खाना खाने से नहीं फैलता, ये सिर्फ रेत मक्खी के काटने से फैलता है। इसीलिए मरीज से डरे या उसे अलग कमरे की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसे सहारा देने की जरूरत है।
2: और क्या क्या गलत धारणाएं होती हैं लोगों में?
0: कई लोग यह भी मान लेते हैं कि अगर बुखार अपने आप कम हो या तो बीमारी ठीक हो गई, जबकि अंदर से बीमारी बनी रहती है और बाद में और गंभीर हो जाती है। कुछ लोग दवा शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा आराम मिलता है दवा बीच में ही छोड़ देते हैं। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे बीमारी दोबारा लौट सकती है या और जटिल हो सकती है। और एक बात, और कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ गरीब या कमजोर लोगों को ही काला आजार होता है, जबकि सच्चाई यह है कि अगर माहौल सही नहीं है और मक्खियां पनप रही है तो कोई भी व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है।
2: तो इसका समाधान क्या है? लोग इन गलत फहमियों से कैसे बाहर आए?
0: समाधान बहुत साफ है आरजे खुशी। सही जानकारी और जागरूकता। सबसे पहले तो जैसे ही किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो या पेट फूलने लगे, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाइए, किसी भी तरह का झाड़ फूंक या देरी से बचे। दूसरी बात, अगर डॉक्टर इलाज शुरू करे तो पूरा कोर्स पूरा करे, चाहे बीच में कितनी भी आराम क्यों ना मिल जाए। और तीसरी बात, घर और आसपास की सफाई रखे, दीवारों की दरारें भरे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करे, और सबसे जरूरी, मरीज का साथ दे, उसे अलग या कमजोर महसूस ना होने दे।
2: बहुत ही जरूरी बातें आपने बताई। लेकिन टीकन देवी जी, आपने शुरुआत में एक दुखदायी कहानी सुनाई थी, क्या कोई ऐसी कहानी भी है जहां जागरूकता ने किसी की जिंदगी बदल दी है?
0: हाँ बिल्कुल है, और ये कहानी सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। हमारे पास के गांव में मेरी एक सहेली है रीना। कुछ साल पहले उसके इलाके में काला आजार के कई मामले सामने आए थे, जिससे गांव पूरा डरा हुआ था। लेकिन रीना ने डरने के बाद समझदारी दिखाई। उसने पहले से ही अपने घर की दीवारों को ठीक कराया, दरारें भरवाई और घर के आसपास साफ सफाई पर ध्यान देना शुरू किया। उसने मच्छरदानी का इस्तेमाल करना शुरू किया और आशा दीदी की हर बात को ध्यान से सुना और अपनाया। एक दिन उसे भी हल्का बुखार आया। पहले तो वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन इस बार उसने देर नहीं की, तुरंत स्वास्थ्य केंद्र गई, टेस्ट करवाया और रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो हंसते हुए मुझसे बोली, यार टीकन, इस बार मैं डरने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि क्या करना है और कहाँ जाना है। आज वही रीना अपने पूरे गांव में लोगों को समझाती है कि डरना नहीं बल्कि समय पर कदम उठाना है।
2: सच में ये तो असली बदलाव है जब एक व्यक्ति जागरूक होता है और पूरे गांव को जागरूक बना देता है।
0: बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी ताकत है, जागरूकता। याद रखिए, काला आजार खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर हम समय पर पहचान ले और इलाज करा ले तो इसे पूरी तरह हराया जा सकता है।
2: और यही सबसे बड़ा संदेश है आज के कार्यक्रम, समय पर जांच और सही इलाज आपकी जिंदगी बचा सकता है।
0: और साथ ही सही जानकारी अपनाइए, गलत फहमियों से दूर रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाइए।
2: तो दोस्तों, आज से ही एक कदम बढ़ाइए, अपने और अपने पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए जागरूक बनिए।
0: जागरूक बने,
2: सुरक्षित रहें और काला जार को मिलकर हराएं। तो इसी के साथ आज का शो समाप्त होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं आज ये शपथ कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
2: सेहत सही तो लाभ कई। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद शहर का। और दोस्तों आज सोच बदलो का टॉपिक बहुत ही कमाल का है और इस सोच बदलो के टॉपिक में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी हमारे साथी हैं जो हमारा साथ देंगे इस कार्यक्रम में। दोस्तों आज का टॉपिक है शायद हर घर की सच्चाई जो बन चुका है, वो एक ऐसा टॉपिक जिसपे आज के समय में बात करना बहुत जरूरी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट घर में सब लोग एक साथ बैठे होते हैं लेकिन फिर भी हम किसी की बात नहीं सुनते, किसी से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में होता है मोबाइल। यस, आज पूरा का पूरा मुद्दा होने वाला है मोबाइल फोन और ये बहुत जरूरी डिस्कशन बन चुका है। तो मैंने सोचा सोच बदलो प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए मैं अकेला क्यों, तो आज हमारे साथ हैं आरजे रीना, आरजे कुमकुम और एक हमारी खास मेहमान शैली जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हाल चाल है आप लोगों के?
1: थैंक यू आनंद। सच कहूँ तो आजकल कई घरों में लोग एक दूसरे के पास बैठते जरूर है लेकिन कनेक्ट मोबाइल से रहते हैं, परिवार से नहीं।
2: बिल्कुल सही कहा, पहले लोग खाना खाते समय एक दूसरे से बात करते थे लेकिन आजकल तो सब मोबाइल में ही देखते हुए बैठे रहते।
3: रीना जी और कुमकुम जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि बच्चों से लेकर बड़े तक सब धीरे धीरे मोबाइल के इतने आदि हो गए कि घर की हंसी और बातचीत कम हो जा रही है।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच गाइज। बिल्कुल, तो दोस्तों आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, दिल थाम के बैठिए और सुनते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं वेलकम बैक एक बार फिर से। दोस्तों जरा सोचिए, एक परिवार हॉल में बैठा है, पापा मोबाइल में रील्स देख रहे हैं और मम्मी व्हाट्सएप चला रही है, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। क्या यही परिवार है?
1: पहले लोग दिन भर बातें शेयर करते थे, आज क्या हुआ, कैसा दिन रहा,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अब रिप्लाई सिर्फ इतना होता है, ठीक है, क्योंकि ध्यान मोबाइल में होता है।
0: बिल्कुल सही कहा,
2: बिल्कुल सही रीना जी। और यही धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां बढ़ा देता है और घर के लोग साथ रहकर भी अकेले महसूस करने लगते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने कुमकुम जी, मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल रिश्तों को कमजोर कर देता है, बस ये है।
0: सही कहा शैली जी आपने, टेक्नोलॉजी जरूरी है लेकिन फैमिली टाइम उससे भी ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं सच बताऊं श्रोताओं, ऐसा मेरे साथ या शैली जी के या रीना कुमकुम के साथ नहीं है, हर घर की कहानी हो गया है शैली जी। और मुझे लगता है कि सच बताऊं तो मोबाइल के हम इतने आदि हो गए हैं कि आजकल हम वॉशरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। शैली जी आप इस पे क्या कहना चाहेंगी?
3: और कई बार पेरेंट्स खुद मोबाइल में इतने डूबे और बिजी होते हैं कि बच्चों को कैसे वो सिखाएंगे कि उन्हें क्या करना है, जब वो खुद ही इतना बिजी है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और रीना तुम्हें क्या लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर हम सच में अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ छोटी छोटी आदतें बदलनी होगी, जैसे खाना खाते समय मोबाइल दूर रखना, फैमिली टाइम फिक्स करना, बच्चों से खुलकर बातें करना, सुबह और रात कुछ समय बिना फोन के बिताना।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी एक्सपेंसिव मोबाइल फोन की नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के समय और प्यार की होती है।
3: बिल्कुल सही कहा, और जब परिवार में बातचीत बढ़ती है तभी प्यार बढ़ता है, समझ बढ़ती है और सच में सोच बदलती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है मोबाइल की दुनिया में रिश्ते में जैसे मानो कहीं खो से जा रहे हैं, पास बैठकर भी लोग दूर हो गए हैं। मतलब एक टाइम था जब लोग एक दूसरे से बात करना पसंद करते थे, एक समय था जब लोगों को एक दूसरे की चिट्ठियों का इंतजार होता था, वहीं आज एक सेकंड के अंदर व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज करते हैं और थोड़ी देर के बाद वो ऐसे लगता है जैसे हमारे पास सब कुछ आ गया है। लेकिन उसका जो मजा था ना वो एक अलग ही था। अगर मैं शैली जी सबसे हटके बात करूं आप लोगों से गाइज, तो अभी जो ये व्हाट्सएप का ट्रेंड चल गया और उससे पहले जो चिट्ठियों का ट्रेंड था उसमें क्या था शैली जी, कितना मजा आता था उसमें?
3: उसमें बहुत मजा आता था, उसमें हम वेट करते थे।
0: करेक्ट, और हम भेजने के लिए भी हमें बहुत प्रोसेसिंग फॉलो करनी पड़ती थी।
3: अब तो क्या है कि मतलब एक बेचैनी रहती थी, वो हमने आज मम्मी को लेटर भेजा है या पापा हमारे बाहर है उन्हें लेटर भेजा है, तो रिप्लाई क्या आएगा, कब रिप्लाई आएगा, और जो वो रिप्लाई पर तो उन्हें सजो के रखते थे। आज भी लोग पोस्ट कार्ड को सजो के रखे हुए हैं, लेटर बॉक्स जो आज भी हम देखते तो हमें खुशी से महसूस होती है।
0: तो मुझे लगता है कि देखिए सोच बदलने की जरूरत तो यहाँ पर है कि लेटर का ट्रेंड भले ही खत्म हो गया है, व्हाट्सएप का ट्रेंड आ गया है। आई नो व्हाट्सएप अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी हमारे और आपके फायदे के लिए बनी है, अच्छी बात है, हम लोग कनेक्टेड हैं, बट कहीं ना कहीं सोच ये बदलना है कि हम जब परिवार के साथ होते हैं, स्पेसिफिक टाइम बिता रहे होते हैं, परिवार को जो टाइम दे रहे होते हैं, उसमें एक दूसरे से बात करना कितना जरूरी है। शैली जी आपको क्या लगता है?
3: परिवार में एक दूसरे से बात करना, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन परेशान है।
0: करेक्ट,
3: किसके मन में क्या बात। आजकल लोग आप सोचो कि मतलब काउंसलिंग करा रहे हैं लोग, इतना स्ट्रेस बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आपके पास घर में भी एक व्यक्ति नहीं है जिससे आप अपनी बात कह पाए। पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है,
0: क्योंकि सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी
3: है। तो बिजी होने के बाद भी हमारे पेरेंट्स भी बिजी होते थे, मम्मी घर के कामों में, पापा बाहर, लेकिन फिर भी हम लोग शाम का खाना बैठ के खा रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो उसे पूछा भी क्या प्रॉब्लम है, बेटा आज क्या हुआ ऐसा जो आप खाना नहीं खा रहे हो, या आज आप उदास क्यों है।
0: सही कहा आपने,
4: वो कहते हैं ना दोस्तों कि असली कनेक्शन वाईफाई से नहीं दिल से होता है। जब लास्ट में शाम के टाइम हम पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाते थे तो चार बातें हुआ करती थी, लोगों को समझा जाता था, एक दूसरे को समझा जाता था, अपने ड्रीम्स के बारे में बात की जाती थी। अब लोग अपने मोबाइल फोन में ही इतना घुस गए हैं कि सारी चीजें उसी में देखते हैं।
3: और मुझे लगता है कि ये जो हम लोग में होता था ना कि इंतजार, पहले इंतजार करते थे हम रिप्लाई का, आज वो इंतजार खत्म हो गया है तो पेशेंस लेवल भी कम हो गया है
1: जी। और आज जी। बात ना ईगो पे आ जाती है कि अगर आपको मैसेज कर रहा है तो आप क्या मतलब करते हैं इंसान कि यार अभी नहीं रिप्लाई देंगे, हम थोड़ी देर बाद रिप्लाई देंगे इसको।
3: बिल्कुल, पहले कम बातें होती थी, रिश्ते ज्यादा लंबे टिकते थे।
1: बिल्कुल,
3: अब बातें ज्यादा होती हैं,
1: रिश्ते कम टिकते हैं।
0: क्या बात है। चलिए दोस्तों ये बातें चलती रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौट कर आएंगे।
5: हेलो 9821026212 BPL चेक। अरे 9820026235 मैच टच चेक। यार

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एफएम मुरादाबाद पे प्रोग्राम है सोच बदलो, और सोच बदलो का हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोबाइल फोन जो है रिश्तों को कहीं ना कहीं कमजोर करता जा रहा है, खत्म करता जा रहा है। मम्मी घर में होती है, पापा घर में होते हैं, हम सब घर में होते हैं, लेकिन उसके बाद भी नाश्ते के लिए एक टाइम था जब मम्मियां 100 गालियां देकर उठाती थी शैली जी, और आज का टाइम है कि मम्मी सिर्फ एक छोटा सा मैसेज कर देती है, नाश्ता रेडी है टेबल पे, ऊपर से नीचे आ जाओ, है ना। तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं हमें हमारे घर के पेरेंट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है।
1: हाँ बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नाश्ता रेडी है, पहले सब लोग जब टेबल पे आ जाते थे तभी नाश्ता लगता था, अब सबके कमरों में ही पहुंचा देगा। और रूम पे टाइम नहीं है बेटा, हम तुम्हारा रूम में, मतलब मैं भी आप रेस्ट करो, मैं वहीं पहुंचा रही हूँ। क्यों वहीं भाई, सब साथ में बैठ के नाश्ता।
2: और पहले टाइम का भी फिक्स होता था, अब भूख नहीं है, अभी नहीं खा रही, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी, अब तो ये हो गया है।
1: अब नाश्ता हो रहा है 11 बजे 2 बजे, आप खाना कैसे खा लोगे?
2: इनफैक्ट हम उठ ही लेट रहे हैं,
0: मतलब दिनचर्या भी कहने के मोबाइल की वजह से, क्योंकि लोग
1: तो लेट नाइट आ रही है। पहले की लेडीज घर में खाना बनाने के बाद कढ़ाई सिलाई बुनाई सारे काम कर लेती थी, अब लेडीज को खाना बनाने के बाद टाइम ही नहीं है,
2: टाइम ही नहीं है बिल्कुल,
1: क्योंकि वो सुबह का नाश्ता लेट, फिर दोपहर का खाना लेट, और चीजें लेट। पहले लोग ऑफिस चले गए, हम लोग की मम्मियों को हमने स्वेटर बुनते देखा है, मैंने तो आज तक एक स्वेटर नहीं बुन पाया क्योंकि टाइम ही नहीं है।
2: टाइम तो तब हो ना कि हम समय पर सोए, समय पर उठे, अब उठते ही इतने लेट हैं। पहले टाइम के पंचुअल हुआ करते थे, अब हम टाइम को समझते नहीं है,
0: टाइम को इसलिए नहीं समझते,
1: पंचुअल भी अगर ना बोलो तो हम टाइम की वैल्यू
0: समझते थे,
3: टाइम की वैल्यू उतनी नहीं की जाती जैसे पहले की जाती थी,
1: और जो टाइम की वैल्यू आज भी करते ना वो सक्सेस है।
0: ये तो बात बिल्कुल सही कही है, तो मतलब सोच बदलने की जरूरत यहाँ पर नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हो किससे नहीं, जरूरत है सही चीज को मेंटेन करने की, है ना। अगर आप सही तरीके से चीजों को मैनेज करोगे तो मुझे लगता है बेहतर चीजें हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, हर चीज फोन में ही मत ढूंढो,
2: बिल्कुल
0: अगर आप घर पे हो, परिवार के साथ हो, रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो तो उनसे बात करो।
1: आप सोचो आजकल चैट जीपीटी जो आया है वो इतना पॉपुलर क्यों है,
0: लोग उससे बात कर रहे हैं,
1: क्योंकि लोगों के पास व्यूज ही नहीं रह गए हैं। आप लोगों को पहले, अगर कोई अगर नॉन प्रोफेशन बंदा है जिन्होंने कभी माइक हाथ में नहीं थामाया, अगर आप किसी को दे दोगे ना वो बोल नहीं पाएगा, उसके पास शब्द ही नहीं होंगे, डिक्शनरी कम हो गई है।

0: आजकल भैया दूध लेने भी नहीं जाते, क्यों? सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है।
1: पहले चलो ठीक है, कुछ चीजों के लिए तो निकलना ही पड़ता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं निकलना है। कि हमने अपने आप को इतना डिपेंड कर लिया है, हम लोग पैदल स्कूल जाते थे।
2: सोचो
1: आजकल बच्चे को हम बैग लेकर के बस तक भी पहुंचाने जाएंगे,
3: छोड़ने जाते हैं
1: और उनका बैग उठा के बस से भी घर पे लाएंगे।
0: सही कहा आपने। तो दोस्तों मतलब कुल मिला के यह है कि बात आलस की तो नहीं कर रहे हैं, आज हम बात हम कर रहे हैं कि हमारे जो परिवार हमारे कनेक्शन कम हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ा कारण है, उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन इसलिए क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मोबाइल पे ही दिखाते हैं। हम परिवार के साथ होते हुए भी ऐसा महसूस करते हैं कि हम फैमिली के साथ नहीं है। अगर सोचो हम चार लोग यहाँ अगर अपने अपने मोबाइल में लग जाए तो कौन एक दूसरे से बात करेगा?
3: कोई भी
0: नहीं। सोचने की बात है, और ना हम एक दूसरे को जान पाएंगे ना समझ पाएंगे।
1: आजकल जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हो गए उनका मजा किरकिरा क्यों हो गया है? क्योंकि वहां जाके लोग वहां की खूबसूरती नहीं देखते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस पे जाइए, वहां की कहानी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि या कौन सा व्यू हम देख लें, यहाँ पे हमारा फोटो सबसे बेस्ट
3: फोटो वीडियो
0: कैप्चर करो उसको ही।
1: खाने के टेबल पे खाना रखा है
0: करे,
1: लेकिन आपको उसको टेस्ट नहीं पता है कि आपने आठ ठीक था। बाद में अगर एक डिश चार डिश में से एक डिश आपने ऐसी टेस्ट के लिए, वो खाना अच्छा नहीं था, बाकी की चार आपने स्वाद ले ही नहीं पाए।
3: क्यों? हमारा ध्यान तो फोन में होता है, पहले हम फोटो खींचते हैं स्नैप भेजते हैं और फिर वही टाइम हो जाता है चलो चलो।
1: हम लोग के टाइम में एक ऐसे आता था हिंदी में ज्ञान के अभिशाप और चमत्कार
3: जी,
1: तो मतलब वो हर मतलब जब भी देखो वो एक सबसे रखा ही होता था क्वेश्चन पेपर में वो, तो उस टाइम पे मुझे वो इतना नहीं समझ आता था, मगर आज मुझे समझ में आता है। ऐसा नहीं है, मोबाइल अच्छी चीज है, हम लोगों को बहुत अच्छी चीजें मिली हुई है कि हम लोगों को बहुत कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन हम अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं ये मैटर करता है।
3: बिल्कुल,
1: किस चीज पे दे रहे हैं, पॉजिटिव चीज पे दे रहे हैं या नेगेटिव चीज पे दे रहे हैं? पॉजिटिव भी है इसमें, नेगेटिव भी है।
0: सही कहा आपने। तो दोस्तों आप सुनते रहिए ऐसे ही सोच बदलो प्रोग्राम, और अभी हम लौट कर आते हैं एक छोटे से गाने के बाद।

0: इस गाने के बाद वेलकम बैक है शैली। जाते जाते रीना कुमकुम, आप लोग क्या कहना चाहोगे हमारे युवा पीढ़ी से, जो लोग घर में बैठ के बातें कम मोबाइल ज्यादा चलाते हैं उन लोगों?
1: मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए हर घर में जितने भी मेंबर्स है ना, हर घर में सभी के पास फोन है। तो पहली बात पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास फोन है तो जो बच्चे हैं जो 12th तक अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको फोन ना दे। अगर आप उनको फोन नहीं देंगे तो वो देखिए और भी आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। हमें तो ये पता है ना कि हमने बच्चों को फोन दे दिया, वो पढ़ ही रहा होगा, लेकिन आप देखने नहीं जा रहे कि उस कमरे में वो पढ़ रहा है या वीडियो देख रहा है, क्या कर रहा है। तो अगर आप फोन दे भी रहे तो उस चीज का ध्यान रखें कि बच्चा कब क्या किस टाइम क्या कर रहा है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, फोन नहीं देना चाहिए। लेकिन कई टाइम ना हमें टीचर्स ऐसे प्रोजेक्ट दे देते हैं कि बच्चों को काम होता है फोन से, इसलिए पेरेंट्स उनकी सुविधा के लिए देते हैं, पर वो ना फोन
1: यूटिलाइज हमें अच्छे तरीके से करना
2: सुविधा
1: चाहिए।
2: के लिए दी जाते हैं क्योंकि उन सुविधाओं से हम आगे बढ़ सके, अपने अपने करियर के लिए सोच सके, अपने फ्यूचर के बारे में आगे देख सकें कि हमारा पढ़ाई में और चीजों में क्या क्या कर सकते हैं। पर वो डिपेंड इतने हो जाते हैं उस फोन पे, उसके आदि बन जाते हैं एक तरह से।
3: मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि जब भी वो बच्चों के सामने मोबाइल देखें या खुद भी देखें तो मोटिवेशनल चीजें ज्यादा देखें, जिससे उन्हें कुछ लगे कि हाँ मम्मा या पापा हमें ये चीजें देखती है तो उनके दिमाग पे भी वही छाप पड़ जाती है।
4: बिल्कुल,
3: तो वो भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे लगे कि हाँ ये चीज ठीक है।
4: और बच्चों को भी टाइम दीजिए, आप खुद नहीं फोन में रहेंगे बच्चे। अब आजकल मैम ये होता है कि बच्चे आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आप काम में बिजी होते हैं या फिर फोन चला रहे हो या फिर मासी का फोन आ गया, तो भैया तो समझो बेटा।
3: तो सबसे ज्यादा यंगस्टर को काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है इस समय, सबसे ज्यादा स्ट्रेस। लोग काउंसलिंग ले रहे हैं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, कि मुझे उनके पास बात करने के लिए लोग नहीं है। साइड चल गई है, आइए बात करिए।
4: बिल्कुल, अब इंसान वहाँ टाइम दे रहा है लेकिन अपने फैमिली को कम।
2: मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम
4: लेकिन अपने फैमिली को कम
2: मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, ड्रामास देखते हैं या कोई भी ड्रामा आप देखते हो कंट्री के बाहर का, उसमें ना एक टाइम दिया जाता है कि नो मोबाइल टाइम, फैमिली का टाइम जो रहता है उस मोबाइल को ना एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। तो ऐसा हमारे यहाँ भी होना चाहिए, आप सबको अपनी फैमिली में एक टाइम ऐसा बनाना चाहिए यहाँ सब फैमिली एक साथ रहेगी, मोबाइल को एक बॉक्स में रख दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए।
1: चलिए श्रोताओं, अब हम लेते हैं जाने की विदा।
0: बिल्कुल, इजाजत लेंगे लेकिन सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सोच जब बदलेगी जब हम उसकी शुरुआत करेंगे, उसकी शुरुआत मुझे और आपको ही करनी है श्रोताओं। तो मोबाइल एक अच्छी चीज है हमारी फैसिलिटी के लिए, इस गवर्नमेंट ने बनाई है, टेक्नोलॉजी का अच्छा फायदा आपको जरूर मिलेगा और मिल भी रहा होगा आई एम श्योर। बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारी चीजें कर भी रहे हैं, बट इसका यह मतलब नहीं है कि अपने रिश्तों को भूल जाए, अपने परिवार को भूल जाए। परिवार को एक क्वालिटी टाइम दीजिए और फैमिली से भी कहना चाहता हूँ, स्पेशली अगर आप मुझे सुन रही हैं, वर्किंग लेडी हैं, आप वुमेन वर्किंग वुमेन हैं, तो डेफिनेटली अच्छी बात है, आप जो भी कर रही करती रहिए, ऑल द वे बेस्ट। बट उसके साथ

0: के साथ अगर आप घर जा रही हैं तो उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम अपने बच्चे के साथ जरूर बिताएं, उससे पूछें आज उसने स्कूल में क्या किया, उसके स्कूल में कैसा रहा उसका टाइम, उसने किसके साथ टाइम बिताया। अगर आप फादर हैं तो आप भी अपने बच्चों के साथ स्पेशल टाइम डेफिनेटली सेलिब्रेट करें और एक वीकेंड में एक ऐसा दिन जरूर निकालें जिसमें नो मोबाइल, एटलीस्ट एक घंटा ही सही, बट वो आप जरूर करें, कहीं बाहर जाएं, एक्टिविटीज करें, फन करें, बट मोबाइल को थोड़ा सा तवज्जो कम दें, मतलब जब आपको लगता है स्पेशली परिवार के लिए टाइम है तो ये चीज आप कीजिए, सोच अपने आप बदलेगी, बाकी कोशिशें आपको करनी पड़ेंगी। हम भी आपके लिए कोशिश करते रहते हैं प्रोग्राम के जरिए कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाएं और आपको जगाएं। बाकी के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनते रहिए, है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। फिर से बोलेंगे रेडियो
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बाय।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
0: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, यह है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जिसपे हम कुछ ना कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद हैं, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी बातें करती हैं और बहुत ही अल्टीमेट सी यू नो वाइब आ रही है मुझे इनके साथ यू नो बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
3: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
0: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
3: जी, मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा, मैंने कहा था मैम बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी उनकी, आपको अल्टीमेटली वो एक फील यू नो आएगी बातों में, और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम आपको स्टेशन आके कैसा लगा, हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का यू नो एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
3: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
0: एब्सोल्युटली।
3: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है, एंड आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं, नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कंप्लीट।
0: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? सो गाइज, आई होप आपको डेफिनेटली मजा आएगा इस कॉन्वर्सेशन में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो क्वेश्चन आप हमें भेजते हैं बेसिकली, और आज हमारे पास आप ही के क्वेश्चन हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वांट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर का क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है, बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
3: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानेंगी। एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है। हाँ, जिसे पुराने जमाने
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
3: ठीक है, तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर आर लॉट ऑफ चीजें, देयर इज अ रेनबो डिसऑर्डर्स जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप आ सकते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स. आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 इयर्स, सो देर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज. ठीक है, देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडी इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड. तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है. तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड. तो क्योंकि वी आर फीमेल तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर, एंड डिलीवरी हमने भी वी हैव गॉन थ्रू दैट फेज, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल.
0: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए. अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को, जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है. सो मैम, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है. इनफैक्ट एवरीबॉडी, सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है.
3: Exactly.
0: सब लोग बहुत भाग रहे हैं, बट ऐसे में ना हमारी घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं, या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती है, अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती है. उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, एंड और भी बहुत सारी चीजें उन्हें संभाल दी है, पर उन्हें खुद को नहीं देखना है. बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा.
3: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली. कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
0: बच्चे को दिखा लाते
3: हैं. आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स. अभी कल की कहानी बताती हूँ. देयर वर टू पीपल, ठीक है, हमारे स्टाफ की पेशेंट थी, मदर, बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो. तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है. शी डिनाइड, बोली नहीं मैम, घर में मेरे सब बीमार है, मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती. अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे, विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड. तो इन्वेस्टिगेशन एट टाइम इज इम्पोर्टेंट, ताकि हम इंटरवीन कर लें. तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ. एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं, हम जो पैप स्मियर और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं, आप वो करा लो. डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें, बट एक स्क्रीन करके, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे. अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द है, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे. आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे. तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ. अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है, तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकते. और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है.
0: Absolutely. तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं. तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी, जैसे कि मैम ने कहा. आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर. और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं. आज वुमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं. अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच. आजकल का लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है, ये आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप है जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जिसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो चेकअप, उन्हें कब कब कराने चाहिए?
3: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर.
0: ठीक है.
3: अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 टू 30 इयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1 से 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट. एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर. ठीक है, इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 to 65 इयर्स ऑफ एज. ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता. एक स्पैचुला से आपकी सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है. इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर. आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे. करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस न्यूज जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है. इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रही है. अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले. पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स, बट ऐसा नहीं है. कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है दैट डजंट मीन कि वो आपके बुरे के लिए.
0: करेक्ट करेक्ट.
3: गवर्नमेंट इज रनिंग
0: की एब्सोल्युटली
3: अब पोलियो इरेडिकेट हो गया हमारे, ठीक है. एक टाइम पे इतना सारा पोलियो का केस मिलता था, बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवेंट तो उसके बाद उसके केसेस आने कम हो गए. अब गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इतनी महंगी वैक्सीन जिसकी एक डोज लगभग 3,000 से 4,000 रुपए की है वो फ्री ऑफ कॉस्ट.
0: फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल.
3: उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को. अब एक इसमें दो तीन तरह की वैक्सीन होती है, सर्वरेक्स, गार्डेसिल, ये सब वैक्सीन होती है. डोजिंग का भी है कि 9 to 15 ईयर्स है तो 2 डोज वैक्सीन लगानी है 0 to 6 मंथ के इंटरवल पे. और एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप एज ज्यादा है 15 साल से ऊपर है तो यू कैन गो फॉर 3 डोज वैक्सीन, ठीक है. और ये लगवानी चाहिए. इट इज अ वेरी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन. आई गेट पेशेंट्स एंड आई एम ऑन दिस सोशल मीडिया. आई वॉन्ट टू से कि यार लगवा लो, ये अच्छा है. सब अपनी बच्चियों को लगवाएं और जो भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं टिल 45 इयर्स आप प्लीज इसे लगवाएं. दूसरी चीज एक मेमोग्राफी की स्क्रीनिंग, बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग रेट. तो वो 40 साल के बाद मेमोग्राफी हम कहते हैं कि आप ईयरली, नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 ईयरली बाई ईयरली आप मेमोग्राफी करा लें. प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती.
0: ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच. आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया. यू नो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, जो HPV वैक्सीन है या जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है. पर आई डोंट नो कि उनको ये मिथ्स या उनका कह सकते हैं कि मेंटालिटी अलग लेवल पे चल रहा है. आप एज ए डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
3: आई वुड से कि प्लीज लगवाइए, ठीक है. इट इज वेरी फ्रेंडली वैक्सीन. कुछ नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है. कोविड के बाद लोगों ने इतने वो डिल्यूजन्स बना लिए कि कोविड वैक्सीन से ही हो गया, कोविड वैक्सीन से ही. कोई भी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं आती कि आपको हार्म करा जाए.
0: Absolutely.
3: नहीं तो सरकार को तो कोर्ट में सू कर दिया जाएगा.
0: करेक्ट मैम, बिल्कुल.
3: और पहले जब पैसे देके लगाई जा रही थी तो लोग लगवा रहे थे, और जब हम फ्री में उसको लगवा रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सरकार का कोई स्कैम है. नो, इट इज नॉट अ स्कैम. इट शुड बी गिवन 9 से 14 साल की लड़कियों को. प्लीज सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें.
0: एब्सोल्युटली. और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एवी का वैक्सीन आप जरूर कराएं. ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें. मैम थैंक यू वेरी मच. आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारे यू नो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स यू नो लोगों ने बनाई हुई है अपने दिमाग में, जहन में. अभी भी 2026 चल रहा है, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो अपने रिचुअल्स को, कल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग. उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेकर बहुत ज्यादा मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं? यू नो, पैड्स मत यूज करो, ये मत करो.
3: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है. आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते.
0: Absolutely.
3: गंदा खून होता है, ठीक है. अब इफ आई वुड से ये सब नॉर्थ में है. इफ यू सी सनातन धर्म, दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है. इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल. क्यों इसलिए किया जाता है, अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन, है ना. जिसके पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है. द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी. उस बच्ची की शादी कराना, मतलब होल लाइफ इज मिसमैच. तो जिसको आ रहे हैं इट इज अ वेरी गुड साइन. अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी.
0: Correct.
3: मंदिर ऊपर हुआ करते थे.
0: Right.
3: तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
3: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था. तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं. दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको अछूत समझा जाएगा. ऐसा उन लोग का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था. इवन उसको गंदा ब्लड कहा जाता है. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है. हाउ कैन अ बेबी भी गंदा नहीं हो सकता ना. सो अभी भी अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है यानी कि हमारी मम्मी, दादी, नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस. उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे. द थिंग इज, जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू. आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग एंड दिस माई डॉटर विल फॉलो. ठीक है, मेरी बेटी भी ये सब करने वाली है, बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माय मदर. ठीक है, मम्मी जब होती है तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स की, ठीक है, व्हेन आई एम अलोन एट माय होम आई फॉलो माय रिचुअल. तो यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन को अपन नहीं चेंज कर सकते. थिंग इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी. जब इतना लास्ट पहले के जमाने में कोई मोबाइल का यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का, आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता. थिंग्स आर चेंजिंग, व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग, व्हाई कांट वी अपडेट ना.
0: करेक्ट. अच्छा मैम, पीरियड से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज अक्सर उनका सामना करती हैं, इवन कुछ लेडीज उसको अवॉइड भी कर देते हैं.
3: एग्जैक्टली.
0: तो उसके विषय में थोड़ा सा आप बताएं.
3: हाँ, बहुत सारी, जैसे कि पीरियड का कम आना इज डिजीज, पीरियड का बहुत ज्यादा आना इज अ डिजीज. आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और उसमें बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है या गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डिजीज. ठीक है, अब पीरियड आ रहे हैं लेकिन डिसमेनोरिया यानी कि आपको बहुत पेन के साथ हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डिजीज. तो ये सब बीमारियां हैं. अब पीरियड नहीं आए, एक दो तीन महीने नहीं आए तो लोग ये सोचते हैं कि बंद होने वाला है, बट बंद होने की एक स्पेसिफिक एज होती है और एक स्पेसिफिक हार्मोनल प्रोफाइल होता है विच यू विल गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, तब वो कराएगी. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपके अर्ली पीरियड भी बंद हो रहे हैं, मेरे पास तीन पेशेंट मेरे फॉलोअप में है जो कि 30s की एज में है, 30, 31, 32 एंड 3 साल से एमिनोरिक है यानी कि 3 साल से महीना नहीं आ रहा. हैड दे कम अर्ली आई वुड हैव इंटरप्टेड, बट अब क्योंकि वो क्रोनिकली हो गया है तो इट इज वेरी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्योर देम.
0: ओके, वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. सो आई होप जो भी विमेन्स, जो भी लेडीज सुन रहे हैं शो को, आई एम श्योर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे. आज डॉक्टर राशिका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, एशियन हॉस्पिटल से हमारे बीच में हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे सॉल्व कर रही हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग हमें अक्सर भेजते रहते हैं, उस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैम यहाँ पे कर रही हैं. एंड मैम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो और हमारे लिसनर्स भी डेफिनेटली कनेक्ट हो पा रहे होंगे इस चीज से कहीं ना कहीं.
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा. इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं. आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद. फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534.

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश के उन खास पहचान से जो परंपरा, स्वाद और विकास का अनोखा संगम है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। आज लेकर आई हूं एक ऐसे स्वाद की कहानी जो दशकों से लोगों की जुबान पर राज कर रही है। एक ऐसा स्वाद जिसके बिना मुरादाबाद की पहचान अधूरी मानी जाती है।
0: जी हाँ दोस्तों, जब भी मुरादाबाद का नाम आता है तो सबसे पहले याद आती है पीतल नगरी। दुनिया भर में अपने पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के लिए मशहूर मुरादाबाद आज एक और खास पहचान बना चुका है।
1: बिल्कुल, अब मुरादाबाद सिर्फ पीतल के लिए नहीं बल्कि अपनी मशहूर मूंग दाल के लिए पूरे देश में जाना जाता है।
0: सुबह की हलचल, बाजारों में लोगों की चहल पहल और दुकानों से उठती गर्मा गर्म मूंग दाल की खुशबू, आय हाय हाय,
1: ऐसा लगता है जैसे हर गली कह रही हो मुरादाबाद आए हो तो मूंग दाल चखे बिना मत जाइए।
0: यही कारण है कि आज देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग यहाँ की मूंग दाल का स्वाद लेने जरूर पहुँचते हैं।
1: और अब उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से इस पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल रही है।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्थानीय खानपान और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं
1: और इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना, जिसके तहत मुरादाबाद की मूंग दाल को विशेष पहचान दी जा रही है।
0: दोस्तों, आखिर क्या खास है मुरादाबाद की मूंग दाल में?
1: इसका राज छुपा है इसी की पारंपरिक विधि और बेहतरीन मसालों में।
0: सबसे पहले चुनी जाती है उच्च गुणवत्ता वाली धुली हुई मूंग दाल, फिर उसे साफ करके खास तरीके से भिगोया जाता है।
1: इसके बाद धीमी आंच पर दाल को इस तरह पकाया जाता है कि उसका हर दाना मुलायम रहे लेकिन टूटे नहीं।
0: पर शुरू होता है असली जादू।
1: देसी घी या शुद्ध तेल में जीरा, हींग, हरी मिर्च, अदरक और खास मसालों का तड़का लगाया जाता है।
0: जब यह तड़का दाल में मिलता है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है।
1: ऊपर से डाला जाता है हरा धनिया, नींबू का रस और कभी कभी हल्की सी देसी घी की धार,
0: बस यही बनाती है मुरादाबाद की मूंग दाल को सबसे अलग।
1: कहते हैं कि जिसने एक बार इसका स्वाद चख लिया वह दोबारा मुरादाबाद आए बिना रह नहीं पाता।
0: खास बात यह है कि यहाँ की मूंग दाल सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक भी होती है।
1: इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए यह स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखती है।
0: मुरादाबाद की कई पुरानी दुकानें पिछले 50 से 70 वर्षों से इसी पारंपरिक स्वाद को बनाए हुए हैं।
1: पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है यह कला, आज भी उसी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ रही है।
0: सुबह के नाश्ते से लेकर शाम की हल्की भूख तक मूंग दाल हर समय लोगों की पहली पसंद बनी रहती है।
1: कई लोग इसे कुरकुरी नमकीन के रूप में पसंद करते हैं तो कई लोग गर्मा गर्म मसालेदार दाल के रूप में।
0: यही विविधता इसे हर उम्र के लोगों का पसंदीदा व्यंजन बनाती है।
1: दोस्तों, किसी भी पारंपरिक व्यंजन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि सही पहचान भी जरूरी होती है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य यही है कि हर जिले के प्रसिद्ध व्यंजन को नई पहचान मिले।
1: इसी के तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे कारोबारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी, मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी भी दी जा रही है।
1: अब मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं ही रहेगी बल्कि देश और विदेश के ग्राहकों तक पहुंचेगी।
0: इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, छोटे व्यापारियों की आय बढ़ेगी और महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार होंगे। सोशल मीडिया पर भी अब हैशटैग मुरादाबाद दाल तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
1: लोग इसकी तस्वीरें, वीडियो और स्वाद का अनुभव साझा कर रहे हैं।
0: एक समय था जब मुरादाबाद को सिर्फ पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था,
1: लेकिन आज यह शहर अपने पारंपरिक स्वाद, संस्कृति और स्थानीय व्यंजनों के कारण भी नई पहचान बना रहा है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप मुरादाबाद आएं,
1: वहाँ के शानदार पीतल उद्योग को जरूर देखिए,
0: शहर की ऐतिहासिक विरासत को जानिए
1: और सबसे जरूरी,
0: मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल का स्वाद जरूर चखिए,
1: क्योंकि यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं
0: बल्कि मुरादाबाद की मेहनत, परंपरा और मेहमान नवाजी की पहचान है।
1: और जब स्थानीय स्वाद को विकास का साथ मिलता है
0: तो एक जिले की पहचान पूरे देश की शान बन जाता है।
1: विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
0: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है, इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष में कही।
2: इन तिरंगा यात्रा, बाइक एंड साइकिल रैलीज, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कंसर्ट्स, ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द सेंटीमेंट बिहाइंड देम इज कॉमन। द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल इन विच एवरी सिटीजन कैन फाइंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
4: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर

0: और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगत सिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के दो मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है। तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफरातबाद 89.6 पर। और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। हम लेकर हाजिर हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, और मेरे साथ में है प्राची। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, सपनों की कोई उम्र नहीं होती।
1: क्या सपनों पर भी कोई उम्र लिखी होती है? क्या कोई सपना 20 साल की उम्र में खूबसूरत होता है और 60 साल की उम्र में बेकार? जी नहीं, बिल्कुल खुशी जी, क्योंकि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। सपने तो बस सपने होते हैं, उन्हें देखने के लिए आंखों में रोशनी चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए दिल में हिम्मत चाहिए।
0: और एक बड़ी खूबसूरत सी शायरी भी है, उम्र की गिनती से कहां सपने मरा करते हैं, कुछ ख्वाब तो आखिरी सांस तक जिया करते हैं। लोग कहते हैं अब तुम्हारी उम्र नहीं रही, लोग कहते हैं अब तुम्हारी उम्र नहीं रही, हम कहते हैं सपने उम्र से नहीं हौसलों से चलते हैं।
1: क्या बात कही खुशी जी आपने। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक कहानी, एक ऐसी महिला की कहानी जो बस आपकी दिल को छू जाएगी।
0: एक ऐसी महिला की जिसने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के सपने पूरे करते हुए गुजार दिया।
1: दोस्तों, उनका नाम था सावित्री देवी, और सावित्री देवी की उम्र लगभग 62 साल थी।
0: उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में उनका घर था, पति सरकारी नौकरी में थे, दो बच्चे थे, जिंदगी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उस दौर की बहुत सी महिलाओं की होती थी।
1: जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह सबसे पहले उठना, घर संभालना, बच्चों को स्कूल भेजना, पति के लिए खाना बनाना, बुजुर्ग सास ससुर की सेवा कर, और दिन खत्म होते होते अपने लिए कुछ भी नहीं बचता था।
0: लेकिन दोस्तों, सावित्री देवी के अंदर एक सपना था। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन में वह स्कूल जाना चाहती थी, किताबें पढ़ना चाहती थी, उनके नाम के आगे एक डिग्री लगाना चाहती थी।
1: लेकिन दोस्तों, उनकी घर की परिस्थितियां ऐसी थीं कि 8वीं कक्षा के बाद उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। उस समय लोग कहा करते थे कि लड़कियों का इतना पढ़कर क्या होगा, और सावित्री जी चुप हो जाया करती थी। लेकिन उनका सपना चुप नहीं हुआ,
0: वो सपना उनके अंदर कहीं रह गया। फिर शादी हो गई, बच्चे हुए, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, और धीरे धीरे उन्होंने भी मान लिया कि शायद अब पढ़ाई उनके लिए नहीं है।
1: एक दिन उनकी पोती जब स्कूल से घर आई, उसके हाथ में एक किताब थी। वह अपनी दादी से बोली, दादी ये कहानी आप पढ़कर सुनाओ ना।
0: सावित्री ने किताब हाथ में ली, उस सेकंड तक किताब को देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा दादी को पढ़ना नहीं आता।
1: और दोस्तों, आपको पता है पोती ने मासूमियत से क्या पूछा?
0: लेकिन दादी, आपने स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी क्या?
1: इस पर सावित्री देवी ने कहा कि तो थी बेटा, लेकिन बहुत थोड़ी।
0: पोती ने तुरंत कहा, तो आप कर लो।
1: बस यही दो शब्द सावित्री देवी के दिल में कहीं गहरे उतर गए थे। उसी रात सावित्री देवी काफी देर तक सो नहीं पाई। उन्होंने दोस्तों खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरी पोती 10 साल की उम्र में पढ़ सकती है, तो मैं 60 साल की उम्र में मैं क्यों नहीं पढ़ सकती?
0: अगली सुबह उन्होंने अपने बेटे से कहा, मुझे पढ़ना है। बेटा हंस पड़ा, उसे मजाक लगा, उसे लगा माँ मजाक कर रही है।
1: और दोस्तों, उसने कहा, माँ अब इस उम्र में पढ़कर क्या करूँगी? सावित्री देवी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई और कहा, शायद वही करूँगी जो मैं बचपन में करना चाहती थी।
0: और फिर उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी, पहले हिंदी की किताब, फिर अखबार, फिर अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्द। उम्र 60 पार थी, लेकिन उनके अंदर की छात्रा शायद अभी भी 15 साल की थी।
1: दोस्तों सच में शुरुआत में सपने आसान होते हैं। कभी वो अक्षर भूल जाया करती थी, कभी शब्द समझ में नहीं आते थे, कभी घर में कोई कह देता था, अब इस उम्र में ये सब करने की क्या जरूरत है माँ, कभी पड़ोस की महिलाएं मजाक बनाया करती थी, अरे बहन जी आप परीक्षा देकर कलेक्टर बनोगी क्या?
0: सावित्री देवी हंस देती थी, लेकिन अंदर से वह और मजबूत हो जाती। उन्होंने एक कॉपी बनाई, उसके पहले पन्ने पर लिखा मेरा सपना, और उसके नीचे देर हुई लेकिन खत्म नहीं।
1: जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्या क्या बात लिखी कि देर तो हुई है लेकिन खत्म नहीं हुआ। दिन गुजरते गए और सावित्री देवी ने आखिरकार पढ़ना सीख ही लिया, फिर लिखना सीखा, और कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पहली परीक्षा दी,
0: और जब परीक्षा का परिणाम आया वह पास हो गई बहुत अच्छे नंबरों से। बहुत अच्छे नंबरों से नहीं, लेकिन उनके लिए वो नंबर दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि थी।
1: क्योंकि दोस्तों वो सिर्फ पास नहीं हुई थी, उन्होंने उस सोच को भी हरा दिया था जो कहती थी कि सपने सिर्फ जवान लोग देखते हैं।
0: उस दिन उनकी पोती ने उन्हें गले लगाकर कहा, दादी मुझे आप पर गर्व है। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे, उन्होंने अपनी पोती से कहा, बेटा जिंदगी में कभी ये मत सोचना कि अब देर हो गई है।
1: जी हाँ दोस्तों, सावित्री देवी के ये शब्द बिल्कुल दिल को छू जाने वाले थे कि कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जिंदगी में देर हो गई है। दोस्तों सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो शायद यही बात हम सबको समझने की जरूरत है।
0: कितनी बार हम खुद से कहते हैं ना, अब मेरी उम्र नहीं रही, अब कौन नई शुरुआत करेगा, अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब तो नौकरी की उम्र निकल गई, अब कौन मुझे मौका देगा। लेकिन जिंदगी हर बार हमसे यही कहती है। किसी ने कहा कि शुरुआत की कोई भी उम्र नहीं होती। आप इस पर राजी क्या कहना चाहेंगी?
1: खुशी, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि चाहे आप 20 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं या 70 के हैं, दोस्तों अगर दिल में कोई सपना अभी भी जिंदा है तो उसे एक मौका जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी आवाज देते हैं, कुछ रास्ते उम्र के बाद भी बुलाते हैं। जो दिल से निकल जाए मैं कर सकता हूँ, दोस्तों जो आपकी दिल से निकल जाए मैं कर सकता हूँ, वो सपने उम्र नहीं बस हौसला मांगते हैं।
0: तो आज अगर आपके दिल में कोई सपना है जिसे आपने सालों से दबा कर रखा है, तो उसे आज फिर से बाहर निकालिए, शायद वो सपना अभी भी आपका इंतजार कर रहा हो।
1: दोस्तों शायद वो सपना कह रहा हो, चलो अब बहुत इंतजार हो गया, अब मुझे जियो, अब मुझे भी तो अपनी जिंदगी में का हिस्सा बनाओ,
0: मुझे भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। और सपनों को उम्र नहीं चाहिए, सिर्फ हिम्मत चाहिए, क्यों प्राची?
1: बिल्कुल खुशी जी, उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, अगर आंखों में आपके सपने बाकी हैं तो जिंदगी में आप अभी भी जवान हैं।
0: बहुत खूब। तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा है कि सपनों की ना कोई उम्र नहीं होती है। और हमारी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो हमें सुन रही हैं प्राची इस समय राइट नाउ, उनका भी कहीं ना कहीं सपना है कि मुझे भी टीचर बनना है, लॉयर बनना है, एंड उसके अलावा फैशन डिजाइनिंग का भी आजकल यू नो ट्रेंड में है, मेकअप आर्टिस्ट बनना है। और महिलाएं हैं भी इस फील्ड में, लेडीज हैं, वो आगे अच्छा भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं,
1: बिल्कुल खुशी जी,
0: पार्लर भी संभाल रही हैं,
1: बिल्कुल खुशी जी। हमारी आजकल खासकर मैं बात करना चाहूंगी न्यूली मैरिड वुमेन जो है हमारी, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करनी है। टैलेंट तो उनके अंदर बहुत है, डेडिकेशन भी बहुत है, पर वो शुरुआत में घर की नई नई जिम्मेदारियों से घिर गई हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही हैं। पर हमारी प्यारी प्यारी श्रोताओं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप आगे आइए, अपने लिए समय निकालिए, जिस चीज में आपको खुशी मिलती है उसको भी कीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है वो आपके परिवार और समाज का नाम रोशन करेगा।
0: और बहुत प्यारी सी एक लाइन भी है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपकी जैसा।
1: अरे वाह खुशी जी, क्या बात कही है आपने। और हमारा ये संदेश सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी है कि अगर कोई भी सपना जो आपको लगा है कि मैं अभी नहीं कर पाया था और आपको लगता है कि मैं जिंदगी की एक रेस में बहुत आगे आ गया हूँ और अब मैं अपने सपनों के जीने की उम्र को छोड़ आया हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों सपनों की कोई उम्र नहीं होती,
0: अब वो सब चीज कर सकते हैं जो आप चाहते हैं।
1: और बिल्कुल खुशी जी, और आपको पता है जब हम अपने सपनों को जीते हैं तो हमारी जो जिंदा दिली होती है जिंदगी को जीने की वो
0: और ज्यादा बढ़ जाती है।
1: हाँ बिल्कुल, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और सच में जिंदगी को जीने का मजा तभी है जब सपने बाकी हो, जब हम उस सपनों के पीछे भागते रहते हैं तो सच में जिंदगी को जीने का मजा आता है।
0: और जिंदगी इसी का नाम है।
1: और हाँ जिंदगी इसी का नाम है। तो खुशी जी, कोई आपका ऐसा सपना है जो आप चाहती हैं अभी भी पूरा करना, क्योंकि आप हम सबके बीच में एक बहुत अच्छी आरजे हैं, तो और क्या क्या सपने हैं आपके जो आप पूरा करना चाहती हैं?
0: ड्रीम्स मेरे बहुत सारे हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि प्राची कभी ड्रीम्स ना खत्म ही नहीं होते हैं, अगर एक कंप्लीट होता है तो फिर हम दूसरा सपना देखते हैं।
1: खुशी जी मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि क्योंकि सपने जो होते हैं, तो ड्रीम्स जो इतना ब्यूटीफुल वर्ड है, ड्रीम्स ये लाइफ को सच में बहुत खूबसूरत बनाता है। अगर ड्रीम्स ना हो तो सच में लाइफ में वो जो क्यूरियोसिटी और जो हमारा सब कुछ एक्सप्लोर करने की जो एक हमेशा इच्छा रहती है, अगर वो खत्म हो जाए ना तो लाइफ में ना जिंदगी को जीने का मजा कम हो जाता है। सही बात है ना खुशी जी?
0: आई एग्री विद यू प्राची।
1: तो खुशी
0: अभी लेते हैं हम एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, बातें तो हमने बहुत सारी कर ली हैं, तो मैं चाहती हूँ एक प्यारा सा अपने जितने भी हमारे लिसनर इस समय हमें सुन रहे हैं राइट नाउ, सभी के लिए एक अच्छा सा गाना हम प्ले करेंगे यहाँ पर।
1: हाँ बिल्कुल, हम करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा गाना आप सभी के लिए प्ले, सुनते रहिए, कहीं मत जाइए और रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। मिलेंगे आपसे FM मुरादाबाद 89.6 पर।
0: और मुस्कुराते भी रहिए ये मत भूलना, क्योंकि ये किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं है। और आप भी मुस्कुराइए, जब आप मुस्कुराएंगे ना तो मुझे यकीन है कि आपके सामने वाले पड़ोसी भी आपको देखकर जरूर मुस्कुराएंगे।
1: थैंक यू सो मच खुशी जी, प्यारा सा मैसेज देने के लिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्द FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी का स्वागत आरजी खुशी करती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है महिला मंच और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी, और मेरे साथ में यहां पर प्राची भी हैं। एंड आज हम कुछ करने वाले हैं नया, कुछ न्यू क्रिएटिविटी एंड कुछ मस्ती भी, फन यहां पर होने वाला है। और दोस्तों, आप ऐसे ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम को एंजॉय करते रहिए, क्योंकि ढेर सारा एंटरटेनमेंट का डोज हम दोनों कुड़ियां यहां पर लेकर आए हैं आपके लिए। मैं प्राची से कुछ मालूम भी करने वाली हूं। अरे सुनो प्राची, एक बात बताओ।
1: हाँ खुशी जी, बताओ आज आप क्या नया सवाल लेकर आई है।
0: तुम्हें क्या लगता है, सपने देखने की भी कोई उम्र होती है?
1: अरे बिल्कुल नहीं, सपने देखने की उम्र होती तो हम दोनों आज यहाँ बैठकर इतनी बातें थोड़ी कर रहे होते।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, और सच बताऊँ मुझे लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ सपने कम नहीं होते, बस हम उन्हें थोड़ा दबा देते हैं।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हैं खुशी जी आप, क्योंकि जिंदगी में जिम्मेदारियां इतनी आ जाती हैं ना कि हम अपने सपनों को बोल देते हैं, बेटा तुम थोड़ा इंतजार करो, पहले घर तो संभाल ले।
0: और वो थोड़ी देर पता है कब खत्म होती है?
1: जब बाल सफेद हो जाते हैं।
0: लेकिन सपना बेचारा तब भी वहीं खड़ा रहता है
1: और कहता है मैं तो अभी भी यही हूँ।
0: सच में दोस्तों, हमारे घरों में कितनी ऐसी महिलाएं होंगी ना जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चाहा होगा। किसी को पढ़ना था, किसी को गाना सीखना था, किसी को सिलाई कढ़ाई का अपना काम शुरू करना था, किसी को घूमना था,
1: किसी को बस इतना करना था कि एक दिन अपने मन की कोई चीज खरीद सके और उसे किसी से पूछना ना पड़े।
0: लेकिन फिर शादी हुई, बच्चे हुए, घर की जिम्मेदारियां आई और अपने सपने धीरे धीरे अलमारी में रखे, किसी पुराने कपड़े की तरह पीछे चले गए।
1: लेकिन दोस्तों, पुरानी चीज का मतलब बेकार चीज नहीं होता, कभी कभी वही पुरानी इच्छा सालों बाद फिर से आवाज देती है। दोस्तों हम आपको फिर से सुनाने जा रहे बहुत ही अच्छी कहानी जो है बहुत ही प्रेरणादायक। मेरी जान पहचान में एक आंटी थी, उनकी उम्र लगभग 65 साल की थी,
0: बड़ी प्यारी महिला है। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आंटी अगर आपको जिंदगी में एक मौका मिले, मैंने आंटी जी से पूछा, आंटी जी अगर आपको जिंदगी में आप कोई भी काम कर सकें तो आप क्या करेंगी? उन्होंने बिना सोचे कि पता है प्राची क्या कहा?
1: क्या कहा खुशी जी?
0: मैं डांस सीखूंगी। मैंने कहा अरे वाह, तो अभी सीख लीजिए।
1: तो वो क्या बोली खुशी जी?
0: तो वो हंसकर बोली, अब मेरी उम्र थोड़ी है डांस सीखने की।
1: तो आपने उनसे क्या कहा?
0: मैंने आंटी जी से कहा, आंटी जी डांस सीखने के लिए उम्र चाहिए या पैर? वो बोली पैर। मैंने कहा तो फिर समस्या क्या है? हल्की हंसी। और सच बताऊं
1: दोस्तों, वो इस बात पर हंसने लगी और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब वो डांस क्लास ज्वाइन करेंगी। पहले दिन तो उन्हें बहुत डर लग रहा था, उनसे छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं जो थी, उन्हें लगा सब उन्हें देख रहे हैं।
0: लेकिन कुछ दिन बाद वही आंटी सबसे आगे खड़ी होकर डांस कर रही थी प्राची, पता है। और उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया, बोली बेटा पता है मैं डांस करते हुए अपनी उम्र भूल जाती हूँ। और दोस्तों बस यही तो जिंदगी है, जब कोई काम करते हुए हमें अपनी उम्र याद ना रहे
1: तो समझिए दोस्तों कि आप सच में जी रहे हैं।
0: वाह ये बात तो बहुत अच्छी लगी,
1: क्योंकि दोस्तों हम उम्र को अक्सर एक नंबर समझ लेते हैं कि मैं 50 का हो गया हूँ या मैं 50 की हो गई हूँ, 60 का हो गया हूँ, 70 का हो गया हूँ, तो हम सोचते हैं आप क्या करेंगे, अब तो बच्चे सीख जाए। दोस्तों बच्चों को तो आगे बढ़ाइए, साथ में जो आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा है उसका भी थोड़ा ख्याल करिए दोस्तों।
0: लेकिन मेरा मानना है प्राची, उम्र ना कैलेंडर पर लिखी होती है, उत्साह दिल में होता है।
1: बिल्कुल,
0: और कभी कभी हमें अपने बच्चों से भी ये सुनने को मिलता है, मम्मी अब रहने दो, पापा अब आपकी उम्र नहीं है, दादी अब आराम भी करेंगे और सपना भी पूरा करेंगे।
1: जी हाँ दोस्तों, तो इसी बात पर मुझे एक बहुत ही प्यारी शायरी याद आ रही है।
0: इरशाद इरशाद,
1: राहों में उम्र की दीवार मत रखना, दोस्तों राहों में उम्र की दीवार मत रखना, दिल में कोई सपना बेकार मत रखना, जो करना है आज ही कर डालो, जो करना है आज ही कर डालो, कल का क्या भरोसा इंतजार मत रखना।
0: वाह वाह वाह क्या बात है प्राची। और एक बात मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगी, अगर आपने जिंदगी में कभी कोई सपना देखा था और वो सपना आज भी कहीं आपके दिल में पड़ा है, उसे निकालिए।

0: उससे बात कीजिए
1: और दोस्तों उससे पूछिए, क्यों भाई अभी भी मेरे साथ चलोगे? मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों वो सपना आपसे कहेगा। हाँ मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, आप ही आ रहे थे।
0: और जरूरी नहीं कि सपना बहुत बड़ा हो, सपना ये भी तो हो सकता है मैं रोज सुबह पार्क में जाकर वॉक करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी और फिर आकर किताब पढ़ूंगी, मैं हारमोनियम सीखूंगी।
1: जी हाँ दोस्तों, और हारमोनियम सीखने का सपना तो मेरा और खुशी दोनों का है।
0: मुझे तो आता भी प्ले करना, पता है प्राची मैंने आपको सुनाया भी था ना?
1: हाँ आपने तो मुझे सुनाया है, पर मेरा ये सपना तो अभी बहुत ही दूर है मुझसे, मैं बहुत जल्दी हारमोनियम बजाना सीखूंगी।
0: टेंशन मत लो, मैं आपके पास हूँ ना, तो समझो आपका ड्रीम्स भी आप ही के पास है।
1: ओ थैंक यू सो मच खुशी जी,
0: मोस्ट वेलकम।
1: मैं अपनी किसी पुरानी सहेली से मिलूंगी, ऐसे भी सपने होते हैं। मैं बस जिंदगी में पहली बार अपने मन की सुनूंगी। कुछ लोगों का तो दोस्तों ये भी सपना होता है, जिंदगी बीत जाती है पर हम अपने सपनों को नहीं जी पाते। पर दोस्तों अपने लिए टाइम निकालिए, अपने लिए वक्त निकालिए, अपने आप के लिए टाइम निकालिए और अपने सपनों के लिए टाइम निकालिए, और इसे पूरा करने के लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं होती है।
0: कभी कभी हम दूसरों के सपने पूरे करते करते अपना सपना ही भूल जाते हैं। बच्चों को पढ़ाया, उनकी शादी की, घर बनाया, परिवार संभाला, सबके लिए खड़े रहे। अगर जिंदगी आपसे कह रही है थोड़ा सा अपने लिए भी जी लो, तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल नहीं ना?
1: बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों अब हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का सवाल हमारे सभी श्रोताओं से है कि अगर उम्र की कोई सीमा ना हो तो आप कौन कौन सा सपना पूरा करना चाहेंगे?
0: सोचिए और जरूर बताइएगा हमें।
1: दोस्तों आप में बताइए FM मुरादाबाद 89.6 के मैजिकल नंबर 9837896 पर, क्योंकि हो सकता है आपका सपना सुनकर किसी दूसरे इंसान को भी अपने सपने पूरा करने की हिम्मत मिल जाए।
0: और जाते जाते बस इतना ही याद रखिए, सफेद बालों से सपने सफेद नहीं होते, सफेद बालों से सपने सफेद नहीं होते, उम्र बढ़ने से अरमान कम नहीं होते, दिल में अगर जज्बा जिंदा है अभी तो जिंदगी के खूबसूरत दिन खत्म नहीं होते।
1: जी हाँ दोस्तों, उम्र चाहे 20 हो, 40 हो, 60 हो या 80, सपने देखने के लिए दिल चाहिए दोस्तों, उम्र नहीं। तो आज से ही अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कीजिए, शायद वो आपका इंतजार कर रहे हो।
0: तो अपने उस पुराने सपने को आवाज दीजिए, शायद वो आज भी आपका इंतजार कर रहा हो।
1: जी दोस्तों बहुत ज्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि सपनों की भी आदत खराब होती है, जितना देर करवाओ उतना नाराज हो जाते हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ है
0: आरजी खुशी,
1: और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, जहाँ बातें कानों तक नहीं दिल तक पहुँचती है।
0: एग्जैक्टली राइट। और दोस्तों हम मिलेंगे फिर अगले कार्यक्रम में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए, चिपके रहिए और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए,
1: गुनगुनाते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए हमारी तरह।
1: हाँ दोस्तों,
2: तेरा इंतजार बड़ी शिद्दत से कर रही है मेरी मोहब्बत की सरगर्मियां, तेरे मेरे फासलों के बीच छुपी हुई है बहुत सी नजदीकियां।

डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नहीं नहीं नहीं दोस्तों, हम आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ। और अभी आपने सुना बहुत ही प्यारा सा ट्रैक पलक मुछल की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में, खूबसूरत गाना। और यहाँ पर आपका फेवरेट शो शुरू हो चुका है हेलो फरमाइश, जहाँ पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं और बात करने के बाद आप अपना फेवरेट गाना सुन सकते हैं। तो कितना अच्छा सा ये गोल्डन चांस है ना आपके पास, पर क्यों मिस करना, जल्दी से कॉल लगाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और आज की जो गर्मी है, हाय रब्बा, मैं क्या कहूँ, बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, इतनी तेज धूप है। श्रोताओं, समय हुआ है 3:05 और हमारे साथ हमारे लिस्टनर भी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी, और कोशिश यही है कि आपकी हर फरमाइश में थोड़ी सी खुशी घोल दूं। अच्छा लगता है ना आपको भी जब आप अपना फेवरेट गाना सुनते हैं? ओहो, वो मुस्कुराहट बहुत सोहनी लग रही है, तो जल्दी से कॉल करो ना। चलो नंबर मैं आपको बता देती हूँ इजीली, ठीक है, ताकि आप आसानी से हमारे पास कॉल कर सके। नंबर हमारा है 9837896896। और बात करते हैं अपने फर्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,

लगता है सर का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है शायद। तो चलिए दोस्तों, सर ने एक प्यारे सी गाने की रिक्वेस्ट हमें की थी मोहम्मद रफी साहब और साथ में आशा भोसले जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में। प्यारा सा ट्रैक सुनने वाले हैं हम फ्रॉम द मूवी धर्मकांटा से। लौट कर आती हूँ मैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के इस पर।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने सिटी का पहला, जी हाँ, सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। जी हाँ, इस चिलचिलाती गर्मी में ना थोड़ी सी राहत सुकून देने के लिए खुशी यहाँ पर आई है, और सुकून आपको मिलने वाला है कैसे मैं बताती हूँ ना। जब आप अपना फेवरेट कोई भी ट्रैक सुनना चाहते हो और वो प्ले हो जाए तो हो, फिर चाहे मौसम कैसा भी हो, दिल का सुकून अलग ही होता है ना। तो उसके लिए जल्दी से कॉल कीजिएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट हो गई है हमारी रेगुलर लिसनर, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज वो स्पेशल कौन सा ट्रैक सुनने वाली हैं, खुद के लिए या फिर किसी और के लिए, ये तो हम उन्हीं से बात करके जानते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश,
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: वेरी गुड आफ्टरनून, हैप्पी बर्थडे डियर।
1: थैंक यू सो मच,
0: मोस्ट वेलकम। अच्छा, पहले आप सुन रही थी कि देखती हूँ पहले खुशी मैम क्या बोल रही है, फिर मैं रिप्लाई दूंगी। हाँ
1: हाँ, मैंने सोचा कि आप स्टार्टिंग इसी वास्ते करोगी और आपने ये स्टार्टिंग इसी वास्ते करी है।
0: और बताइएगा कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे और एफएम मुरादाबाद की टीम सभी कैसी है?
0: ऑल गुड, सब बहुत अच्छे हैं, मजे में हैं, मैं भी ठीक हूँ। और आज बड़ी गर्ल का कॉल भी आ गया तो और भी अच्छे हो गए हैं।
1: हाँ बिल्कुल, ऐसे मुझे करनी थी कॉल, मेरी दोस्त की भी रिक्वेस्ट थी एंड मेरा खुद का मन था कि मैं अपनी दोस्तों को सबको मतलब ज्वाइन करूँ, एक आप रह गए थे तो मैंने सोचा आपको भी ऐड कर लिया जाए अपनी खुशी में।
0: बहुत अच्छा किया आपने, हमें भी शामिल किया अपनी खुशी में। और पता है, मैं सुबह सुबह जब मुझे मालूम हुआ कि आज आपका बर्थडे है तो मेरे मन में भी, जहन में भी यही मतलब हो रहा था, मैं भी सोच रही थी कि आज तो रायबा का कॉल आना चाहिए, और देखो आपका कॉल भी आ गया।
1: हाँ मेरा कॉल 100% आता क्योंकि आज का दिन ही मुझे मिला है, कल से मैं दुखी हो जाऊंगी तो फिर बहुत मुश्किल से वक्त मिलता है, तो मैंने सोचा आज आपको भी कॉल की जाए।
0: बहुत अच्छा है,
1: खुशी हो जाती है जब आपकी बेस्ट फ्रेंड से बात होती है।
0: या एब्सोल्युटली राइट यार। और पता है आपको, मैं कुछ कहने वाली थी, लोग भूल गई। कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी सारी बातें होती है ना, तो जो बातें बोलने वाले होते हैं वो स्किप हो जाती है माइंड से।
1: हाँ वैसे भी हम लोगों की तो बात ही इतनी सारी होती है कि कोई ना कोई बात तो छूट जाती है,
0: फिर भी कंप्लीट नहीं होती है, और बातें भी बहुत कर लेते हैं, है ना।
1: हाँ ये तो है।
0: तो बताइए,
1: ट्यूनिंग की बात है ना।
0: या एग्जैक्टली राइट, हमारी ट्यूनिंग बहुत मैच करती है एक दूसरे से। और आज क्या स्पेशल करने वाली हो बड़ी गर्ल, बताइए।
1: आज स्पेशल ये होगा कि हाँ यार, क्यों तो मैं भूल ही गई सबसे कहना, जितने भी लिस्टनर्स सुन रहे हैं मैं उनको बोलूंगी कि आप इनवाइटेड हो एंड पॉसिबल हो तो आप जरूर आना मेरे घर पे।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा इनविटेशन आपने दिया है, तो जरूर आएंगे।
1: हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वैसे तो मैं हमेशा इनवाइट करती हूँ, बट मैंने लास्ट वीक मतलब मुझे एक वीक पहले बोलनी चाहिए थी बात, पर मैंने थोड़ा लेट बोला, लेकिन फिर भी आ सकते हैं आप कल तक, परसों तक, जब भी आपका मन हो।
0: वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एंड बताइएगा लाइवा, और कैसा वेदर है आपकी साइड?
1: वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, कल थोड़ा कम था लेकिन आज ज्यादा है। आपके यहाँ पे भी काफी मैंने सुना है बहुत गर्मी हो रही है।
0: हाँ जी, आज हमारे यहाँ के जो टेम्परेचर है वो 36 degrees है एंड हाँ सेम है, शायद लगता है ना।
1: गर्मी सेम हो रही है सब जगह।
0: तो बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहती हैं, और सबसे मतलब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अपने बर्थडे पर आपको सबसे ज्यादा क्या स्पेशल लगा, क्या मतलब आपको अच्छा लगा आज की? हाँ हर दिन तो नॉर्मल रहता ही है, लेकिन बर्थडे वाले दिन हमारा जो दिन है वो बहुत स्पेशल हो जाता है, और स्पेशल होने की वजह क्या होती है, इतने सारे हमें मैसेज आते हैं, यू नो ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, और कभी कभी तो जिनसे हमें उम्मीद भी नहीं होती उनके भी मैसेज आ जाते हैं, है ना।
1: हाँ बिल्कुल, और वैसे भी इस बार का बर्थडे तो मेरी लाइफ में बहुत अच्छा रहा है। आई मीन आपको याद होगा तो मेरी लास्ट टाइम जब आपसे फर्स्ट टाइम बात हुई थी तो मेरा बर्थडे था जब मैंने आपसे बात करी थी।
0: हाँ यार, 1 year हो गया है जब पहले बर्थडे था आपका, तब भी बात हुई थी और आज भी बात हो रही है।
1: हाँ जब भी मैंने आपको इनवाइट किया था फर्स्ट टाइम, मेरी कॉल फ्रेंड से बात हुई थी तो मैंने आपको बोला था कि जब उस टाइम पे प्रॉपर वॉइस नहीं मिली थी, लेकिन एक साल कैसे गुजर गया मुझे खुद को भी नहीं पता है।
0: नहीं मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि 1 year हो गया है हमें।
1: हाँ मुझे खुद को भी मतलब हैरानी है, मेरे यहाँ पे जो भी एफएम मुरादाबाद पे जो मेरे कॉन्टेक्ट बने हैं वो खुद हैरानी में कि हाँ एक साल कैसे हो गया कि कितनी बात करते हुए, मेरे दोस्त हैं, आप हैं, तो मतलब मुझे खुद को भी हैरानी है कि एकदम मतलब एक साल गुजर गया और पता भी नहीं चला, और फिर लड़ाई वगैरह कोई है ही नहीं ऐसा सिचुएशन, सिर्फ हमेशा एक पॉजिटिव कनेक्शन रहा है।
0: पॉजिटिव कनेक्शन रहा है और हमेशा हैप्पीनेस रही है। एंड ऐसा होता है ना लाइबा कि जब हमारी लाइफ में अच्छे इंसान आते हैं ना तो उनके साथ वक्त का पता नहीं चलता है। क्या बात है, आज रात तो फिर नींद भी नहीं आने वाली है मुझे।
1: खुली आंखों से ड्रीम्स देखना कि लाइबा ने मुझे एंजल्स बोला। नहीं यार, बाकी मैं आपके स्माइल बहुत जा रही हूँ।
0: थैंक यू सो मच। बताएगा आज आपके लिए हम क्या स्पेशल, कौन सा ट्रैक प्ले करें? आज आपका बर्थडे है तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, एक सॉन्ग है बेबी मेरे बर्थडे पे क्या जलवाओगे, आप क्या आता है तो ब्रेकअप होता है।
0: नहीं नहीं, हम ब्रेकअप नहीं करेंगे, आप बताइए आपको क्या चाहिए, हम दिलवाएंगे आपको।
1: हाँ बस आप मुझे प्यार से ना ऐसे क्यूट सा बोल देते हो ना, मेरे लिए यही काफी है।
0: ओके, मुझे लगा आप कहने वाले हो जादू की झप्पी।
1: हाँ ये भी हो सकता है, ये भी अच्छा है।
0: ओके,
1: मुझे मिल ही सकता है आज।
0: हाँ हाँ बिल्कुल मिल सकता है आपको, तो ये ट्रैक हम जरूर प्ले करेंगे। एंड आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स सुन रही हैं तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं?
1: मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आयो, एंड मेरी लाइफ और भी अच्छी हो गई है आप लोगों के आने से, एंड हमेशा मेरे साथ रहो, बस मैं यही उम्मीद करती हूँ।
0: ओके, और वो हमेशा आपके साथ रहेंगी, आपकी जो उम्मीद है ना ये ऐसे ही हमेशा बरकरार रहेगी, ठीक है? और आप हमेशा, हाँ हाँ लो ना नाम, हमने मना कब किया है,
1: आज के दिन नाराज हो जाएंगे सब,
0: ठीक है?
1: इंस्टाग्राम पर से मोहम्मद कामिल, मेरे बहुत ही प्यारे उसके बेस्ट फ्रेंड है अफरोज फातिमा, शबनम भी, क्षमा परवीन, रक्षा फातिमा, रुकैया, नजमा आपी, एंड आप और जितने भी लिसनर्स सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी आइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: अरे
1: स्पेशली सबके लिए
0: पूरा मुरादाबाद आपके घर आ जाएगा, ठीक है?
1: बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, मुरादाबाद, जामपुर, बिहार सब आ जाओ।
0: अरे अरे अरे चलो तो ठीक है, फिर आ जाते हैं हम शाम को, आज फिर जम की पार्टी होने वाली है।
1: ठीक है मैम, थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम, अपना ख्याल रखो एंड ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहो आप, और जो भी आप लाइफ में चाहती हैं वो सब कुछ आपको मिल जाए, हम तो यही दुआ करते हैं आपके लिए।
1: थैंक यू सो मच,
0: मोस्ट वेलकम, टेक केयर। हाँ यू नो, मुझे लगता है कि जो हम देते हैं रिटर्न में वही मिलता है, एंड जब हम पॉजिटिविटी देते हैं ना किसी को तो बदले में हमें भी पॉजिटिविटी ही मिलती है, तो अगर हमें कुछ स्प्रेड करना ही है तो पॉजिटिविटी करनी चाहिए ना। देखिए जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिविटी बांटेंगे, पॉजिटिव माहौल रखेंगे तो उतना ही ज्यादा वातावरण अच्छा होगा। बाकी बहुत सारी बातें खुशी ने कर ली हैं, तो चलो अभी गाना सुनते हैं, थोड़ा सा ब्रेक मुझे भी चाहिए, और आप भी मुझे कॉल लगाइए, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM।

0: हेलो फ्रेंड्स, हेलो फरमाइश में आपका वेलकम है। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और वक्त हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में 3:27। अभी आपने प्यारा सा हरियाणवी गाना सुना और बहुत सारे जो लिसनर हमारे हमें सुन रहे थे उन्होंने तो अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम फटाक से बढ़ा दिया और डांस करने में इतना मशरूफ हो गए। ओए होए होए, क्या ही कहें, कोई मम्मी से छुप के डांस कर रही है तो कोई सबके सामने डांस कर रहा है। और जो कार में हमें सुन रहे हैं ना, उन्होंने भी वॉल्यूम बढ़ा लिया था म्यूजिक का, वो भी एंजॉय कर रहे थे। देखिए दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि जितने भी लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं ना, वो सब हमेशा मुस्कुराते रहें, जैसे अभी आप मुस्कुरा रहे थे वैसे ही। चलो अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, आपको भी आदाब, अपना नाम बताइएगा आप।
1: मैं जिला रामपुर ग्राम से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ।
0: कामिल जी, आपकी उम्र बड़ी लंबी है, अभी आपको याद किया लाइबा ने और आपका कॉल भी आ गया।

0: जिंदगी रहे या ना रहे दोस्ती रहेगी, जिंदगी रहे या ना रहे दोस्ती रहेगी, पास रहो या दूर रहो यादें रहेंगी। अपनी जिंदगी में हमेशा हंसते रहना, क्योंकि तुम्हारी हंसी में एक मुस्कान हमारी भी रहेगी।
1: क्या बात है, वाओ, अमेजिंग, बहुत खूबसूरत लाइनें। वैसे ये जो लाइनें आप बोल रहे हैं, ये आपने पहले से तैयार करके रखी थी कि जब मेरा कॉल लगेगा तो मैं सडनली इन्हीं लाइनों को बोलने वाला हूँ?
0: नहीं, मैम अचानक ध्यान
1: ओके,
0: से आ गई और मैंने आपको सुना दी जन्मदिन के ऊपर।
1: अरे वाह, बहुत प्यारी लाइनी थी आपकी सर। एंड बताइएगा कामिल जी, इस वक्त आप कहाँ पर हैं?
0: मैम इस टाइम मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ आपसे।
1: अच्छा, गुड़गांव से बात कर रहे हैं, तो बताइएगा गुड़गांव का मौसम कैसा है?
0: मैम धूप तो हल्की निकल रही है यहाँ पे, लेकिन भपका इतना पड़ रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा है।
1: ओके, उमस भरा मौसम कह सकते हैं कि उमस बहुत ज्यादा है।
0: उमस बहुत ज्यादा है, जितनी धूप निकलती है जितनी तेज तो उतनी गर्मी होती है, लेकिन आज धूप नहीं कम भी निकल रही है तब भी बहुत गर्मी है।
1: जी, बताइएगा सर, आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
0: मैम एक सॉन्ग है राजा हिंदुस्तानी मूवी का नाम है, और गाने के बोले कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया,
1: ओके, और ये ट्रैक
0: तो मैं
1: आप
0: साथ जी,
1: किनको
0: मैं साथ
1: डेडिकेट
0: में
1: करना चाहते हैं आप ये गाना?
0: सबसे पहले यही है मेरी दोस्त लाइबा काजमी,
1: हाँ जी।
0: मोहम्मद तालिब परवेज, वसीम अकरम, मोहम्मद सानी सिद्दीकी, अनिशु रहमान, यही सब सुनना चाहेंगे मैम।
1: ठीक है सर, सुनवाते हैं गाना आपको। शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया,
0: थैंक यू मैम।
1: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए फिलहाल सुन लेते हैं प्यारा सा ट्रैक उदित नारायण जी और साथ में अलका याग्निक जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज, फ्रॉम द मूवी राजा हिंदुस्तानी। बहुत ही प्यारी सी फिल्म है और गाना भी बहुत खूबसूरत है, तो सुन लेते हैं सब मिलकर, उसके बाद अभी बात करते हैं आपसे।

0: क्या बात है दोस्तों, अभी आपने बड़ा ही शानदार सा ट्रैक सुना। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे तुझे देखता रहूं। वैसे आप सब हमारे जो लिसनर्स हैं ना, बहुत प्यारे हैं, और ईश्वर जिसको भी मतलब कोई भी चीज बनाते हैं तो वो व्यर्थ नहीं होती है, वो बहुत स्पेशल होती है। और अपने आप को ना कभी भी किसी से कम मत समझिए कि मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, नहीं। थैंक यू कहिए प्रभु को एंड अपने पेरेंट्स को कि आप इतने प्यारे हो और आपके अंदर भी वो खास बात है। कभी कभी क्या होता है ना, अपनी जो हमारी खास बातें होती है ना, वो हम पहचान नहीं पाते, लेकिन सामने वाला पर्सन पहचान लेता है ना। तो अपनी काबिलियत को पहचानिए और थैंक्स कहिए गॉड को, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को और मुझे भी। चलो ये मैंने फनी अभी बोल दिया लास्ट में, मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपकी फ्रेंड ही हूँ और मैं आपकी दोस्त हूँ। फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं, अभी सिर्फ अखिल सर मेरे साथ बैठे हैं तो हम बोल रहे हैं कि हम आपकी फ्रेंड्स हैं, है ना। और मेरे साथ में भी दीना भी आ गई है, देखो तीन तीन यहाँ पर आरजेज मौजूद हैं समय, और एक लिसनर भी, तो अब चार हो गए ना। चलो बात करते हैं कौन हमारे साथ जुड़ा है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। हाय दी, तुम्हें केम छो?
0: मजा मा छो, तुम्हें केम छो?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ।
0: आपने गुजराती में रिप्लाई क्यों नहीं दिया? हाँ शुरुआत आपने की थी ना।
1: पता है, मतलब मुझे बस दो तीन
0: सब्जी
1: आते
0: हैं
1: और नहीं आता।
0: अच्छा ओके, ढोकला फाफड़ा जलेबी खाना आता है ना?
1: जी जी, क्यों मुझे अच्छा लगता है
0: दी। हाँ ये तो हम जानते हैं। बताइएगा अफरोज फातिमा जी, कैसे हाल चाल है आपके?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ दी, आप बताओ आप कैसे हो?
0: हाँ जी हम भी बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइए क्या कर रही थी इस वक्त आप?
1: इस वक्त तो दी मतलब काम से फ्री होके और आपका इंतजार कर रही थी।
0: अच्छा मतलब तीन बजे तक आपके सारे काम फिनिश हो जाते हैं, आप आराम से बैठकर रेडियो सुनती हैं? हाँ
1: हाँ, दो घंटे अब मतलब आराम से रेडियो सुनेंगे, फिर उसके बाद में काम शुरू करेंगे।
0: ओके, पहले हेलो फरमाइश सुनेंगे उसके बाद काम करेंगे।
1: जी जी, क्योंकि 5 बजे के बाद ही काम करेंगे
0: अब। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है, जानकर बड़ी खुशी हुई हमें कि आप दो घंटे तक इतने प्यार से शिद्दत के साथ इस कार्यक्रम को सुनती हैं।
1: अच्छा लगता है ना दी।
0: जी थैंक यू सो मच, आपको पसंद आता है। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा एफएम मुरादाबाद के लिए और हम सभी प्रेजेंट के लिए भी, प्रेजेंटर्स के लिए भी, क्योंकि सब बहुत मेहनत करते हैं और अच्छा लगता है जब आप सबसे प्यारे प्यारे श्रोताओं से हमारी बातचीत होती है। तो आज आप क्या कहना चाहती हैं? आपके दोस्त का बर्थडे है और बैक टू बैक आप सबके कॉल आ रहे हैं।
1: दीदी मुझे इस बात की तो बहुत खुशी हो रही है, मतलब पहले लाइवर की कॉल आई, फिर कामी भाई की, फिर उसके बाद में मेरी कॉल आ गई।
0: और अब किसकी उम्मीद है, किसका कॉल आने वाला है नेक्स्ट?
1: अब मैं उम्मीद करती हूँ सपना मप्पी अगर सुन रही हो तो वो कॉल कर ले।
0: अच्छा,
1: मेरे पास।
0: ओके चलो, ये जादू अगर पूरा हो जाए तो अच्छी बात है, कोई मैजिक तो है।
1: आज तो मैजिक ही हो गया।
0: हाँ जी बताइए फ्रूज, कुछ कहना चाहती हैं आप?
1: हाँ दी, मैं उनके लिए कुछ लाइनें लेकर आई हूँ।
0: जी इरशाद।
1: अर्ज किया है, मैं लिख दूँ तुम्हारी उम्र चांद सितारों से, मैं लिख दूँ तुम्हारी उम्र चांद सितारों से, मैं मनाऊं जन्मदिन तुम्हारा फूल बहारों से, ऐसी खूबसूरती लेकर आऊं लाइबा, ऐसी खूबसूरती लेकर आऊं लाइबा की सारी महफिल सज जाए हसीन नजारों से, सज जाए हसीन नजारों से।
0: बहुत खूबसूरत
1: जी। और मैं एक शायरी और अर्ज करना चाहती हूँ
0: जी।
1: हर नजर को एक नजर की तलाश है, हर नजर को एक नजर की तलाश है, इस चेहरे में कुछ तो खास है, आपसे दोस्ती हम यूं ही नहीं कर बैठे लाइबा, आपसे दोस्ती हम यूं ही नहीं कर बैठे लाइबा, क्या करें हमारी पसंद ही कुछ खास है, क्या करें हमारी पसंद ही कुछ खास है।
0: बहुत ही प्यारी सी लाइनें हैं आपकी, कमाल ही कर दिया आपने। आप खुद स्पेशल हैं, खुद खास हैं, क्योंकि जब इंसान खुद अच्छा होता है ना तो उनको अच्छे इंसान ही मिल जाते हैं।
1: दीदी और पता है दी, मतलब मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आज तो बहुत खुशी हो रही है, मेरी बेस्टी का जन्मदिन है, तो इसलिए बस मैं सोच रही थी मैं दो तीन शायरियां सुनाऊं तो उन्हें को भी अच्छा लगेगा।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगेगा, बताइए।
1: शायरी और अर्ज करना चाहती हूँ दी।
0: जी जी जी।
1: पलकों को झुकाकर सलाम करते हैं, पलकों को झुकाकर सलाम करते हैं, दिल की दुआ आपके नाम करते हैं, खुदा ना करे आपको कभी गम मिले, खुदा ना करे आपको कभी गम मिले, हम अपनी हर खुशी आप पर कुर्बान करते हैं।
0: बहुत प्यारी शायरी है आपकी, वाओ
2: क्या बात है। आज आज तो लग रहा है कि लाइबा जी जो है डांस कर रही होंगी इन शायरियों पे सुन सुन के।
1: जी सर, क्योंकि बताए मतलब मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ बहुत, और मेरी लाइफ में जब से वो आई है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा दोस्त नहीं था।
0: दोस्ती का रिश्ता बहुत स्पेशल होता है,
1: बहुत खूबसूरत होता है।
2: हमारी तरफ से भी, आरजे रीना की तरफ से भी, खुशी की तरफ से भी, पूरे एफएम टीम की तरफ से भी जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं लायबा जी को। एक शायरी अब हम सबकी तरफ से भी सुना दीजिए आप।
1: जी सर,
2: एक शायरी आप हम सबकी तरफ से भी सुना दीजिए।
1: आपकी तरफ से भी सुना दूं?
2: हाँ हाँ
1: ठीक है सर, सुना देती हूँ, लेकिन ये बेटियों के लिए है, जितनी भी बेटियाँ सुन रही हैं।
0: श्योर, सुनाइएगा।
1: जी, नसीबों की शाखों पे खिलती हैं बेटियाँ, मुकद्दर भला हो तो मिलती हैं बेटियाँ। नसीबों की शाखों पे खिलती हैं बेटियाँ, मुकद्दर भला हो तो मिलती हैं बेटियाँ। कभी बन के मैना, कभी बन के बुलबुल, हर एक आंगन में चहकती हैं बेटियाँ। मस्ती में मुलकता के खिलखिलाती हैं बेटियाँ, मस्ती में मुलकता के खिलखिलाती हैं बेटियाँ। एक अजनबी मकान को घर बनाती हैं बेटियाँ।
0: बहुत प्यारी लाइनें हैं।
1: बेटियाँ,
0: क्या बात है यार, अमीजिंग,
2: बहुत खूब।
0: तो बताइएगा आज क्या सुनना चाहेंगी आप?
1: आज मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा।
0: ओके, चलिए सुनवा देते हैं प्यारा सा ट्रैक।
1: नाम लेना चाहती हूँ।
0: हाँ जी, दो ही नाम लेना।
1: दो तो नहीं, क्योंकि मेरी सिस्टर नाराज हो जाएगी।
0: नहीं नहीं, क्यों नाराज होंगी? हाँ, अपनों से कोई नाराज थोड़ी ना होता है।
1: आप बन गई है ना दी, मतलब हम रेडियो पे कॉल करते हैं और नाम लेते रहते हैं, तो मतलब आदत सी बन गई है, अच्छा लगता है।
0: अच्छा ठीक है, तो दो नाम या फिर बस चार नाम? ओके
1: दी, जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइबा।
0: हाँ,
1: और मेरी सिस्टर है नजमा आपकी, और तरक्षा, और रामपुर से है सबनम आपकी।
0: ओके,
1: तो अभी कॉल कर ले।
0: ठीक है, अब आपके बाद नेक्स्ट कॉल उन्हीं के आएगा। थैंक यू कॉल करने के लिए, और सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक। तो चलिए एवरीवन, एंजॉय करते हैं, और आप भी मुझे कॉल करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और ये प्यारा सा गाना एंजॉय कीजिएगा।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग नहीं बोलेंगे हम, अभी टाइम है 9 मिनट है अभी 4 बजने में. एंड आप सभी का आरजी खुशी स्वागत करती है मुरादाबाद 89.6 पर. और दोस्तों देख रहे हैं आप, बाहर की जो धूप है बड़ी भयंकर आज है ना, हद कर दी है बिल्कुल धूप ने. लेकिन कई राज्यों में, कई शहरों में बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं. एंड कहीं कहीं तो बारिश हो भी रही है. तो भी हम बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं कि आज वो कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं और उनके शहर का मौसम कैसा है. हेलो फरमाइश. हेलो फरमाइश.
1: हेलो फरमाइश
0: जी. सर
1: मेरी बात एफएम मुरादाबाद में हो रही है जी.
0: हाँ जी, हाँ जी, आपकी बात एफएम मुरादाबाद में हो रही है 89.6 पर. आरजी खुशी के साथ आप बात कर रहे हैं, बताइए अपना शुभ नाम.
1: हम संबल से बोल रहे हैं, छोटे अंसारी
0: जी. बताइएगा कैसे हैं आप छोटे अंसारी जी.
1: बहुत बढ़िया हैं, अल्लाह का शुक्र है. और भी अच्छे हो गए कॉल लगने पर
0: जी.
1: हाँ, और बहुत ही खुशी हो रही, खुशी जी हमें कॉल लग गई तो.
0: शुक्रिया सर आपको, हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें कॉल करते हैं. बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप.
1: मोहम्मद रफी की आवाज में एक गीत सुनना चाहते हैं.
0: जी.
1: मुसाफिर चल, तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ.
0: अरे वाह, बहुत खूबसूरत गाना है.
1: और फिल्म का नाम है गंगा की सोगन.
0: ओके.
1: दोस्तों का नाम ले दूं.
0: जी सर, दो ही नाम ले सकते हैं आप.
1: दोस्त
0: तो आप ऐसे कह सकते हैं सर कि सभी दोस्त मेरे इस गीत में शामिल हैं. मतलब मैं ये गीत सभी को डेडिकेट करना चाहता हूँ, उनसे नाम भी लेने की जरूरत नहीं होगी और सब लोग आपके दोस्त शामिल भी हो जाएंगे. ठीक है, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास.
1: तो सभी जितने भी भाई बहन प्रोग्राम सुनना है सभी को मेरा दुआ सलाम. और सभी को डेडिकेट करना चाहते हैं छोटे अंसारी संभल से जी. और जो भी जिसकी भी कॉल लग जा करे तो कूलर के धोरे से, पंखे के नीचे से बात ना करें, नहीं तो आवाज क्लियर नहीं आती.
0: बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं और सबको बताते भी हैं.
1: जी. और हर लिसनर 8 या 10 दिन के बाद में कॉल करें तो बेहतर है.
0: जी सर, शुक्रिया आपने इन चीजों को बताया. एंड हमारे सारे रूल्स को आप भी फॉलो

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
3: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
2: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
3: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
2: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। आज ये खुशी है आपके साथ और वक्त हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में 4:01 और एक खूबसूरत से गाना अभी आपने सुना। एंड बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ में जुड़ी है मैम। हेलो फरमाइश जी। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका?
1: मैं रामपुर से शबनम जी बात कर रही हूँ।
0: जी बताइएगा शबनम जी, कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो? एफएम मुरादाबाद में सभी लोग
0: हैं। एफएम मुरादाबाद में सभी बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा आपकी फैमिली में सब ठीक है मैम?
1: जी दीदी सब अच्छे हैं फैमिली में तो।
0: जी बताइएगा आज कॉल लगाने का कैसे डिसाइड किया, मतलब पहले से सोच के रखा था कि आज कॉल करूंगी या फिर रैंडमली आज आपने कॉल किया?
1: आज तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी कॉल करने का, लेकिन मैंने अफरोज आबी की बातें सुनी है तो मैंने कॉल करी आज।
0: ओके
1: फिर आज बैलेंस भी नहीं था दीदी, लेकिन मैं बोली मन के आज मैं कॉल करूंगी, मेरे दोस्त ने इतने प्यार से याद किया तो।
0: लेकिन दिल है कि मानता नहीं, फिर दिल ने कहा चलो हम भी कॉल लगाते हैं।
1: फोन में बैलेंस नहीं था एकदम, मैंने उनकी कॉल सुनी एकदम बैलेंस करा, मन से आज तो कॉल लगाऊंगी।
0: वाह जी वाह, ये होती है रियल दोस्ती। हाँ उधर से उन्होंने बोला और तुरंत आपने कॉल कर दिया।
1: जी
0: जी तो बताइए कैसे
1: दीदी, मैं लाइव आपकी तो कॉल नहीं सुन पाई थी, लेकिन मैं उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद जाना चाहूंगी।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बताइएगा, आज उनका बर्थडे है, क्या सुनना चाहेंगी आप?
1: आज मैं गाना सुनना चाहूंगी दीदी, मैं गाना तो मैंने सोच लिया था मन को वो ही सुनूंगी मैं, अफरोज आबी ने सुना लेकिन उन्होंने सुन लिया है। अब मुझे कोई बर्थडे के ऊपर कोई बढ़िया सा गाना प्ले कर देना।
0: ओके मैं प्ले कर देती हूँ, और कुछ कहना चाहती हैं जी आप?
1: जी बस नाम जानना चाहूंगी
0: मैं। हाँ बताइएगा।
1: मेरे साथ में लाइव आबी, अफरोज फातिमा और नेहा।
0: ओके थैंक यू, छोटी सी बात नहीं है, मैम ने सब कुछ बोल दिया। और एक शानदार सा ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और केयरफुली ड्राइविंग कीजिए। और ये प्यारा सा गाना दिलजीत दोसांझ की बड़ी खूबसूरत सी आवाज जो सबका दिल जीत लेते हैं, वो है दिलजीत दोसांझ और ये प्यारा ट्रैक बर्थडे स्पेशल, तो सुनते हैं।

0: हाँ जी एवरीवन, मैंने आपसे कहा था ना कि देखिए दिलजीत दोसांझ के ट्रैक ना दिल को जीत जाते हैं, है ना। मतलब बहुत ही खूबसूरत गाने होते हैं उनके, और ये गाना अभी आपने सुना, अमेजिंग ट्रैक। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश
1: जी, हेलो फरमाइश, नमस्कार मैम।
0: हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताइएगा सर।
1: जी मैं शानू खान बोल रहा हूँ, मुरादाबाद।
0: जी बताइएगा कैसे हैं शानू खान जी आप।
1: ठीक है मैम, आप नहीं, आप कैसे हैं, घर पे सब ठीक है आपके?
0: हाँ जी ऑल गुड, सब बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा आज कॉल किया है आपने।
1: जी सॉन्ग सुनवा दीजिए, मेरे महबूब मेरे सनम।
0: ओके सुनवा देते हैं गाना आपको।
1: मैम कुछ कहना चाहता था।
0: हाँ हाँ बिल्कुल कहिए सर।
1: न दिन का पता है न रात का, एक जवाब दे खुदा मेरी बात का, कितने दिन हो गए उस यार से बिछड़े हुए, जरा ये तो बता कौन सा दिन रखा है हमारी मुलाकात का।
0: हरी वाह, बहुत प्यारी शायरी है आपकी सर।
1: जी
0: जी तो आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया शानू खान जी। सुनिए गए शानदार से गाना
1: सभी दोस्तों के लिए जो सुन रहे हैं।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, इस समय जितने भी लिसनर सुन रहे हैं सभी इस ट्रैक को एंजॉय करेंगे, एंड आप भी एंजॉय कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल सुनाइए।
1: कलम से लिख नहीं सकते उदास दिल के अफसाने, हम आपको दिल से याद करते हैं, बाकी ऐसा मुरादाबाद जाने।
0: अरे वाह क्या बात है, अमेजिंग, कमाली कर दिया आपने तो। हाँ
1: जी थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। डिसाइड करके पहले से ही रखते हैं हमारे लिसनर्स कि जब मैम कॉल रिसीव करेंगी ना, जब हम ऑन ईयर बात करेंगे तो ये वाली शायरी सुनाएंगी, एंड पहले से फिक्स करके रखते हैं सब चीज़ें, है ना। मुझे पता है आपकी शरारतों का, लेकिन अच्छा लगता है ये प्यारा सा, इतना प्यार आप करते हैं फिर मुरादाबाद से, इतनी प्यारी प्यारी लाइनें, इतना यू नो आप दोस्तों को जो ट्रैक डेडिकेट करते हैं, कभी खुद के लिए भी सुनते हैं, तो कुल मिला के टू जेड कमाल होता है। एंड अभी प्यारा से गाना सुनते हैं, उसके बाद आपसे भी बातचीत करते हैं, शायद आपका भी कॉल लग जाए, तो ट्राई करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नंबर है हमारा 98 378 96 896।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना ये बेहतरीन सा गाना उदित नारायण जी और साथ में अलका याग्निक जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ फ्रॉम द मूवी डुप्लीकेट से ट्रैक आपने सुना। एंड अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से और जान लेते हैं उनकी क्या फरमाइश है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी सर, अपना नाम बताइएगा। जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: मैं
0: जी हम भी बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा, आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मूवी का नाम है देश प्रेमी।
0: हाँ जी,
1: गीत के बोल भी यही है, मेरे देश प्रेमी आप अपने प्रेम करो।
0: बहुत प्यारा ट्रैक आपने सुना है, तो ये सुनवाते हैं आपको प्यारा से गाना, ठीक है सर?
1: जी
0: तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक। हर घर तिरंगा एंड फ्रॉम द मूवी मेरे देश प्रेमियों, बहुत प्यारा सा ट्रैक। आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी मूवी का नाम है और गाने के जो लिरिक्स हैं बड़े ही खूबसूरत हैं। और आज हर घर तिरंगा अभियान भी मतलब स्टार्ट हो चुका है और हमारे मुरादाबाद में भी आज बहुत ही प्यारा सा ये फंक्शन हुआ है, हर घर तिरंगा अभियान की। बहुत ही खूबसूरत आज रैलियां निकली हैं एंड बहुत सारे हमारे ऑडियंस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया एंड कमाल का था। और आपको पूरी अपडेट मिलेगी हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है फिर मुरादाबाद 89.6, तो आप जाइए सोशल मीडिया पर सर्च कीजिए और हमारा वहां पर आपको ऑफिशियल अकाउंट वहां आपको नजर आ जाएगा और वहां पर आज क्या क्या एक्टिविटीज मुरादाबाद में हुई वो सब आपको मिल जाएंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। और बाकी अभी खूबसूरत सा गीत सुनिएगा, मैं लौट कर आती हूँ।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है, तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। आज ये खुशी है आपके साथ और श्रोताओं अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, कितना खूबसूरत संदेश है ना इस गीत में। इस गीत का दोस्तों देखिए, देश से प्यार सिर्फ तिरंगा लहराने में नहीं बल्कि एक दूसरे के दिलों में प्यार और सम्मान बनाए रखने की भी है एंड नफरत को थोड़ा किनारे रखते हुए और अपने देश की तरह अपने रिश्तों को भी खूबसूरत बनाते हैं। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। और आपस में जब हम सब मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ फेस्टिवल मनाते हैं, कितना अच्छा लगता है ना श्रोताओं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश जी। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका सर? हेलो, हाँ जी सर, अपना नाम बताइएगा।
1: हेलो,
0: हाँ आपकी आवाज आ रही है सर, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप?
1: आप
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ, आप बताइएगा। अभी काम में व्यस्त हैं लगता है, आपके बैकग्राउंड से बहुत साउंड आ रही है।
1: जी
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सलीम अंसारी जी?
1: सब बढ़िया है।
0: बताइएगा आज क्या सुनेंगे आप?
1: तेरे नाम
0: मूवी का
1: मुझे लगन लगी।
0: अच्छा ओके, आपको लगन लगी हुई है फिर मुरादाबाद 89.6 से है ना जी। तो सुनवा देते हैं गाना आपको, मैंने कहा ये ट्रैक आपको हम सुनवा देते हैं, ठीक है?
1: जी नाम लेना चाहते
0: हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बताइएगा।
1: हमारी बेटी है किनाया सनाया सुमान अंसारी और हमारे दोस्त है काशी मल्ली।
0: ओके तो आपकी फैमिली के साथ सुनवाते हैं प्यारा से गाना और साथ में आपके दोस्त भी सुन रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपकी डॉटर भी सुनेंगी और तमाम सुनने वाले श्रोता भी इस गाने को एंजॉय करेंगे, तो चलिए एवरीवन सुनते हैं शानदार सा ट्रैक। लौट कर आती हूँ मैं, बस आप कहीं मजा आएगा, ऐसे ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: देखिए दोस्तों, लगन तो आपको भी लगी है फिर मुरादाबाद 89.6 से, तभी आपके इतने सारे कॉल्स आते हैं। उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया एवरीवन कि आप इतना प्यार करते हैं फिर मुरादाबाद से। बैक टू बैक सभी के कॉल आते हैं, अच्छा लगता है आपकी फरमाइशें सुनना। कुछ गाने तो ऐसे होते हैं जो मैंने नहीं सुने होते हैं, लेकिन आपकी फरमाइश के जरिए हमें भी सुनने का वो गाना मौका मिल जाता है और आपकी च्वाइस बहुत ही प्यारी होती है। तो अभी जान लेते हैं अपने अगले कॉलर की फरमाइश कि आज वो कौन सा ट्रैक सुनना चाहते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: जी बहना जी, प्रणाम नमस्कार।
0: आपको भी प्रणाम नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइए।
1: जी मैं राजू यादव, ग्राम उपरहका श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा समीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
0: जी बताइएगा सर, कैसा वेदर है आपकी साइड, मौसम कैसा है?
1: मौसम बहना जी धूप खिली हुई है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही
0: हैं। अच्छा धूप भी है ठंडी हवाएं भी हैं।
1: जी
0: जी बताइएगा आज आपने कॉल किया है सर, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, ये वाला गीत सुनेंगे। हमारे कुछ मित्र हैं बहन,
0: दो ही नाम ले सकते हैं आप सर, ठीक है?
1: दिलीप आहूजा जी हैं, सतीश रघुवंशी जी हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, और गौतम राय बोली जी।
0: अच्छा दो नाम लेने के लिए कहा, आपने तीन ले लिए। चलिए कोई बात नहीं, सुनवा देते हैं गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए। आपको भी नमस्कार। तो चलिए श्रोताओं सुन लेते हैं प्यारा सा ट्रैक।

0: एवरीवन, गुड इवनिंग. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी. और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी राजा हिंदुस्तानी से उदित नारायण जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज. और बात कर लेते हैं अभी अपने अगले कॉलर से. हेलो फरमाइश.
1: हेलो फरमाइश.
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जो पाया था वो खोकर भी देख लिया, जो पाया था वो खोकर भी देख लिया, किसी का पूरी तरह होकर भी देख लिया. नहीं मिलता गिड़गिड़ाने से कोई भी इस दुनिया में, नहीं मिलता गिड़गिड़ाने से कोई भी इस दुनिया में, मैंने उसके सामने रोकर भी देख लिया.
0: अरिफा, क्या बात है, बहुत खूबसूरत पंक्तियां थी आपकी. अपने नाम भी बता दीजिएगा.
1: बिल्कुल, मैं ग्रामा पोस्ट वक्सीना डिस्ट्रिक्ट बदायूं तहसील दातागंज से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ मैम.
0: जी बताइएगा विमल जी, बहुत टाइम की बात आपने कॉल किया है.
1: जी बिल्कुल, आपके प्रोग्राम में एक नियम भी रहता था और मैंने उस नियम को और लिया.
0: नहीं, आपने बहुत अच्छा किया सर. एंड बहुत ही अच्छा किया क्योंकि नए नए लिसनर्स को भी अवसर मिल जाता है.
1: जी जी जी, जी. बिल्कुल मैम.
0: तो बताइए
1: मुरादाबाद के सभी प्रेजेंटर कैसे हैं मैम, आप कैसे हो?
0: सब बहुत अच्छे हैं, मैं भी ठीक हूँ. आप बताइएगा विमल जी, मौसम कैसा है आपके साइड?
1: मौसम तो मैम आज बहुत गर्मी हो रही है, पर आपकी आवाज बहुत सुरीली है, बहुत ही खूबसूरत आवाज है.
0: जी शुक्रिया आपका. बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: जी मैम, गीत से पहले दो लाइनें और भी पेश करना चाहूंगा.
0: जी जी,
1: क्योंकि
0: जी,
1: आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है तो आपके लिए तो बनती है दो लाइनें, क्योंकि इतनी खूबसूरत इंसान के लिए अगर ऐसे फोन लाइन लग गई है, मेरा फोन चल रहा है, इतनी जल्दी छोड़ दोगे तो वो जल्दी ही चला जाएगा, तो मैं दो लाइनें और भी पेश करना चाहूंगा.
0: जी जी जी बिल्कुल सर.
1: भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था. भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था. ले गई जिंदगी उन राहों में, हमें जाना नहीं था. कुछ किस्मत की मेहरबानी, कुछ हमारा कसूर था. हमने खो दिया सब कुछ वहाँ जहाँ कुछ पाना नहीं था.
0: बहुत प्यारी प्यारी प्यारी लाइनें आप बोलते हैं सर, अच्छा लगता है हमें. इस तरह से ही हमें कॉल कीजिएगा एंड बताइए आज क्या सुनेंगे आप.
1: बिल्कुल, मूवी का नाम रहेगा सड़क, इसमें बेहतरीन सनगमा क्या सोचता है एडिल.
0: ओके,
1: ये सॉन्ग सुनवा दीजिए. चल, सुनने वालों के नाम है मेरी सिस्टर रीना जी है, मेरी वाइफ है सरता जी, शुभ लव गुनगुन रामपुर से दिव्यांशी लाल गौरव जी को ये गाना डेडिकेट रहेगा. थैंक यू सो मच.
0: मोस्ट वेलकम सर. तो चलिए एवरीवन, सुन लेते हैं प्यारा सा ट्रैक. लौट कर आती हूँ मैं, आप भी कॉल लगाइएगा एंड आपका भी कॉल लग जाएगा. बस आप कंटिन्यू ट्राई कीजिएगा क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक कॉल नहीं लगेगा. लेकिन जैसे ही आप ट्राई करना शुरू करेंगे ना तो आपका कॉल लग भी सकता है ना. तो आपको कोशिश करनी है. और फिलहाल अभी गाना सुनो, मैं वापस आती हूँ.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और अभी आपने प्यारा सा गाना सुना अनुराधा पौडवाल जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज फ्रॉम द मूवी सड़क। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जान लेते हैं उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते आपको भी सर। क्या नाम है आपका? जी बताइएगा योगेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छा है।
0: जी बताइएगा कैसा मौसम है एमपी का?
1: छत्तीसगढ़ है।
0: अच्छा, सीजी से बात कर रहे हैं आप?
1: हाँ जी।
0: ओके, तो बताइएगा छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा है सर?
1: अभी तो थोड़ा बारिश नहीं हो रहा है।
0: अच्छा, कब से बारिश नहीं हो रही है?
1: अभी कहे तो 8-10-12 दिन हो गए, अच्छी बारिश हुआ ही नहीं है।
0: ओके, हल्की बूंदाबांदी हुई है नॉर्मल?
1: जी।
0: ओके, तो बताइएगा योगेश जी आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: हम आप सुना देंगे आया सावन झूम के फिल्म का टाइटल सॉन्ग।
0: बिल्कुल सुनवाएंगे, सावन का इतना खूबसूरत महीना चल रहा है। जी धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया, सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये शानदार से गाना। तो चलिए एवरीवन ये टाइटल ट्रैक सुनते हैं आया सावन झूम के। और लौटकर मैं भी बस वापस आने वाली हूँ, आप भी जल्दी से कॉल लगा लीजिएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 98-378-96-896। ये हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर है जिस पर आपको कॉल करना है।

0: एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ, और हमारे साथ हमारे लास्ट कॉलर कनेक्ट हो गए, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार मैम।
0: हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताइएगा।
1: मुरादाबाद यूपी के रणबीर सिंह जेठालाल।
0: मुरादाबाद यूपी में ही है। अच्छा, आपने अपने नाम के पीछे आप जेठालाल क्यों लगाते हैं, इसका रीजन मुझे बताइए।
1: हमारे कुछ दोस्त है ना, वो तो उन्होंने कुछ हमारी ऐसी बातें देखी, तो वो कह रहे भाई हमें तुम्हारा नाम ऐसे सही लगता है, तुम्हारा नाम तो हम तो यही, वो हमें इसी नाम से बुलाते हैं हमारे दोस्त।
0: अच्छा, तो आपने यही नाम अपना नामकरण कर लिया है? हाँ
1: हाँ जी, कई साल हो गए।
0: ओके ओके,
1: रेडियो डाला है नाम।
0: अच्छा तो बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप सब।
1: डेली फिल्म का गाना है मैम,
0: हाँ
1: महेंद्र कपूर जी की आवाज है, गाना है बेवफा जा तेरा वादा देखा हमने कल भी तेरा रास्ता देखा।
0: ठीक है सर, ये गाना हम आपको
1: जी
0: सुनवा देते हैं।
1: मैम, कुछ कहना चाहते हैं?
0: जी जी बिल्कुल कहिए।
1: उनकी एक नजर को हम तरसते रहेंगे, उनकी एक नजर को अब हम तरसते रहेंगे, गम के आंसू हर पल यूं ही बरसाते रहेंगे, कभी बिताए थे कुछ पल उनके साथ, बस यही सोचकर हम रोते रहेंगे।
2: सर जो गरजते है वो बरसते नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिए।
0: और रोना नहीं है, आपको खुश रहना है, ठीक है?
1: जी मैम
0: जी,
1: बहुत बहुत
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन सुन लेते हैं प्यारा सा गाना, और अभी तो हमें जाना पड़ेगा है ना, लेकिन अरीना जी आपके लिए लेकर आने वाली नेक्स्ट शो इवनिंग मस्ती, जहां पर आपको ढेर सारी मस्ती करने का, फन करने का मौका मिलने वाला है। तो बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। और मेरे साथ में अभी यहाँ पर अखिल सर भी है, वो मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं खुशी आप मुझे भूल गए हो, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं भूली, क्योंकि आपका खिलखिलाता चेहरा देखकर ना ये स्टूडियो एकदम चमकने लगता है, आपको कैसे भूल सकते हैं। तो अखिल सर को भी ज्वाइन कीजिएगा एवरी इवनिंग 9 बजे रात को, 9 से 10 वो आपकी शाम को बनाते हैं दमदार, तो आप कॉल कर सकते हैं उनके शो में भी है ना, वैसे करते हैं आप, बहुत सारे श्रोताओं को पता भी है, लेकिन आज मेरे कहने पर करना, ठीक है?
2: चलो नहीं,
0: आज मेरे कहने पर प्लीज कॉल करना है एवरीवन। मैं इंतजार, मैं शो सुनने वाली हूँ आज अखिल सर का, और देखती हूँ कि मेरे कहने पर कितने लिसनर्स मेरी कॉल करते हैं अखिल भैया को। तो अभी फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी इवनिंग मस्ती शो का। यानी कि देखिए, समय भी हो चुका है 5:09, और आज मेरे ऑफिस में ना कुछ चुलबुले भरे पड़े हैं यहाँ पर, तो उन्हें देख कर मुझे हंसी आ गई आज, क्योंकि बात ही ऐसी हो रही भैया। जब देखिए, सच बताऊँ तो जब बहुत सारे आपके ऑफिस में हो तो एकदम मजा आता जाता है, एक अलग ही सुकून मिलता है, और एक आप अलग रहो उसकी अलग ही अनुभूति होती है। जब साथ रहते हो ना तो सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, टेंशन ही नहीं रहती किसी भी चीज की, बस क्योंकि हम एक साथ कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं। अदरवाइज तो फिर वही फोन फोन और आप, यही दो रह जाते हो। और इसी चक्कर में आज के टाइम में फोन इतना ज्यादा यूज होता है कि आंखों पर भी इफेक्ट पड़ने लग जाता है, क्योंकि स्क्रीनिंग टाइम इतनी ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे हम पहले बैठते थे शाम के टाइम सभी के साथ बैठते थे, बातें करते थे, दिन पूरे दिन में क्या किया है क्या नहीं हुआ है, एक दूसरे की बातें सुनते थे और वही उनका दुख दर्द खत्म हो जाता था। लेकिन अब किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो किसी की बातें सुने, बल्कि सुन ही नहीं पाता है क्योंकि उसके पास अपनी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होती है। लेकिन आप किसी के पास जब बैठ के देखेंगे ना, और आप उनकी बातें सुनेंगे, आप अपनी बातें करेंगे, तो एक अलग ही पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, और आपके जो जितनी भी टेंशन है ना, वो छूम अंतर कैसे हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। एक टाइम के लिए तो आपके दिमाग से भी एक ही सिग्नल आएगा कि मुझे आज बहुत सुकून मिल रहा है। तो इस सुकून को जारी रखिए और सभी के साथ मिलजुल कर रहिए, बातें करिए, क्योंकि बातें करने से ही बातें कम होती हैं। और आज की तारीख यानी कि 12 अगस्त ढेर सारी बातें करेंगे, देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिलहाल तो 15 अगस्त को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारियां चल रही हैं, और 12 अगस्त को यानी कि कौन से डेज मनाए जाते हैं उसके बारे में भी बात करने वाले श्रोताओं। फिलहाल के लिए गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

क्या बात है जी, आधा इश्क, लेकिन आधा किसी को नहीं चाहिए होता है भाई, पूरा इश्क चाहिए होता है, सच बताओ तो। और आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जिस समय की बात करो तो 5:18 हो चुके हैं इवनिंग मस्ती शो में। और श्रोताओं, आप सभी को पता है कि 15 अगस्त यानी कि बहुत करीब है, बहुत नजदीक है, क्योंकि आज की तारीख है 12 अगस्त यानी कि और शनिवार को यानी कि 15 अगस्त पड़ रहा है। और इससे पहले ही यानी कि आप सभी को पता है कि मुरादाबाद में भी तिरंगे की रैलियां निकाली जा रही हैं, हर गली मोहल्ले में बस तिरंगे की गूंज है, स्कूल वाले बच्चे भी तिरंगे लेकर बस गलियों में निकल रहे हैं और उनकी जो किलकार है उनकी गूंज है, यानी कि एक अलग ही देशभक्ति की अनुभूति हर किसी इंसान के अंदर कनेक्ट करता है, जोड़ता है उसको कि आप भी उस रैली में शामिल हो। देखिए श्रोताओं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको अपनी देशभक्ति के प्रति और भी ज़्यादा जुनून आए। और अपने घर यानी कि देखिए आज है 12 और कल 13 तारीख है, कल से ही अपने घरों पर तिरंगा यानी कि फहराना शुरू कर दीजिए। तिरंगा, हर घर तिरंगा फहराना है, अब की बार 5 करोड़ से भी ज़्यादा होने चाहिए, हर घर तिरंगा, तभी तो यानी कि देश आज़ाद माना जाएगा। तो इसीलिए और आप भी इस रैली में शामिल हो सकते हैं, बच्चों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बड़ों के साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि देखिए इसमें ना किसी को इनवाइट नहीं करने जाना पड़ता है कि भैया आज जाना तुम भी अपने, हम बस रैली निकालते हैं, गलियों में चलेंगे, सड़कों पर घूमेंगे तिरंगा फहराते हुए, बल्कि इसमें तो आपको खुद जाना चाहिए, अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए देशभक्ति के प्रति, तभी तो कहते हैं ऐसा देश है मेरा है। हर विदेशी को हमारे देश में मेहमान कहा जाता है और उनकी खातिरदारी भी उतनी ही अच्छे से की जाती है। तो ट्रैफिक के साथ साथ इनका भी ध्यान रखिए और आप भी इस रैली में शामिल होइए, साथ ही साथ सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना बिल्कुल ना भूले और अपने सफर को और भी आसान बनाइए और निकल पड़िए अपने सफर पर। और एक शानदार सा गाना सुनते हैं, ऐसा देश है मेरा, यानी कि अपने देश में हर किसी को मेहमान ही कहा जाता है, तो एक ऐसा गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ। आप सभी अपने देशभक्ति के ऊपर, अपने देश के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं बिल्कुल मैसेज कर जा सकते हैं जी। आई एम वेटिंग फॉर यू, आप सभी के मैसेज के लिए हम वेट कर रहे हैं। नंबर है 9823789689 6, जो भी शायरी है आपके पास, कुछ और बातें हैं जो आप देश के लिए कहना चाहते हैं, बिल्कुल नंबर मैसेज करिए और कनेक्ट हो जाइए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

और आप सुन रहे हैं अर्जरीना के साथ एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज फिर हम बात करने वाले हैं किसान भाइयों के बारे में, यानी EKCC की। अब नाम सुनकर घबराइए मत, इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए खेती में धान या गन्ना बोना है, बीज खरीदना है, खाद लगानी है या दवाई डालनी है, लेकिन जे पैसे कम है, ऐसे समय में किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC आपकी मदद कर सकता है। और EKCC उसी KCC के लिए आवेदन करने का आसान तरीका है। अब बात करते हैं इसके फायदे की। सबसे पहला फायदा, बैंक के कम चक्कर लगाने पड़ते हैं। दूसरा, खेत काम के लिए समय पर पैसा मिल सकता है। तीसरा, बीज खाद दवाई सिंचाई और खेती से जुड़े दूसरे काम आसानी से हो जाते हैं। अगर आप गाय भैंस पालते हैं, डेयरी चलाते हैं या मछली पालन करते हैं तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात याद रखिए, KCC से मिला पैसा शादी, मोबाइल, बाइक या दूसरे घरेलू खर्चे में मत लगाइए। ये पैसा खेती और उससे जुड़ी कामों के लिए ही है। और सबसे जरूरी बात, समय पर बैंक का पैसा वापस कर दीजिए, इससे आगे भी जरूरत पड़ने पर ऋण मिलने में आसानी रहती है और ब्याज में भी लाभ मिल सकता है। तो किसान भाइयों और बहनों, सही जानकारी लीजिए, सोच समझकर आवेदन कीजिए और EKCC का पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि मजबूत किसान तो मजबूत खेती, और मजबूत खेती तो खुशहाल परिवार।

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go.

0: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन। इनकी बेगम साहिबा

हेलो जी, गज वाली इवनिंग है श्रोताओं। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:53 हो चुके हैं श्रोताओं। और देखिए, कांवड़ यात्रा के बाद ना, जब हरिद्वार की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर यानी कि आस्था के नाम पर हम जाते हैं, एक श्रद्धा भाव से जाते हैं कि भगवान भोले के लिए जल लेकर आएंगे या जलाभिषेक करेंगे। लेकिन वहां पर हम क्या गलतियां कर जाते हैं ऐसे, जिसके आने के बाद जो सफाई करता है उनसे पूछ कर देखिए। हम आस्था के नाम पर मुझे लगता है कि हम खिलवाड़ करते हैं। हम जाते तो जरूर है कांवड़ लेने के लिए, मन में बस भगवान जी के जय भोलेनाथ जयकारा लगा कर जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हम गंदगी वहां पर, जो सभी गए थे और गंदगी वहां पर छोड़ कर आए हैं, तो इसको क्या आस्था कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। क्योंकि आस्था तो वो चीज है, वो एक सुंदर वर्ड है। जहां आप हरिद्वार जा रहे हैं, कांवड़ लेकर जा रहे हैं, आप चाहे पन्नियां खरीद रहे हैं, वहां पर अपने सामान रखते हैं और उसके बाद उन पन्नियों को वहीं पर छोड़ के आ जाते हैं। ये इतना कोशिश नहीं करते कि जिस पन्नी को आपने बिछाया है, जो कूड़ा आपने वहां पर फैलाया है, उस कूड़े को यानी कि साफ कर दिया जाए। सोचिए, वही गंदगी, वही कूड़ा अगर गंगा जी में बहकर जाए तो पानी भी गंदा होएगा ही होएगा। साथ में जो आप जो जिस आस्था के नाम से लेकर गए थे कि हमें पुण्य मिलेगा, वो पुण्य नहीं मिलता है कि आपने वो तो काम करा ही नहीं है। आप गए हैं, जल उठाया है और गंदगी फैलाकर आ गए। एक बार जब आप वीडियो देखेंगे इंस्टाग्राम पर, ये हरिद्वार वाले जो वीडियोस है, सफाई की वीडियोस है, बहुत वायरल हो रही है। और इन्हें देख के जब आप खुद देख रहे होंगे ना, तो आपको महसूस हो रहा होगा कि हमने करा क्या है वहां पर, कि बस जल लेने गए थे, जल लेकर आ गए, कूड़ा फैलाकर छोड़ आए वहां पर। तो ये चीज मुझे लगता है कि आप कहीं भी पवित्र जगह जाते हैं तो वहां पर गंदगी मत फैलाइए। क्योंकि आप देखिए, सफाई करने नहीं जाते हैं, बल्कि आप जाते हैं वहां पर साफ सफाई, आपको साफ पानी मिलता है, अच्छी सुविधा।

मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं, और इस बार सफाई कर्मचारी भी बहुत रखी गई थी, फिर भी ये हालत। तो कुछ थोड़ा सा खुद के लिए भी, यानी कि खुद भी डिपेंड ऐसा बनिए कि आप खुद उस कूड़े को, जहाँ आपने पन्ने बिछाया उसको खुद भी साफ कर सकते हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये आस्था की जो चीजें हैं उसको भी आप आस्था के तरीके से नहीं लेते हैं, उसको, उस आस्था को ना आपने ऐसा बना दिया है कि बस हम कूड़ा फैलाने आते हैं और लेकर चले जाते हैं, तो आप कूड़ा ही भी अपने साथ लेकर जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा मन वैसा ही कर्म, तो अपने कर्म सही करिए और कूड़ा कहीं भी मत फैलाइए, क्योंकि जो वहां साफ कर रहे हैं ना उनको बहुत दुख होता है जब आप सोचिए उस कूड़े में नहीं चल सकते हैं और उन्होंने उस कूड़े को साफ कराए। इनफैक्ट जहाँ कपड़े चेंज करने वाले बनाए गए हैं वहां पर भी बहुत गंदगी उतारी गई। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, हर बार यही कहा जाता है कि आप कांवड़ लेकर जाते हैं तो वहां पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। अगले मैसेज की बात करूं तो आज रीना जी, आज आपने सफाई के बारे में बोला है, बहुत अच्छा लगा है। और सफाई हमें देखिए खुद करनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं कि हमारे गंदगी फैला रहे हैं वो सफाई कर देंगे, क्यों आप उनको पैसे देकर आते हैं। 2 रुपए, अगर 10 रुपए कोई मांग ले तो आप वो पॉकेट से नहीं निकाल पाओगे, सोचिए वहां पर सफाई करते हैं। तो आप थोड़ा सा उनको भी ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। जैसे आप अपने घर में कूड़ा कबाड़ नहीं देख सकते हैं, वैसे बाहर भी मत देखिए, बाहर भी साफ सफाई रखिए। और यूं ही आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए, फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी फिलहाल एक और देशभक्ति गाना सुनते हैं।

0: इस प्रोग्राम के प्रस्तुत करता है शाहनवाज खान। मुझे विदुषी वत्स और मेरे साथ ही नवीन जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। निगम किसी भी सहकारी समिति या सहकारी विकास में लगी संस्था को सीधे ऋण और अनुदान भी प्रदान कर सकता है। सहकारी राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। सरकार ने आज बताया कि राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कुल 4,620

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। देखिए, जलवा तो दिखाना बहुत जरूरी, लेकिन साथ ही साथ आपने एक चीज का जलवा नहीं दिखाया तो पड़ सकता है आपको भारी। आखिरकार क्या है वो बताते हैं। अर्जुरीना के साथ आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में और दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 6:10 हो चुके हैं। आपके घर में यानी कि LPG है तो अभी तक आपने उसका EKYC नहीं कराया है तो करा लीजिए भैया, क्योंकि आज तारीख है 12 अगस्त, यानी कि संडे को पड़ रहा है 16 अगस्त। अगर 16 अगस्त तक आपने EKYC नहीं कराया तो जो सब्सिडी मिलती है ना उसमें भी दिक्कतें आएंगी, और साथ ही साथ आप गैस बुकिंग करेंगे उसमें तो दिक्कत आनी ही आनी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत ना आए तो इस काम को जल्दी करवाइए, EKYC कराइए, ताकि अगर आप EKYC कराते हैं तो आपके साथ सब्सिडी भी तो मिलता रहेगा, साथ ही साथ गैस बुकिंग करते हैं तो उसमें भी आपको कोई त्रुटि और कोई भी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेगी। तो जलवा यहाँ दिखाइए, अदरवाइज घर में मैडम जी तो बस ताने ही देंगी, सोच लीजिए अब क्या करना है आपको। ऑफिस आएंगे और घर पर जाके खाना नहीं मिलेगा आपको, सही बता रहे हम, चाय तक नहीं मिलेगा, बस एक गिलास पानी तो मिल जाएगा। इसीलिए EKYC कराइए और इसका आनंद उठाइए, लुफ्त उठाइए, जो भी लुफ्त मिल रहे हैं उसके, जो भी सुविधाएं मिल रहे हैं, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए इसी के साथ एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं और मैसेज क्या आया है जरा देख लेते हैं। गौरव टेलर जी कहते हैं, सही बात कही रीना जी आपने, क्योंकि आस्था हमारे मन में होती है, जो सामाजिक जगह होती है ना हमें उसे जगह की गंदगी करनी नहीं चाहिए, हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गंदगी से जो बीमारियां पनपती हैं वह हमारे परिवार में किसी ना किसी को नुकसान ही पहुंचाती है, और हमें खासकर यानी कि जितने भी भोले प्रेमी हैं उनसे यही अपील करता हूं कि जो बाइक वगैरह से जाते हैं उत्तराखंड तो वह ज्यादा तेल जो तेज आवाज वाली बाइक लेकर जाते हैं वो ना लेके जाए, प्रदूषण होता है बिल्कुल जी सही कहा आपने, साइलेंसर निकाल देते हैं तो वो फट फट फट फट फट फट की आवाज आती रहती है, तो वो ना करे भैया। क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं 2010-2009 की, उस टाइम के जो कावड़िए थे ना वो डीजे वोजे और ये बाइक के साइलेंसर निकाल के फट फट फट फट करने नहीं जाते थे, उनकी सीधी उनकी डीजे पता क्या होती थी, बम बम बम भोले बम भोले बम भोले, बस यही नाम रटते रटते जाते थे, वो पैदल यात्रा करते थे अपने कंधों पर इतने बड़े यानी कि कावड़ लेकर, सिर्फ जुबान पे यही रहता था बोल बम बम बम बोल बम बम बम। लेकिन आजकल DJ बाइक की साइलेंसर निकाल देते, उसकी फटफट की आवाज से ही इंसान बोर हो जाता है। आप सोचते हैं कि भगवान जी को आप प्रश्न करने जा रहे हैं, भगवान जी से पूछ कर देखिए, भगवान जी कह रहे होंगे भाई तूने तो सर में दर्द कर दिया मेरे, तो ऐसा ना करे, आस्था को आस्था के तरह ही ले और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे, क्योंकि साफ रखेंगे तभी आपका वातावरण भी साफ रहेगा। चलिए जिसके बाद एक और गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम बजरंगलाल शर्मा, सनोब राधा किशन शर्मा, जिला जयपुर राजस्थान। प्रधानमंत्री योजना के तहत अच्छा खराब मेला, हमारे दोनों फसल नष्ट हो गई थी, 1 लाख रुपए मिल गया था साहब। प्रधानमंत्री किसान जो योजना बीमा योजना है ना, उसको किसान को बहुत सारा मिल जाता है, खराबा मिल जाता है, उसको बीज खाद के पैसे, तेल के पैसे, कुछ खर्चे के पैसे मिल जाते हैं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 6:23 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 12 अगस्त, और 12 अगस्त को दो खास डेज मनाए जाते हैं। फर्स्ट है इंटरनेशनल यूथ डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, सेकंड यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे। पहले यानी कि यूथ के बारे में बात करते हैं, आखिरकार ये दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि युवा सिर्फ देश का भविष्य नहीं, देश की आज की ताकत भी है। उनकी सोच, उनकी ऊर्जा और उनके नए विचार समाज को नई दिशा दे सकती है। इन दिन युवाओं को भागीदारी, उनकी आवाज और समाज के विकास में उनके योगदान को सम्मान दिया जाता है। ये युवा बस इतना अपने सपने को छोटा मत समझिए, क्योंकि एक छोटी सी सोच भी बड़ा बदलाव ला सकता है। और बस यही कहेंगे कि अच्छे मार्ग अपनाइए और अपने देश का नाम रोशन करिए, अपने फैमिली वालों का नाम रोशन करिए, और ताकि आपके ऊपर हर किसी जब आपके नाम सुने तो गर्व हो आपके ऊपर। ऐसा कुछ करके दिखाइए, ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। आप ही तो हैं जो सब काम कर सकते हैं, इसीलिए कभी खुद को कमजोर मत समझिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हिम्मत बनाकर रखिए। वर्ल्ड यानी कि एलिफेंट डे है आज, उनके बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि विश्व हाथी दिवस। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हाथियों को बचाना क्यों जरूरी है। जंगलों का कम होना और इंसानों के साथ बढ़ता संघर्ष हाथी के लिए बड़ी चुनौती है, इसीलिए आज का दिन इन विशाल और खूबसूरत जीवों को संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये डेज मनाया जाते हैं। यानी कि युवा ला सकते हैं, यानी कि देखिए युवा में हम बदलाव ला सकते हैं, और प्रकृति को बचाना भी उतना ही बदलाव का हिस्सा है, क्योंकि युवा के अंदर बदलाव हम अच्छी भावनाओं से ला सकते हैं, और जानवरों को हम बचा सकते हैं, यानी कि जंगल को ना काटकर प्रकृति को बचा सकते हैं। अदरवाइज जैसे आज भैया गर्मी, अगर टेम्परेचर की बात करूं तो 34 डिग्री सेल्सियस है मुरादाबाद की टेम्परेचर, यानी कि आज गर्मी ज़्यादा है और कल भी रहेगी। साथ ही साथ हम जंगल को काटेंगे तो अभी तो शुरुआत है, यानी कि अभी तो ट्रेलर चालू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरी चिया। चलिए मैसेज की बात कर लेते हैं। बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी कनेक्ट हो गई हैं, लक्ष्मी जी हैं इनके साथ और आपके प्रोग्राम से कनेक्ट हो गए हैं, थैंक यू जी। चलिए गाना सुनते हैं, उसके बाद कड़क सवाल भी लेकर आते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। इवनिंग मस्ती शो में श्रोताओं, और समय की बात करूँ तो 6 बजकर यानी कि 33 मिनट हो चुके हैं, और इसी बीच रीना आप सभी के लिए लेकर आ गई है कड़क सवाल।
1: यानी कि यंकण जी नाला
0: तो कड़क सवाल ये हैं, आज बहुत बहुत सिंपल, सभी सिंपल क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ श्रोताओं। यानी कि हमारे तिरंगे में कितने रंग होते हैं, उन रंगों के आपने नाम भी बताने हैं। नंबर है 9823789689 पर आपने मैसेज करना है कि हमारे तिरंगे में कितने रंग होते हैं, कौन कौन से रंग होते हैं, उनके नाम मेंशन करने हैं। करिए, एक और गाना सुनवाते हैं आपको, बहुत ही शानदार वाला।

हाय हेलो जी, गज वाली इवनिंग है श्रोताओ, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 6:41 हो चुके हैं और ये कहा जा रहा है अब, यानी कि कर्नाटका में एक साल के लिए गुटखा पर बैन लगा दिया गया है, यानी कि तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, पान मसाला जो है उन पर यानी कि एक साल के लिए पाबंदी लगा दी गई है। मुझे लगता है कि एक साल के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए लगा देना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो इस समय यानी कि कैंसर के जो केसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये जबकि इन पे लिखा भी होता है कि ये हमारे बॉडी के लिए खतरनाक है, जानलेवा हो सकता है, लेकिन फिर भी इंसान उसको खाते हैं। यानी कि वो साफ सब कहते हैं कि मैं तुम्हारे बॉडी के लिए नुकसानदेह हूँ, तुम मुझे मत खाओ, अदरवाइज लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन इंसान कहते हैं कोई बात नहीं, जो होएगा देखा जाएगा, पहले तुम्हें खा लेते हैं। लेकिन आपको नहीं पता चलता है कि आप जब उसको खाते हैं धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, ये खुद भी नहीं पता चलता है। इसके जो ये अजब गुटखा जो भी तंबाकू बीड़ी खाते हैं आप सब, उसका जो असर है ना काफी टाइम बाद दिखता है। साथ ही साथ बीड़ी, इन सब पर वहां बैन लगा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में तो बैन की जगह मतलब पूरा जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए यार। ना कहते हैं ना, न रहेगी बास न बाजेगी बांसुली, न रहेंगे ये नशीली चीजें, ना होंगे कैंसर के शिकार। तो इसीलिए और साथ ही साथ आज के टाइम में हर कोई स्पा पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं बॉडी के ऊपर, ये भी रीजन है कैंसर का, बहुत बड़ा रीजन है। तो भगवान ने जैसा बनाया है वैसा रहिए, प्राकृतिक जो चीजें हैं उसको यूज करिए, ये ट्रीटमेंट इंजेक्शन मत लीजिए, इनसे ही अटैक आते हैं, क्योंकि पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी, अब बीमारियां कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है और ऐसी खतरनाक बीमारियां बढ़ रही है ना कि जिनके नाम भी पहली बार सुन रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए। और ये जैसे कि कर्नाटका में हुआ है बैन लगने जा रहे हैं बीड़ी, गुटके, पान मसाला, इन पर, यानी कि इंडिया में भी लगना चाहिए। आपका क्या कहना है श्रोता, आप भी बता सकते हैं अपना राय। साथ ही साथ आज का जो कड़क सवाल मैंने आप सभी से पूछा है वो है कि हमारे तिरंगे में कितने रंग होते हैं, साथ ही साथ आपने उन कलर के नाम भी बताने हैं। चलिए जी, फिलहाल एक गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:51 हो चुके हैं और इसी बीच आप सभी के मैसेज यानी कि शामिल करने का वक्त आ गया है। सो आज मैंने आप सभी से पूछा है कि हमारे तिरंगे में कुल कितने रंग होते हैं और उनके नाम बताने आपने, तो चलिए देखते हैं किनका हमारे पास क्या मैसेज आता है।

इवनिंग पहुंच जाती है इवनिंग मस्ती शो में। कैसी हो? बहुत अच्छे हैं जी। ये हमारे साथ ललिता कश्यप जी कनेक्ट हो गई हैं और इनका कहना है कि तीन कलर होते हैं, केसरिया, सफेद, हरा। ओके, अगले मैसेज की बात करूं तो तीन कलर होते हैं, ये विक्की सागर जी कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन चार भी होते हैं, उनका नाम बताओ सर, नाम बताना पड़ेगा। देखो, अगले मैसेज की बात करूं तो हरे यानी कि हमारे तिरंगे में रीना जी तीन रंग की पंक्तियां होती हैं, बीच में अशोक चक्र, नीले यानी कि नीला रंग को नीले रंग के कलर के होते हैं। ओके जी, पहले अगर रंग की बात करूं तो केसरिया, दूसरा होता है सफेद, तीसरा है हरा, जो कि गहरा नीला रंग सफेद कलर के बीचों बीच अशोक चक्र का रंग होता है। अगले मैसेज की बात करूं तो रणवीर जी कनेक्ट हो गए हैं, जेठालाल जी, और इनका कहना है, ये खूबसूरत लाइनें भी लिखी हैं, नजारे नजर से कहने लगे, आंखों से बड़ी कोई चीज नहीं है, तभी मेरे दिल ने यह आवाज दी, देश से बड़ी कोई चीज नहीं। क्या बात है जी। और आगे लिखते हैं कि तीन कलर होते हैं, फर्स्ट नंबर पर है केसरिया, सफेद, हरा, बीच की सफेद पट्टी पर नीले रंग की अशोक चक्र को मिलने पर यानी कि कुल मिलाकर चार कलर होते हैं। ओके, ललिता जी कनेक्ट होती हैं और इनका कहना है कि तीन कलर होते हैं, केसरिया और सफेद। इनके आखिर ये जो तीन कलर है, चार कलर है, इनके क्या क्या यानी कि बेनिफिट होते हैं, क्या काम है, ये क्या प्रतीक है ये इस कलर का। यानी कि पहले नंबर की बात करूं केसरिया, वीरों के बलिदान, साहस और देश के सेवा के जज्बे का प्रतीक है। सफेद शांति, सत्य, पवित्रता और अखंड का संदेश देता है। हरा भारत की धरती की हरियाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। अशोक चक्र की बात की जाए तो धर्म चक्र जो देश को 24 घंटे निरंतर प्रगति की ओर चलने की सीख देता है। तिरंगा केवल एक झंडा नहीं, हमारी शान, पहचान और अभिमान है, और इस अभिमान को कभी हम गिरने नहीं देंगे। सो श्रोताओं, आप सभी ने राइट आंसर दिया है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ यानी कि पूनम जी कनेक्ट होती है मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि तीन कलर होते हैं, केसरिया, हरा और सफेद। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ यानी कि राकेश जी कनेक्ट हो गए हैं मुरादाबाद से, जो कि ये इनका कहना है कि हम आपके ऑफिस के पास ही रहते हैं। ओके जी, सो आपने जो क्वेश्चन पूछा है यानी कि हमारे झंडे के कलर है तीन, और ये है केसरिया, सफेद, हरा। ओके, बबीता जी कनेक्ट होती है मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि हमारे तिरंगे में तीन कलर होते हैं, केसरिया, सफेद, हरा। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आप सभी के मैसेज शामिल करके, और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।

0: ये एक और मैसेज आ गए हैं मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से। इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, शैयद शारिक अली इनके दोस्त है। गुड इवनिंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आपका शो सुन रहे हैं, पसंद आ रहा है। और दोस्तों का नाम लिखते हैं निजाम अली। ओके जी, चलिए जी, मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए कुछ नहीं करना जी, अपने सेहत का ध्यान रखिए और एंजॉय करते रहिए। क्योंकि देखिए, सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत सी दिक्कतें आ जाएगी। और जो नशीली चीज़ें हैं, मैं तो कहती हूँ उनको अवॉइड करिए, जितना हो सके उतना अवॉइड करिए, क्योंकि आपकी ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। हमें शुरू शुरू में नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं ना, उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। चलिए जी, बाय बाय।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस क्यू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर शाम के 7 बजने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्राप्त करने की अनुमति देता है। निगम किसी भी सहकारी समिति या सहकारी विकास में लगी संस्था को सीधे ऋण और अनुदान भी प्रदान कर सकता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कुल 4,620 प्रतिभागियों ने प्रथम चरण के 2 मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि 552 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के प्रथम चरण के सभी 4 मॉड्यूल पूरे कर लिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। आज हमारा एपिसोड बहुत खास है, अयोध्या का स्वाद, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश से जो परंपरा और प्रगति की सुंदर संगम है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। आज लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जिसमें है आस्था की मिठास, संस्कृति की खुशबू और स्वाद का ऐसा जादू जो सीधे दिल तक पहुँच जाता है।
0: जी हाँ दोस्तों, आज हम चलेंगे उस नगरी में जिसका नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। अयोध्या प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि, सरयू की पावन धरती और अब स्वात की नई राजधानी।
1: सुबह का समय, सरयू के घाटों पर उगता सूरज, मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि और गलियों में उठती ताजी कचौड़ियों, जलेबियों और पेड़ों की खुशबू।
0: वाह, ऐसा लगता है जैसे अयोध्या सिर्फ दर्शन नहीं कराती बल्कि अपने स्वाद से भी आपका स्वागत करती है।
1: और यही कारण है कि आज लाखों श्रद्धालु सिर्फ रामलला के दर्शन ही नहीं बल्कि अयोध्या के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने भी पहुंच रहे हैं।
0: भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान बना चुकी है। सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, घाट, हर क्षेत्र में विकास की एक कहानी लिखी जा रही है।
1: लेकिन विकास सिर्फ इमारतों और सड़कों का नहीं होता, असली विकास तब होता है जब स्थानीय लोगों की कला, संस्कृति और स्वाद को भी नई पहचान मिले। और यही काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या की पारंपरिक खाद्य विरासत को भी नई उड़ान दी जा रही है।
1: और इसी प्रयास का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
2: फिलहाल मैं मौजूद हूँ मौर्य मिष्ठान भंडार में। यहाँ मौजूद होने का मेरे कारण है ODOC में चुने गए हमारे शहर के और इस दुकान के कुल्लड़ वाली दही जलेबी, जिसको हमारे प्रदेश में एक नई पहचान मिली है और इससे हमारे प्रदेश को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है। अब जब शहर में लोग आएंगे, जब टूर से लोग आएंगे और जब वो ये कह के आएंगे कि भाई अयोध्या जाना है और हमें कुल्लड़ वाली दही जलेबी खानी है, तो अयोध्या का नाम और अयोध्या का व्यापार दोनों बढ़ेगा। और इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौर्य मिष्ठान भंडार से इसके ओनर।
3: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने के बाद अयोध्या वासी तो भाई बोलते जो आमदनी बढ़ी है तो सही चीज है। कस्टमर आते हैं, लोग आते हैं तो आमदनी जाती बात यहाँ लोगों को बढ़ेगी। रही बात ODOC की, तो अयोध्या में दही जलेबी हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है
4: जी।
3: और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर आते ही रहते हैं अयोध्या में, तो जो है आपके यहाँ प्यारी लोग जो है आपका दही जलेबी लेके जाते हैं, तो कितने भाई अब शायद माइंड में रहा होगा, अच्छा लगा हमको भी कि चलिए अयोध्या से इतनी पानी तो गई ऊपर तक।
4: बहुत अच्छी बात है। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह अपना धन्यवाद आप प्रकट करेंगे?
3: उनके लिए जितना कहा जाए उसमें कम ही है। अयोध्या क्या था और क्या बना दिए तो अभी देख रहे हैं, उसमें कहना ही नहीं, कोई शब्द नहीं है
4: जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार
3: जी। नमस्ते
0: दोस्तों, अगर अयोध्या के स्वाद की बात हो, खुरचन पेड़े का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल, यह सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक कला है।
0: कल्पना कीजिए, बड़े से कढ़ा में घंटों तक पकता दूध धीमी आँच, धैर्य और अनुभव।
1: जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता है, कढ़ाई के किनारों पर मलाई की सुनहरी परत जम जाती है। कारीगर इसे बड़ी ही सावधानी से खुरचते हैं और फिर उसी से तैयार होता है खुरचन।
0: इसके बाद उसमें देसी खांड, इलायची और पारंपरिक तकनीकी का जादू मिलाया जाता है।
1: जब ये पेड़ा तैयार होता है तो उसकी हर परत में दूध की मिठास और मेहनत की कहानी छिपी होती है।
0: कहते हैं कि एक अच्छा खुरचन पेड़ा मुंह में जाते ही घुल जाता है, लेकिन उसका स्वाद देर तक याद रहता है।
1: यानी दर्शन का प्रसाद दिल में बसता है और खुरचन पेड़ा स्वाद की याद बनकर साथ चलता है।
0: तो दोस्तों, अब बात उस जोड़ी की है जिसके बिना अयोध्या का फूड टूर अधूरा माना जाता है।
1: गर्मा गर्म जलेबी और ठंडी मलाईदार दही,
0: और सबसे खास बात, ये परोसी जाती है मिट्टी के कुल्हड़ में।
1: कुल्हड़ सिर्फ एक बर्तन नहीं बल्कि भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। मिट्टी की सौंधी खुशबू दही के स्वाद को और बढ़ा देती है।
0: सुबह सुबह दुकानों के बाहर लगी कतारें, चाशनी में डूबी सुनहरी जलेबी और ताजी दही,
1: ऐसा लगता है जैसे स्वाद और संस्कृति एक साथ थाली में परोस दिए गए गए हैं।
0: जलेबी की तैयारी भी कम दिलचस्प नहीं है। खमीर उठे हुए घोल को गोल गोल आकार देकर घी में तला जाता है, फिर उसे मीठी चाशनी में डुबोया जाता है।
1: और जब वही जलेबी ठंडी दही के साथ मिलती है और स्वाद का ऐसा संतुलन बनता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
0: तो श्रोताओं, यही वजह है कि अयोध्या की दही जलेबी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है और फूड फेस्टिवल में लोगों का दिल जीता है।
1: लेकिन अयोध्या का स्वाद सिर्फ मिठाइयों तक सीमित नहीं है।
0: बिल्कुल, यहाँ की मसालेदार कचौड़ी और कुरकुरी टिकिया भी उतनी ही मशहूर है।
1: सुबह के नाश्ते में कचौड़ी, सब्जी और शाम को चटपटी टिकिया, यहाँ के लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है।
0: हर दुकान की अपनी विशेष रेसिपी है, अपना स्वाद और अपनी पहचान होती है।
1: दोस्तों, इन व्यंजनों की लोकप्रियता के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक दूरदर्शी सोच भी है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य है कि हर जिले के विशेष व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले।
1: इसके तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे दुकानदारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: उन्हें आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी, FSSAI मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है।
1: अब अयोध्या की स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचेंगे।
0: यही स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और

0: महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करेगा।
1: आज सोशल मीडिया पर हैशटैग अयोध्या फूड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।
0: लोग कुल्हड़ वाली दही, जलेबी, खुरचन पेड़ा और अयोध्या के स्ट्रीट फूड की तस्वीरें साझा कर रहे हैं।
1: एक समय था जब लोग अयोध्या को सिर्फ धार्मिक दृष्टि की सोच से जानते थे,
0: और आज अयोध्या अपनी संस्कृति, पर्यटन और खान पान के जरिए एक नए भारत की तस्वीर पेश कर रही है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप अयोध्या जाएं,
0: रामलला के दर्शन कीजिए,
1: सरयू आरती का आनंद लीजिए
0: और फिर जरूर चखिए खुरचन, पेड़ा, लड़वाली दही, जलेबी, कचौड़ी और टिकिया,
1: क्योंकि ये सिर्फ व्यंजन नहीं बल्कि अयोध्या की आत्मा का स्वाद है।
0: और जब स्थानीय परंपरा को विकास का साथ मिलता है
1: तो एक शहर की पहचान पूरे देश की शान बन जाती है।
2: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश,
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी नई।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: कैसे हालचाल है। मेरा नाम आरजे आनंद है। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आपके शहर का ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन। दोस्तों कहते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज होती है आपकी मुस्कान। हमारी मुस्कान है ना, जब मुस्कुराते हैं तो अलग ही लेवल का स्वैग होता है। लेकिन मुस्कुराने के लिए हमारे दांतों का सुंदर दिखना भी तो बहुत जरूरी है ना। तो आज आपके दांतों को और भी चमकदार बनाने, देखिए हम एंटरटेनमेंट पे बात करते हैं, हम तमाम सारे मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन मुझे लगा आपके दांतों की बात भी होनी चाहिए। तमाम सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आती रहती है, तो हमने सोचा यार आज इस सेशन को और भी खास बनाते हैं। इस खास मुलाकात में हमने खास एक्सपर्ट को इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में। तो आइए जरा सर का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं उनके बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। कैसे हैं आप? हाउ आर यू
1: सर? आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ।
0: जी सर, इट्स माय प्लेजर। सर प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: मैं डॉक्टर एसपी सिंह, मैं आई एम प्रैक्टिसिंग देयर इन देवनंदी हॉस्पिटल।
0: ऑलराइट।
1: और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ अपने डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट का। और इसके अलावा मेरा खुद का क्लिनिक है अवंतिका डेंटल होम्योपैथी क्लिनिक नाम से। तो मैं पिछले 16 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल। देखिए सर ने तो परिचय भी बड़ा अमेजिंग सा दिया है, बहुत ही बढ़िया। सर आप ये बताइए रेडियो स्टेशन में आके आपको कैसा लग रहा है, मतलब वाइब, स्टूडियो, माइक और ये सब देख के आपको कैसा लग रहा है?
1: ये अमेजिंग है बिल्कुल। अच्छा, न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी।
0: ऑलराइट। अच्छा, पहली बार आप स्टूडियो में आए हैं, मतलब रेडियो स्टेशन में?
1: हाँ, रेडियो स्टेशन में पहली बार आया हूँ।
0: क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सो आई होप आपको मजा आ रहा होगा।
1: नहीं, डेफिनेटली।
0: चलिए तो चलिए सर मुद्दे की बात शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम शुरुआत, छोटे बच्चे जो है ना भाई बड़े नॉटी होते हैं यार, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में उनको चॉकलेट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। लेकिन खाने पीने के साथ साथ उनकी दांतों की हेल्थ का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। सो बच्चों के दांतों की देखभाल क्यों जरूरी है डॉक्टर साहब? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे।
1: सर बच्चों की देखभाल इसलिए जरूरी है कि बच्चों के संदर्भ में पेरेंट्स को ये जानकारी नहीं होती कि बच्चों के दांत आने के बाद उनको साफ करना भी जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कहते नहीं डॉक्टर साहब ये तो अभी दांत आए थे, 2 साल में 3 साल में खराब हो गए। तो उनको ऐसा लगता है कि दूध के दांतों को देखभाल की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, बच्चे को जनरली 6 माह में पहला दांत आ जाता है। वो कई बार 7 माह भी हो जाते हैं, 8 माह भी हो जाते हैं। तो बच्चा फीड करता है और वो कई बार फीड करता है, दूध भी पिएगा और बहुत सारी चीजें खाता है बीच बीच में, बट उसकी सफाई नहीं होती। पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं होती, पेरेंट्स को ज्ञान नहीं होता, या जो माता लोग हैं उसको फीड कराती है, बॉटल लगा दी मुंह में और बच्चा सो गया। क्योंकि जब जब बच्चा रोता है मम्मी क्या करती है, बॉटल लगा देती है, और बॉटल लगाने के बाद बच्चा सो जाता है और बॉटल से दूध थोड़ा थोड़ा करके उसके दांतों में एक्युमुलेट होता रहता है, जिससे दांतों में

0: कॉटन साफ होना चाहिए, उसको वेट करके उससे क्लीन कर सकते
1: हैं। ऑलराइट, मतलब ये छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा।
0: इजी हो जाता है, जो बहुत छोटे बच्चे।
1: समझ गया मैं, बहुत बढ़िया। सो गाइस, आई होप आपको ये बात सुनके बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने छोटे बच्चों के लिए ब्रश का टाइम भी बताया कि दो टाइम तो होता ही है, तो एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक सुबह का तो रूटीन सबको ही पता होता है,
0: सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश करना जरूरी होता है।
1: ओके, तो मुझे लगता है ये वाली बात जो है वो हर एक एज ग्रुप के लोगों को, मुझे लगता है
0: सभी के लिए वो यूनिवर्सल है।
1: बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आप दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन जानकारियां आप दे रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, एक और सवाल है मेरा आपसे, जो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके दांतों की कैसे मतलब देखरेख, थोड़ा सा उनके बारे में आप बताइए।
0: देखिए, बच्चे में पहला दांत 6 महीने में आता है और दूध के दांत लगभग 2.5 से 3 साल में कम्प्लीट हो जाते हैं।
1: ओके,
0: और अगर सब कुछ सही रहता है तो 6 साल में पहला पक्का दांत आता है। तो ये जो पीरियड है 6 साल से 10 साल का पीरियड, ये काफी क्रूशियल होता है, क्योंकि इसमें दूध के दांत गिरते हैं और पक्के दांत आते हैं।
1: ओके,
0: तो हमें ये भी ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है दूध के दांत नहीं गिरते तो पक्के दांत नहीं निकल पाते।
1: ओके,
0: पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से दांत उसके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, निकलते ही नहीं है। तो जनरली इस एज में पेरेंट्स को बच्चे को डेंटिस्ट को दिखाना जरूरी होता है, एक बार स्क्रीनिंग करानी जरूरी होती है।
1: ओके,
0: जो हम लोग अवॉइड,
1: क्या बात है। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी बातों को अवॉइड मत किया करो, बहुत जरूरी है, ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो 12 वर्ष की उम्र के बाद जो है बच्चों की दांतों की देखरेख किस तरीके से होनी चाहिए, इससे थोड़ा एज ग्रुप बढ़ जाता है उसके हिसाब से।
0: देखिए, आज के टाइम में एस्थेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। मतलब पहले हम लोग नहीं सोचते थे कि हाँ दांत टेढ़े मेढ़े हैं, क्या है,
1: करेक्ट
0: सब चलता था, बट अब नहीं चलता है,
1: अब नहीं चलता है,
0: चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, अब वो सबको बिल्कुल परफेक्ट दांत चाहिए। तो इसके लिए ये जरूरी है कि जब दांत पक्के वाले दांत आ रहे हैं, हम उनका ठीक से देखभाल करें। अगर कोई दांत समय पे नहीं आ रहा है तो उसको डेंटिस्ट को जाके दिखाएं, वो देख के बताएगा हाँ भाई क्या परेशानी है, क्यों नहीं आ रहा है। और अगर बाय चांस किसी भी कारण से बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो गए, तो ये जो एज है 10 से 11 साल या 12 साल, ये परफेक्ट एज होती है टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज कराने के लिए।
1: अच्छा, मतलब इस एज में अगर हम अपने दांतों का ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हमारे लिए सही बेनिफिशियल होता है।
0: एग्जैक्टली।
1: ऑलराइट। अच्छा सर जी, प्लीज टेल अस, आप कुछ कह रहे हैं।
0: एक्चुअली जब दांत निकल रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, हम उनको उनकी ग्रोथ को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, हम उनको आगे पीछे कर सकते हैं। और उस समय जो हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं ज्यादा परमानेंट होते हैं, और इवन वी कैन चेंज द मस्कुलेचर, हम जबड़े की संरचना को भी थोड़ा बहुत बदल सकते हैं इस एज में।
1: ओके, अच्छा, ओके। सो डॉक्टर साहब, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दांतों का सबसे आम और कॉमन, जैसे हम कह सकते हैं ना, कौन कौन से वो रोग है और उनकी देखभाल क्या है, सही उपचार क्या है?
0: सर, दांतों में जो सबसे बड़ा रोग है वो डेंटल कैरीज।
1: ओके,
0: और आपको ताज्जुब होगा सुन के, ये दुनिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के मामले में सबसे बड़ी बीमारी है।
1: ओके,
0: और मतलब इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब दूसरे देशों में तो इवन दे हैव टू अपॉइंट डेंटल नर्सेज, मतलब वहाँ पे डेंटिस्ट इतने नहीं है, इस वजह से उन्हें डेंटल नर्स अपॉइंट कर रखी है देखभाल के लिए।
1: ओके,
0: हमारे इंडिया में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो है, ऑल्दो आजकल काफी डेंटिस्ट है, काफी अवेयरनेस है। डेंटल कैविटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो दिखाई नहीं देता, मतलब केवल डेंटिस्ट ही देख के पहचान सकते हैं कि ये कैविटी है, बहुत ऊपर से बहुत स्मॉल सा पिन पॉइंट दिखाई देगा, बट वो एकदम ट्रायंगुलर शेप में नीचे स्प्रेड करती है। और आम आदमी को पता नहीं चलेगा, उसको पता तब चलेगा जब उसके दांत में दर्द हो जाएगा, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो कैविटी है वो उसकी नस में पहुंच चुकी होती है, उसका ट्रीटमेंट फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, और एक बार रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद ऑल्दो दांत ठीक हो जाता है, फंक्शन भी हो जाता है, एस्थेटिक्स भी आ जाती है, लेकिन वो दांत ब्रिटल हो जाता है, उसके खराब होने की संभावना अल्टीमेटली बढ़ जाती है।
1: ओके, डॉक्टर साहब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी हमारे तमाम सुनने वाले श्रोताओं को, तमाम जानकारी आपसे मिल रही है आज। इसी बीच में एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर मैं बात करूं आज के जमाने के बच्चों की, तो इतनी सारी चीजें मार्केट में आ गई हैं जिसे हम दिन भर में अनलिमिटेड खाते हैं कई बार, और हमें पता नहीं होता, और आजकल तो इवन ये भी चल रहा है कि शाम को किसी ने ब्रश किया किसी ने नहीं किया, तो मतलब एक सही तरीका क्या है ब्रश करने का, स्पेशली आज की जेंजी के लिए अगर मैं बोलूं तो?
0: सर, ब्रश करने के लिए आपको इट हैज टू बी वेरी सॉफ्ट, ब्रश आपका बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, और उस ब्रश को सॉफ्ट तरीके से ही करना चाहिए।
1: ओके,
0: हम जनरली सर्कुलर मोशन में एडवाइस करते हैं ब्रश करने के लिए, ठीक है, प्रेशर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना होता है, टाइम लगभग 2 से 2.5 मिनट देना है, ठीक है, आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे आपके दांत घिस जाएंगे। खाने का ऐसा है, खाने की तो बहुत सारी चीजें मार्केट में, आप किसी को खाने से रोक नहीं सकते, बच्चे को चॉकलेट भी खानी है, बच्चे को चिंगम भी खानी है, बच्चे को टॉफी भी खानी है, उसकी एज भी है, वो नहीं खाएगा तो कौन खाएगा,
1: ठीक है,
0: बट आप खाइए, बट क्लीनिंग बहुत जरूरी है, आपको ब्रश करना जरूरी है, कुछ भी खाइए लेकिन रात को ब्रश करके सोइए। अगर आप
1: जी सर, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा,

0: तो मतलब ब्रश करना डेली डेली जरूरी है, मतलब हफ्ते के सातों दिन रात को भी करके सोना है?
1: डेफिनेटली।
0: ऑल राइट, जैसे कई लोगों का मिथ होता है भाई आज कर लिया सुबह तो डेली कर ही रहा हूँ, रात में आज कर लिया कल नहीं करूंगा तो नहीं चला जाएगा,
1: ऐसा नहीं चलेगा।
0: ऑल राइट,
1: जो खाना आपने आज खाया वो खाना आपको आज ही साफ करना पड़ेगा ब्रश से, अदरवाइज अगर आप सोच रहे कल ब्रश करके आज का खाना साफ हो जाएगा तो वो लगभग असंभव सी बात है।
0: ऑल राइट, अच्छा जी, चलिए सर बहुत अच्छा लगा। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कई बार मैंने बहुत घरों में देखा है ऐसा, मेरे रिलेटिव के घरों में भी मैंने देखा है कि वो एक ही ब्रश को पांच पांच महीने छह छह महीने चला रहे होते हैं, तो क्या ब्रश चेंज करने की भी कुछ है ऐसी टाइमिंग?
1: ब्रश चेंज करना डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से यूज करते हो। कुछ लोग ब्रश पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो उनका वो एक महीने में खराब हो जाता है।
0: ओके,
1: वो पूरे ब्रिसल्स फ्लेयर हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत सॉफ्ट प्रेशर यूज करते हैं तो उनके ब्रश लंबे समय तक चलते हैं, बट छह महीने साल भर में आप ब्रश चेंज कर सकते हैं।
0: ऑल राइट, चलिए तो दोस्तों ये भी आपका मिथ दूर हो गया। अच्छा, मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था सर, मतलब आपने ये बात बोली तो मैं उस पर बोलना चाहूंगा कि मतलब अगर आप ज्यादा ब्रश करते हैं तो आपके दांत घिसने लगते हैं, और तो ये क्या सही बात है?
1: इट्स वेरी ट्रू। देखिए, जो हमारे दांत का एनेमल है वो बॉडी का सबसे स्ट्रांग पार्ट है, बट अगर आप उस पर प्रेशर लगाएंगे, ये वाइटल पार्ट है, अगर आप उस पर प्रेशर लगाएंगे तो दांत घिस जाते हैं। और कई बार तो मतलब जो लोग प्रेशर लगा के, मतलब हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पहले से ये टेंडेंसी है कि नहीं आप प्रेशर लगा के ब्रश करेंगे दांत अच्छे से साफ होंगे, तो वो अच्छे से साफ होते हैं पूरे ही साफ हो जाते हैं, मतलब पूरा दांत घिस जाएगा ऐसे। जैसे आपने देखा होगा बचपन में जो कुआ होता था, कुएं पे जब रस्सी से पानी खींचते तो जैसे ग्रूव बन जाती है, ऐसी दांतों में पूरा ग्रूव बन जाते हैं।
0: ओके, तो फिर मतलब ये तो आपने बता दिया, फिर इसका सही तरीका क्या है बेसिकली?
1: इट हैज टू बी वेरी सॉफ्ट, जो ब्रश कर रहे हैं आप सॉफ्ट तरीके से।
0: ऑलराइट, मतलब दांतों की धुलाई नहीं करनी है, दांतों की सफाई करनी है,
1: तरीके से करना है, मतलब सर्कुलर मोशन में, उसका एक प्रॉपर तरीका है वो, मतलब मैं ऐसे रेडियो पे समझा नहीं सकता वो।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, बास मेथड बोलते हैं, BASS बास मेथड।
0: ओके,
1: मतलब जिन लोगों को देखना है वो गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, बास मेथड ऑफ टूथ क्लीनिंग, दैट इज द परफेक्ट मेथड फॉर टूथ क्लीनिंग।
0: अच्छा सर, कई बार जैसे दांतों में ना अचानक से पेन होने लगता है, कई बार मसूड़ों में सूजन आ जाती है, तो कई सारे लोग ना होम रेमेडीज करने लग जाते हैं, दादी नानी के नुस्खे, आप लोंग चबा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो क्या ये चीज काम करती है और ये दर्द बेसिकली होता क्यों है?
1: सर, दांत में दो तरह से दर्द हो सकता है।
0: ओके,
1: एक तो दांत के अंदर दर्द हो रहा है, एक जो उसका सपोर्टिंग टिश्यू है, जो मसूड़ा है, आपने सपोज करो रात को कोई खाना खाया और वो फूड पार्टिकल दांतों के बीच में फंसा रह गया, तो जब वो खाना सड़ने लगेगा तो मसूड़े को इन्फेक्ट करेगा, पहले वो मसूड़े को इन्फेक्ट करेगा जिससे पायरिया होता है। ठीक है, तो आपके मसूड़े में जो दर्द हो रहा है वो मसूड़े का दर्द है, बट वो बहुत तीव्र दर्द नहीं होता। ठीक है, आपको ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा, ठीक है, कुछ कुरेदने का मन करेगा उसको, तो वो मसूड़े का दर्द है। बट लेकिन दांत का जो दर्द है, जो कैविटी के बाद दांत में दर्द होता है, बहुत तीव्र दर्द होता है, मतलब वो असहनीय दर्द होता है, नर्व वाला, जैसे नस वाला दर्द होता है उतना गंभीर दर्द होता है।
0: तो सर इससे बचने का
1: एक ही तरीका है, प्रॉपर ब्रश करो, सफाई रखो,
0: हाइजीन,
1: ओरल हाइजीन सबसे बड़ी चीज है, वो मेंटेन करेंगे तो आप डेंटिस्ट से बचे रहेंगे, उसके अलावा और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे।
0: ऑलराइट डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं हमारी महिलाओं के लिए पूछना चाहूंगा, जो मतलब प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अपने दांतों की देखरेख कैसे करें?
1: देखिए सर, प्रेगनेंसी में क्या है, जो हमारी माता बहन है उनकी बॉडी में हार्मोन लेवल काफी बढ़ जाते हैं, ठीक है, उस हार्मोन की वजह से दांतों और मसूड़े पे उस जो भी नुकसान होना है वो कई गुना बढ़ जाता है, तो उस समय मतलब अगर छोटी सी गंदगी है तो बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। ठीक है, तो उसके लिए माताओं बहनों को सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और एक जो हमारे इंडिया में मिथ है कि हाँ भाई माता लोग भी, हमारी जो पुरानी माता जी हैं वो बोलती है कि हाँ भाई डिलीवरी के बाद एक से डेढ़ महीने आप उसको ब्रश ही नहीं करने देते, ये एक बहुत गलत, ऐसा करने से आप सोचो जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद पूरा ध्यान उस जच्चा के खाने पीने के पीछे ही रहता है, वो पूरा दिन कभी कुछ खाएगी कभी, बिकॉज उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है।
0: Exactly.
1: और आप अगले दो महीने ब्रश नहीं करोगे तो सोचो दांतों की और मसूड़ों की क्या हालत हो। तो मैं तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, जो भी लेडीज आती है कि नहीं जी मेरी सासू माँ ने बोला था कि नहीं ब्रश नहीं करना है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सासू माँ को बताने की जरूरत ही नहीं है आपको ब्रश करना है नहीं करना, आप बाथरूम में गए चुपचाप ब्रश उठाओ ब्रश कर लो, कौन देख रहे हैं?
0: बिल्कुल,
1: उससे आपकी सासू माँ को पता नहीं चला और आपके दांतों की भी देखोगे।
0: बिल्कुल, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सर, मुझे ऐसा लगता है, जरूरी नहीं है कि सबको बता के किया जाए। बहुत अच्छी बात है। सो अब जो है आपके मन में जो भी मिथ है आई होप वो आज सारे दूर हो रहे होंगे डॉक्टर साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने दांतों की बात करी, पेन की बात करी, तो इसका ट्रीटमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितने समय में स्टार्ट कर देना चाहिए?
1: जैसे ही आपको दर्द हो, कायदे में
0: कई लोग अवॉइड करते हैं, जैसे अवॉइड कर देते हैं, आज डिले कर दिया कल चले जाएंगे परसों चले जाएंगे।
1: देखिए सर, दांत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, अगर आपको दर्द है तो उसका ट्रीटमेंट डेंटिस्ट के पास है, आप पेन के खाके दांत का इलाज नहीं कर सकते।
0: करेक्ट,
1: आप पेन पेनकिलर खा के दर्द खत्म कर सकते हो, और अगर आप इलाज नहीं करा रहे तो यकीन मानिए आपका दांत भी खत्म हो जाना है।
0: ओ माय गॉड, मतलब ये बहुत बड़ा रिस्क भी है
1: जी।
0: ओके, सो दोस्तों देखिए तमाम सारे मिथ आज आपके दूर हो रहे हैं, एंड आई होप आपको ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगने वाला है। डॉक्टर साहब एक और सवाल, इसी बीच मेरे जहन में तमाम सारे सवाल आ रहे हैं और आज मैं सोच रहा हूँ भर भर के जितने भी सवाल है सब क्लियर कर लूँ, क्योंकि मौका कभी कभी मिलता है हमें। अच्छा, कई लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है, तो ये दुर्गंध मतलब दांतों की वजह से आती है, खाना फंसे रह जाता है इस वजह से, या कुछ और रीजन है?
1: सर मुंह से दुर्गंध के दो कारण हो सकते हैं, एक तो लोकल रीजन मतलब अगर आपका दांतों में गंदगी है तो मुंह से बदबू आएगी। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि आदमी के दांत साफ हैं, ओरल हाइजीन बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी उसे बदबू आ रही है, तो इसका दूसरा कारण है कि उस आदमी का या बंदे का डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो भी आपके मुंह से स्मेल आती है, जो आप रिफ्लेक्स से जाते हैं वो बदबू के रूप में बाहर आते हैं।
0: मतलब इसका दांतों से कोई लेना देना है?
1: नहीं, बदबू के दो कारण है, एक तो दांत है, अगर दांत आपके साफ है उसके बाद बदबू आ रही है तो इसका मतलब आपका पेट खराब है।
0: ओके,
1: आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो अंदर से बहुत सारी गैसेस आती है पेट से, वो बदबू करती है।
0: ओके ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दांतों में ब्लीच कराना अच्छा होता है, आजकल ये बड़ा ट्रेंड भी हो गया है कि आप दांतों की जो है ब्लीच करा लो, आपकी शाइन बढ़ जाएगी, ग्लो बढ़ जाएगा दांतों का, तो क्या ये सही में सही होता है क्या दांतों के लिए?
1: सर ब्लीच कराना मतलब जो हम ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं वो बेसिकली एसिड होता है।
0: ओके,
1: वन से वाइल्ड ठीक है, हाँ भाई किसी की शादी है, एक दिन का प्रोग्राम है, उस दिन आदमी को सबसे सुंदर दिखना होता है, तो उसके लिए आप करा सकते हो, बट रेगुलरली कराना दांतों को नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक।
0: ओके, मतलब ये ऐसे नहीं कंटिन्यू नहीं कराना चाहिए, मतलब कभी कभार कोई फंक्शन में जाना है, वन से वाइप जैसे आपने बताया। ओके, तो दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं हम ब्लीच करा के आ रहे, तो भाई ज्यादा कराओगे तो दांतों के लिए खतरा होगा कहीं ना कहीं। सर एक सवाल है बेसिकली, जैसे अब मैं अपने घर से रिलेटेड है, मेरे मम्मी है, हमारी दांतों में प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ खाती है तो वो अपने आप हिलने लगता है, तो उनकी शिकायत है कि इस दांत को निकलवा के नया लगवाना है मैंने, तो मतलब क्या वो दांत निकलवा देना चाहिए जो हिल रहा है?
1: सर देखिए ऐसा है, दांत क्यों हिल रहा है पहले तो हमें इसका कारण जानना चाहिए। वो जो हम पायरिया की बात कर रहे थे, ये बेसिकली पायरिया ही है। पायरिया ऐसी बीमारी,
0: मतलब अगर खून नहीं भी आता तो भी पायरिया?
1: या एग्जैक्टली, खून जब पायरिया शुरू होगा तब आएगा, जब पायरिया जब इन्फेक्शन आपकी हड्डी में चला जाएगा फिर आपको ब्लीडिंग नहीं होगी। धीरे धीरे आपकी दांत की हड्डी को गलाता रहेगा, और जब हड्डी पूरी गल जाएगी तो दांत निकल के बाहर आ जाएगा। तो इसलिए पायरिया भी खतरनाक बीमारी है, वो पूरा टूथ लॉस कर देती है। अगर आपको लग रहा है आपका कोई दांत हिल रहा है तो आप जाओ डेंटिस्ट को जाके दिखाओ, वो आपके दांतों की सफाई करेगा, पायरिया का इलाज करेगा। एक चीज और, कई बार दांत हिलने का और भी कारण हो सकता है,
0: जैसे
1: बहुत सारे लोग हैं, मतलब आजकल कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, तो अगर किसी आदमी को, कोई आदमी गुटखा खाता है, कोई आदमी सिगरेट पीता है, तो ऐसे लोगों को कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर कोई आदमी गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, या तम्बाकू से रिलेटेड कोई भी चीज वो यूज करता है, कंज्यूम करता है, और उसको लगता है कि मेरा दांत अचानक से हिलने लगा, तो उसको एकदम से जाके किसी भी डेंटिस्ट के पास उखड़वाना नहीं चाहिए। ठीक है, उसका कारण ये है कि वो दांत हिल रहा है, उसको ऐसा लगता है कि नॉर्मली हिल रहा है, बट कई बार मतलब ऐसा होता है कि वो कैंसर की वजह से दांत हिल रहा होता है, तो वो पूरा प्रॉपर चेकअप कराने के बाद ही दांत को उखड़वाना चाहिए। क्योंकि हमारे पास पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब, अभी जैसे मेरे पास 3 दिन पहले एक पेशेंट आया
0: जी,
1: उसने दुबई में दांत उखड़वाया 4 महीने पहले।
0: अच्छा।
1: और वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब ये मेरा जख्म 4 महीने से नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने उसको देखा, मुझे देखती लगा रही तो कैंसर का है, मतलब प्रोबेबिलिटी कैंसर की ज्यादा। मैंने उसकी बायोप्सी ली, बायोप्सी भेज दी लैब में, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ शायद कैंसर ही निकलेगा। और कैंसर ऐसे ही पता चलता है कि जी मैंने दांत उखड़वाया था, लोगों में ये मिथ है कि दांत उखड़वाने की वजह से कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। इवन मेरे से एक पेशेंट आया, वो बहुत गुटखा क्रोनिक चीवर, ठीक है, और उसको पीछे अक्कल डाढ़ फंसी हुई है। मैंने कहा तुम गुटखा खाते हो, ये तुम्हारी डाढ़ तुम्हारे गाल को काट रही है, मैं इसको निकालना पड़ेगा, अक्कल डाढ़ है, इसका वैसे भी कोई यूज नहीं होता। कह रहे नहीं डॉक्टर साहब डाढ़ नहीं उखड़वाऊंगा, मेरा वो साला है उसको डाढ़ उखड़वाई, उसके बाद उसको कैंसर हो गया।
0: ओह माय गॉड,
1: तो वो उसकी जो सोच है वो ये है कि दाढ़ उखड़वाने से कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है।
0: ये तो बहुत सारे लोगों का मिथ है फिर कहीं ना कहीं सर।
1: हाँ गलत है वो।
0: ओके,
1: तो अब आप उसकी क्रोनोलॉजी समझो, अब वो तब आएगा या तो उसको कुछ नुकसान हो जाएगा, उससे पहले वो नहीं आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
0: बिल्कुल,
1: तो इसलिए मतलब आपको दांत उखड़वाना है तो मतलब डेंटिस्ट के पास जाइए, और मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है एक पढ़े लिखे अच्छे डेंटिस्ट को ही दिखाइए।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, अनक्वालिफाइड लोगों

0: दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कर्तव्य पथ से तिरंगा यात्रा को रवाना किया। दिल्ली यातायात पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया और दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा का मॉनसून सत्र बेहद सफल और उत्पादक रहा। आज दिल्ली विधानसभा में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता की लगातार अनुपस्थिति के बावजूद सदन में 13 घंटे 19 मिनट की कार्यवाही हुई।
1: 3 दिन का दिल्ली विधानसभा का सत्र, जिसका कल सत्रावसान हो गया, ये 6th सेशन था 8वीं विधानसभा का। जो भी एजेंडा हाउस में लाया गया वो सभी पास हो गए और 13 घंटे 19 मिनट वो कार्रवाई चली है। तमाम बाधाओं के बाद भी इन 6 सत्रों में 19 सीएजी रिपोर्ट टेबल हुई है, जो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये बैकलॉग है जो कई सालों से रुका हुआ और उसका एक ही मकसद है कि प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना।
0: सदन के मॉनसून सत्र में हुई प्रमुख कार्यवाही का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में कुल 52 जनहित के मामले उठाए गए। इन मुद्दों में कूड़ा निस्तारण, जल भराव, आवारा पशु, पीडब्ल्यूडी की सड़कों और बिजली के बिलों सहित कई महत्वपूर्ण नागरिक समस्याएं शामिल रही। सदन में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में राजनीतिक नेताओं की भूमिका और सजा के मुद्दे पर 2 दिवसीय अल्पकालिक चर्चा भी हुई। इसके अलावा दिल्ली लक्ष्मी योजना के संबंध में सदन ने सर्वसम्मति से बधाई प्रस्तावित पारित किया गया। सत्र के दौरान 4 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए और पारित किए गए। इनमें दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान विधेयक, नागरिकों को समयबद्ध और सुगम सेवाओं की उपलब्धता के अधिकार से संबंधित विधेयक, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड विधेयक तथा दिल्ली अग्निशमन सेवा विधेयक शामिल है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण के बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और संबंधित विभागों तथा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि दिल्ली के नए मास्टर प्लान 2047 को आगे की कार्यवाही के लिए मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना दिल्ली के दीर्घकालिक विकास की परिकल्पना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप तैयार करती है। बैठक में सतत और समावेशी शहरी विकास के लिए रोड मैप पर भी चर्चा हुई। इसका उद्देश्य राजधानी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाना तथा दिल्ली को सभी के लिए स्वच्छ और हरित राजधानी बनाना है। हरियाली उत्सव के अवसर पर आज दिल्ली रिज स्थित पीबीजी ग्राउंड सेंट्रल रिज में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली के मेगा पौधारोपण अभियान 2026 में 70 लाख पौधों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक लगभग 40 लाख पौधे लगाए हैं। इसके साथ दिल्ली ने पौधारोपण लक्ष्य का लगभग 58% लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा लगाए जा रहे प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग और डिजिटल निगरानी की जा रही है। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि रिज क्षेत्र में लगभग 51 स्थानों पर पुनर्स्थापना कार्य जारी है और स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण तथा पारिस्थितिक पुनरुद्धार पर सरकार विशेष बल दे रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कर्तव्य पथ से तिरंगा यात्रा को रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया।
3: हम सबके सामने ये देखिए सुभाष चंद्र बोस जी की ये प्रतिमा जो सैल्यूट कर रही है, उस भारत मां को सैल्यूट कर रही है जिसकी आजादी के लिए हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन अर्पण कर दिया। उस आजादी के लिए जहाँ पे गांधी जी का सत्याग्रह हो या भगत सिंह का बलिदान हो या रानी लक्ष्मीबाई अपने प्राणों को निछावर करके इस भारत माता की लड़ाई।
0: महात्मा गांधी, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने युवाओं से तिरंगा हाथ में लेकर देश को मजबूत बनाने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लेने की अपील की। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही आज रोहिणी सेक्टर 8 क्षेत्र में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि तिरंगा केवल हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज नहीं बल्कि ये भारत की एकता, अखंडता, गौरव और हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों तथा सैनिकों के बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा में शामिल होकर प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का स्मरण होता है। महापौर ने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने घरों पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराएं और हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को अपनाने तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। वे आज नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की है, जो 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर एक बड़ा आधार प्रदान करती है।
4: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये 4 ट्रिलियन डॉलर की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: दिल्ली के शहरी विकास और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर झूठे और मनगढ़ंत दावे करने का आरोप लगाया है। स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरण योजना में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री सूद ने कहा कि 3000 से अधिक छात्राओं को नई साइकिल मिलने से उनके चेहरों पर खुशी है, लेकिन विपक्ष इससे खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास कोई ठोस तथ्य नहीं है। श्री सूद ने कहा कि विपक्ष ने 3 से 8 अगस्त के बीच अलग अलग आंकड़े पेश किए, जिनमें लगातार बदलाव देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सभी साइकिलों की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है। शहरी विकास और शिक्षा मंत्री ने झुग्गी वासियों को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा फैलाए जा रहे कथित भ्रम पर भी विपक्ष पर निशाना साधा। जामिया मिलिया इस्लामिया के शिक्षा संकाय के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज के सहयोग से 3 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का विषय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा उभरती हुई तकनीक था। इसका उद्देश्य शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और प्रशिक्षु शिक्षकों की तकनीकी और शिक्षण क्षमताओं को बढ़ाना था, साथ ही उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदलती तकनीकों को समझने और उनका प्रभावी तथा रचनात्मक इस्तेमाल करने के लिए तैयार करना था। कार्यक्रम में करीब 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें सेवारत और भावी शिक्षक, स्नातकोत्तर विद्यार्थी तथा शोधार्थी शामिल थे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लोगों से रिहायशी इलाकों से गुजरने वाली एलिवेटेड मेट्रो लाइनों के आसपास पतंग न उड़ाने की अपील की है। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि ये लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।
5: दिल्ली मेट्रो के अनुसार मेट्रो की ओवरहेड बिजली लाइनों में 25,000 वोल्ट का करंट होता है। इनके सीधे या अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से जान जा सकती है। पतंग की डोर ओवरहेड उपकरणों में फंसने से बिजली की आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। इससे मेट्रो ट्रेनों और पेंटोग्राफ को नुकसान पहुंचने के साथ ही सेवा प्रभावित होने की आशंका रहती है। दिल्ली मेट्रो ने विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर

0: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धातु वाले मांझे से पतंग न उड़ाने की सलाह दी है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने कल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनजर सुरक्षा और आम जनता की सुविधा के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यातायात पुलिस ने कहा कि कल सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक लाल किले के आसपास यातायात पर पाबंदियां और डायवर्जन लागू रहेगा। साथ ही सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आने जाने की अनुमति दी जाएगी। इन रास्तों में नेताजी सुभाष मार्ग, लुथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और लिंक रोड सहित अन्य सटे हुए रोड शामिल हैं। यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग के रूप में अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कमल अतातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, 11 मूर्ति मंदिर मार्ग, NH 24 तथा NH 9 निजामुद्दीन खट्टा, बारापुला रोड और रिंग रोड सहित GT रोड, ISBT कश्मीरी गेट का उपयोग करने को कहा है। वहीं आज रात 12 बजे से कल सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन खट्टा और वजीराबाद ब्रिज के बीच माल ढोने वाले वाहनों को आवाजाही की इजाजत नहीं होगी। यातायात पुलिस ने लोगों से अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लेने और आखिरी समय में होने वाली परेशानी से बचने के लिए जल्दी निकलने की अपील की है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं प्रशांत कुमार।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजिट लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने पीपल फॉर एनिमल्स, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और वन एवं वन्य जीव विभाग के साथ मिलकर जामा मस्जिद स्थित कबूतर बाजार में संयुक्त छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान अलग अलग दुकानों से 863 पक्षियों और जानवरों को बरामद कर बचाया गया। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ऋषि कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि बाजार की 5 से 6 दुकानें जानवरों और पक्षियों के अवैध कारोबार में शामिल हैं।
3: रेड के दौरान 800 से अधिक बर्ड्स और एनिमल्स वहां से रेस्क्यू किए गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से हमें ये पता चला कि 460 के आसपास ऐसे एनिमल्स हैं जो कि शेड्यूल 2 में सेल और परचेज के लिए बैंड हैं। इसी के साथ साथ 400 से अधिक ऐसे एनिमल्स मिले जिनको अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा गया था और उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत खराब थी।
1: दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 92 रन बना लिए हैं। वहीं कल हुए मुकाबले में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने वेस्ट दिल्ली लायंस को 8 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में कल 2 मुकाबले खेले जाएंगे। और मौसम। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा, हालांकि कई क्षेत्रों में बारिश हुई। आज का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल बादल छाए रहने के साथ ही कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा के मॉनसून सत्र को बेहद सफल और उत्पादक बताया। कहा, सदन में 13 घंटे 19 मिनट की कार्यवाही हुई। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 को आगे की कार्यवाही के लिए मंजूरी दी। दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कर्तव्य पथ से तिरंगा यात्रा को रवाना किया। और दिल्ली यातायात पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनजर यात्रा परामर्श जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीटर वेव 366.3 मीटर यानी 810 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं और श्रोताओं, ये वक्त है फिल्म संगीत

0: ना, मतलब आप अपने दांत के साथ और अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
1: ओह माय गॉड, कई बार ये होता है ना सर कि छोटे छोटे हम ऐसे ही किसी के पास भी चले जाते हैं, कुछ झोला छाप के पास भी चले जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, तमाम जानकारियों के बीच एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आजकल आपको पता है हमारे सभी लोगों का लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं बहुत चेंज हो गया है एंड खान पान भी बहुत बदल रहा है लोगों का, स्पेशली आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो आजकल जैसे जंक फूड एकदम से ना बहुत छाया हुआ है लोगों के दिमाग में, जहन में, तो क्या इससे भी हमारे दांतों की सेहत पे कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ता है?
0: जंक फूड आपके पूरे सिस्टम को खराब करता है। जनरली जंक फूड क्या है, वो स्टिकी फूड होता है,
1: Correct.
0: तो वो दांतों में ज्यादा चिपकता है,
1: Exactly.
0: उसको साफ करना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब जो ट्रेडिशनल फूड है उसके मुकाबले दांतों से ज्यादा चिपकता है, तो उससे कैविटी होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है।
1: Okay.
0: इतना नुकसान है, बाकी जो आपके सिस्टम को आपके डाइजेशन को नुकसान है वो एक अलग चीज है।
1: ओके okay. अच्छा जैसे बहुत सारे लोगों के दांतों में आपने देखा होगा येलोपन आ जाता है, तो वो येलोपन मतलब किस वजह से बनता है वो येलो परत, क्या वो लाइफ में कभी हटेगी या नहीं? जैसे कुछ लोगों का मिथ हो जाता है कि कभी हटेगी नहीं, आप कितनी ब्रश कर लो कितनी ब्लीचिंग करा लो,
0: दांत कभी भी व्हाइट नहीं होते।
1: ओके
0: okay. वो थोड़े से पीले होते ही है, ठीक है, अंदर डेंटिन होती है, वो बिल्कुल येलो होती है, उसके ऊपर हमारा इनेमल होता है।
1: ओके okay.
0: तो इनेमल की थिकनेस के ऊपर उस दांत का कलर डिपेंड करता है।
1: ओके
0: और ये कलर आदमी के स्किन के कलर पे भी डिपेंड करता है।
1: ओके
0: ठीक है, जैसे कोई ब्लैक आदमी है, मतलब जो अफ्रीकन है, उनके दांत हमेशा आपको सफेद ही दिखाई देंगे, चाहे वो व्हाइट है चाहे येलो है। और उसके कंट्रास्ट अगर आप किसी व्हाइट पर्सन को देखो, किसी अंग्रेज को देखो, ठीक है, उस दांत आपको हमेशा पीले दिखेंगे, क्योंकि वो तो इतना व्हाइट है, उससे ज्यादा व्हाइट उसके टीथ हो ही नहीं सकते। इसके अलावा अगर दांत गंदे, अगर वो गंदगी की वजह से पीले हैं, तो उस गंदगी को साफ करके दांतों को साफ किया।
1: अच्छा मतलब तो उसके लिए आपको रेगुलरली ब्रश और हाँ। इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप नीम की दातुन करो, दातुन चबाओ, ये ब्रश से अच्छी होती है, तो आपका क्या सजेशन होगा?
0: सर नीम की दातुन मसाज कर सकती है, वो ब्रश नहीं कर सकती।
1: वही ना, कई लोग उसको चबा के उसका फूल बना के ब्रश करने की कोशिश करते हैं।
0: बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, नीम की दातुन बहुत बढ़िया है, नीम की दातुन आपने पूरी क्रश कर दी तो वो इतनी सॉफ्ट होती है, वो दांतों के बीच में जाके साफ ही नहीं कर सकती,
1: इनफैक्ट फंस और जाएगी, छोटी छोटी होती है वो फंस जाती है, तो मतलब ब्रश का इस्तेमाल करना है।
0: एग्जैक्टली ब्रश से साफ
1: मिला के। तो दोस्तों देखिए, जागो श्रोताओं जागो, अब ब्रश करने की बारी, आप जो है एक्सक्यूज़ मत दो, सुबह हो या शाम ब्रश करना जरूरी है, ये एक छोटा सा है काम सर। सो डॉक्टर साहब, आपसे तमाम सारी बातें हम कर रहे हैं, दांतों की हेल्थ के ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, तो आप बताइए सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है, अभी ये जानना बहुत जरूरी है। आपकी वाइब चेक कर लेते हैं, आप रेडियो स्टेशन में बैठे हैं, एंटरटेनमेंट की फील्ड है।
0: नहीं डेफिनेटली, मतलब इट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बीइंग हियर, और आपका मतलब मैं सुनता ही था, आज मैं आपको साक्षात देख रहा हूँ, तो
1: सर,
0: ऐसी फीलिंग आ रही है, लग रहा है कि नहीं यार आपका काम भी काफी हार्ड है, मतलब इट्स नॉट सो सिंपल।
1: एग्जैक्टली
0: ठीक है,
1: मतलब चैलेंजिंग भी है आई थिंक।
0: एग्जैक्टली, मतलब आपको जनता की नब्ज पहचाननी है, ठीक है, जो दूसरा बंदा आपके सामने उसकी भी नब्ज पहचाननी है, मतलब यू शुड हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, जो मैं देख रहा हूँ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सर जिस काम को आप करते हो ना, वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली करते चले जाते हैं, तो अपग्रेड होती चली जाती है।
0: Exactly.
1: आप दांतों के डॉक्टर हैं, हम रेडियो के डॉक्टर हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, नो डाउट। सो वेल, आगे बढ़ेंगे सर, एक और क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे लोगों के दांत खराब हो जाते हैं, तो फिर उनको ये लगता है कि अभी किसी काम के नहीं रहे हैं, और वो कहीं बड़े डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, कहीं ऐसे बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर लोग आज भी इतने अवेयर नहीं है, तो अगर किसी वजह से किसी के दांत खराब है या कोई दिक्कत परेशानी है दांतों में, तो उसका बेसिकली सही तरीका क्या होगा?
0: सर अगर किसी के दांत खराब हो गए हैं, तो पहले तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उसको इलाज करके सही कर लें, क्योंकि नेचुरल के जैसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, वो नेचुरल खराब होने के बाद भी अगर वो सही हो सकता है तो आपके लिए वो सबसे अच्छा है। बट अगर आपका दांत किसी भी कारण से उखड़ गया है, तो अभी बहुत सारी नई टेक्निक आ गई है, ठीक है, आप ब्रिज लगवा सकते हैं, और ब्रिज में क्या है, आपको साइड वाले दांत घिसवाने पड़ते हैं, दांत घिसने का मतलब दांत का नुकसान होना। बट एक दूसरा तरीका है जो आजकल बहुत पॉपुलरली है, काफी पॉपुलर है और चल भी रहा है, डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट देखिए नेचुरल जैसा ही है, नेचुरल नहीं हो सकता, बट आपको उससे बिल्कुल नेचुरल जैसी फीलिंग आएगी, और बहुत सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है, जरा सा हल्का सा चीरा लगाते हैं, ड्रिल करके लगा देते हैं, और बिल्कुल नेचुरल जैसा दिखाई देता है, और आप उससे कुछ भी चबा सकते हैं।
1: ओके
0: इम्प्लांट लगाने में कोई दर्द नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती है, और आपके दांत बिल्कुल नेचुरल जैसे ही दिखाई देंगे, बशर्ते वो जो लगाने वाला है वो एक एक्सपर्ट होना चाहिए, वो अनुभव वाला डॉक्टर होना चाहिए,
1: एक्सपीरियंस होल्डर।
0: एग्जैक्टली
1: ओके,
0: वो सारा स्किल का खेल है, अगर आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपका ट्रीटमेंट भी मतलब बोलेगा, लगेगा कि नहीं यार, मतलब वो नेचुरल जैसा दिखाई देगा। इंडिया में दांतों की थोड़ी सी मतलब वैल्यू कम है लोगों को, उनको लगता है कि बिना दांत के भी सारी चीजें हो जाती है, ऐसा नहीं है। एक आदमी को अगर दांत नहीं है तो वो खाना चबा के नहीं खाता, खाना चबा के नहीं खाएगा तो उसका पेट खराब होगा, उसका पेट खराब होगा तो वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाएगा, वो फिजिशियन के पास जाएगा और वो पूरी उम्र पेंटाप्रोजोल, ठीक है, रेविप्राजोल या वो गैस वाली दवाइयां पूरी उम्र खाता रहेगा,
1: खाता रहेगा, करेक्ट।
0: तो दांत का काम तो दांत ही करे, पेट नहीं कर सकता, उसकी एक लिमिट है कब तक करेगा।
1: बिल्कुल सर।
0: और जैसा सभी जानते हैं कि भाई जो डाइजेशन है वो 50-60% ओरल कैविटी में ही हो जाता है, जब आपके दांत खाने को अच्छे से चबाएंगे, सलाइवा आके मिक्स होगा, बहुत सारे एंजाइम उसमें मिक्स होंगे तो डाइजेशन आपकी ओरल कैविटी से शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। अगर आपके मुंह में दांत नहीं है तो वो वाला काम हो नहीं रहा है, उस काम के लिए फिर पेट पे डिपेंड रहना पड़ेगा, पेट वो काम कर नहीं पाता तो अल्टीमेटली आपको गैस कब और इन सब चीजों से गुजरना।
1: ओके, सो श्रोताओं छोटी छोटी बातें हैं एंड आई एम श्योर ये बहुत काम की होंगी, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डॉक्टर साहब जाते जाते मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे, बहुत छोटा सा सवाल है, जैसे छोटे बच्चों के बारे में आपने बात करी थी अभी कि ब्रशिंग उनका टाइम बेसिकली, तो कई बारी ना बच्चों के ब्रशिंग के साथ साथ उनका जो नेचुरल लाइट होता है वो भी हमारे दांतों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारा नेचुरल खान पान जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी दांतों की हेल्थ के लिए, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो।
0: देखिए सर, नेचुरल तो हमेशा बेस्ट होता है, लेकिन
1: स्पेशली जैसे दांत के कुछ लोग कहते हैं, मैं आपको बीच में कि दूध ले सकते हो कैल्शियम, दांतों के लिए बहुत जरूरी होता है, तो इस तरह की कुछ
0: नहीं, दांतों के लिए कैल्शियम रिच डाइट या मतलब आयरन कैल्शियम ये सारी चीजें जरूरी हैं, वो आपके बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए भी जरूरी है और दांतों के लिए भी जरूरी है, ठीक है, बट न्यूट्रिशन के लिए पहले दांत होने चाहिए।
1: ओके बिल्कुल सही बात है,
0: ठीक है, अगर आप चबा के ही नहीं खा पाओगे तो न्यूट्रिशन कैसे प्रॉपर होगा। बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है तो दूध के दांत निकल जाएंगे, अगर ऐसी बात थी तो नेचर ने क्यों दिए।
1: सही बात है,
0: भगवान ने, कुदरत ने, अल्लाह ने क्यों दिया, इनको जरूरत है,
1: जरूरत है, करेक्ट।
0: जब तक परमानेंट दांत नहीं आ जाते तब तक इनकी जरूरत है, तब तक बच्चा उन्हीं से खा रहा है, तो उनकी केयर करना भी जरूरी है। बच्चे के दांत में एक बार दर्द हो गया तो किन मानी वो नहीं खाएगा,
1: करेक्ट,
0: ठीक है, आपने उसको मेडिसिन दे दी, दर्द बंद हो गया, आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए, बट उसको कंटिन्यूअसली दर्द हो रहा है, तो वो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, उसके बाद बोलना भी छोड़ देगा, बट वो उधर से चबाना भी छोड़ देगा, ठीक है, और अगर यही कंडीशन दूसरी साइड भी होगी तो बिल्कुल ही चबाना छोड़ देगा, वो चबाने वाली चीज जो है वो खाएगा ही नहीं। और यकीन मानिए अगर बच्चा चबा के नहीं खा रहा है तो उसके जबड़े की ग्रोथ भी नहीं होगी।
1: अच्छा, और सर जब चबा के खाना खाते हैं तो उसके रिजल्ट भी बेहतर मिलते हैं।
0: एग्जैक्टली,
1: तो थैंक यू सो मच, आपने तमाम जानकारियां दी आज हमारे सुनने वालों को, और ये जो इन्फॉर्मेशन है तमाम लोगों तक बहुत हेल्प करने वाली है। सो सर जाते जाते कोई एक अपनी तरफ से एक सबकी दांत स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और दांतों की हेल्थ के लिए कोई एक अच्छा सा,
0: सिर्फ एक ही मंत्र है, सफाई, ओरल हाइजीन, उसके लिए आप दोनों टाइम प्रॉपरली ब्रश कीजिए, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, साल में एक बार अपने डेंटिस्ट को जाके चेकअप करा लीजिए, क्योंकि अगर कोई परेशानी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा।
1: ओके,
0: वो सिर्फ आपका डेंटिस्ट ही चेक करके बताएगा कि इस दांत में ये परेशानी है और उसका समय से इलाज हो जाएगा।
1: अरे वाह, क्या बात है। सो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने भी इस इन्फॉर्मेशन को सुना, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमें अपने मैसेज जरूर पहुंचाइएगा, अपने फीडबैक, आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। हमारा नंबर बहुत सिंपल है 9837896896, और ऐसी तमाम सारी जानकारी आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला रेडियो FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सर कुछ और कहना चाहते हैं आपसे, मुझे बात करके बहुत मजा आया, मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं भी आपको फ्री कर दूं, लेकिन ज्यादा लंबा आप कर भी नहीं सकते हैं।
0: नहीं नहीं, सेम यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुरादाबाद आके, तो इट वाज ए नाइस एक्सपीरियंस एंड आई विल रिमेंबर इट।
1: थैंक यू सर, और मुझे लगता है कि कुछ चीजें ना बात के लिए भी छोड़नी चाहिए, कुछ आज ही पूछ लेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं,
1: तो जल्दी सर से फिर वापस मिलेंगे, आप कहीं मत जाइए, अच्छे गानों के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद। थैंक यू सर, FM मुरादाबाद और RJ आनंद आपका दिल से शुक्रिया करता है सर।
0: थैंक यू
1: सर, थैंक यू सो मच।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: माना वो हर किसी से कम बोलती थी। माना वो हर किसी से कम बोलती थी, हाथ छूटा तब पता चला वो दो और को हम बोलती थी।
1: हेलो जी, कैसे हालचाल है? मेरा नाम आरजे आनंद है। इस वक्त आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, यह है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम को अमेजिंग बनाने के लिए हमारे साथ एक बड़ा ही फॉन्ट न्यूज बंदा स्टूडियो में है। एंड जब ये स्टूडियो आने वाले थे तो इनके आने से पहले मेरे को एक ऐसा थॉट आ रहा था कि कोई बड़ा सा बंदा आएगा, बहुत बड़ा सा होगा, भारी भरकम टाइप का, यू नो, एकदम से कुछ बड़ी बड़ी किताबें लाएगा। लेकिन जब मैं इनसे मिला तो ये तो बिल्कुल मेरी सेम एज का, मतलब मेरी ग्रुप का बंदा, मेरी एज का बंदा, बिल्कुल मेरी तरह है, एकदम फिट एंड फाइन, एकदम बढ़िया सा। सो हे, हाउ आर यू, कैसे हालचाल है ब्रो? अब जरा इनसे आपको तारीफ कराते हैं और आज ये क्या लेकर आए हैं ये मैं नहीं यही बताएंगे, आज आपको ये क्या स्पेशल सुनवाने वाले हैं। एंड आई एम श्योर ये कॉन्वर्सेशन में ना आपको बहुत मजा आने वाला है एंड आप बहुत सारा एंजॉय करने वाले हो। सो सबसे पहले वेलकम करते हैं हमारे आज के अमेजिंग गेस्ट का, जिनका नाम है हर्ष। हर्ष जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप जैन साहब?
2: बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया हूँ। एंड I also looking forward for this great conversation, right? मैं भी expect करूंगा कि जो सामने वाला सुन रहा है उसको भी fun आए and they're gonna enjoy it.
1: Absolutely.
2: Here with a lot of one-liners and a very good story to tell you about the startups and yes.
1: क्या बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, इतनी बढ़िया बातें आप कर रहे हो तो ये कहीं सोच साच के आए हो या बस अपना शुरू से चलता आ रहा है ऐसा कुछ?
2: नहीं, इट इज वेरी मच स्पॉन्टेनियस। लाइक मैं जब आया था तो मैं बस यही सोच के आया था कि ठीक है, जाएंगे, जो कॉन्वर्जेशन होगी उसमें जो मेरा पीओवी होगा हम वो रखेंगे एंड वील बिल्ड द कॉन्वर्जेशन देन एंड देयर ओनली।
1: वेरी नाइस यार, मतलब ये बंदा मुझे लगता है कि फुल ऑन तैयारी से आया कि भैया लिख के कुछ नहीं जाएंगे, जो रैंडम होगा उसको रैंडम ही उसका आंसर्स करेंगे, राइट? क्रिएटिविटी के साथ।
2: यस,
1: दैट्स वेरी ग्रेट। थोड़ा सा अपने बारे में हर्ष बताओ, मुरादा बाद में आप कहां से हो, क्या करते हो?
2: सो मैं मधुबनी कॉलोनी में रहता हूं एंड वी हैव अ फैमिली बिजनेस। वी हैव टू शॉप्स नेम्ड जेनसन्स एंड वल्लभ गारमेंट्स। एंड मैं 2024 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आई वर्क्ड इन अ स्टार्टअप फॉर 6 मंथ्स वेयर इन आई पेड ₹20,000 टू देम टू वर्क एंड got nothing out of then in some par mere aur allegations aa gaye the, that is a very good story, I'll tell you in the conversation. And after that I worked in my brother's company and now I'm working with in my family business and side by side I'm doing this comedy part and content creation.
1: All right, that's great. अच्छा ये स्टोरी तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा भाई, क्योंकि मुझे लगता है कुछ कुछ स्टोरीज ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ना एक मोटिवेशन का काम करते हैं, यू नो, कई बार वो हमें बहुत सारी चीजों से बचा भी लेते हैं।
2: यू
1: गेटिंग माई पॉइंट? सो उस पर डेफिनेटली बात करेंगे अभी हर्ष से। लेकिन हर्ष, अभी तुम यहाँ पे आए हो तो ऑफकोर्स ये जो कॉन्वर्सेशन है बेसिकली इट्स नॉट अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। यहाँ पे हम कुछ जोक्स करते हैं, कुछ शेयर करते हैं, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो सकता है जो आपको यू नो अच्छा है, आपके अंदर है, आपके टैलेंट की कुछ अलग पहचान हो, बिकॉज यहाँ पे वही लोग आते हैं क्योंकि तुर्रम खा होते हैं और आई एम श्योर आप भी वो हो, इसलिए आप यहाँ पे आए हो। तो वैसे आप अपने अगर पर्सनल की मैं बात करूँ तो तुम कौन सा तुम्हारा जोनर है, क्या तुम करते हो बेसिकली, मतलब शेरो शायरी पोएट्री या जो कॉमेडी, क्या क्या मतलब आप करते हो?
2: मैं कॉमेडी करता हूँ, वन लाइनर्स मेरा एक वो है कि हाँ कोर है, ठीक है। एंड इंस्टेंट मैं राइट आई राइट सेट्स, मैंने कई बार परफॉर्म भी करा है ओपन माइक्स में, मैंने शोज भी करे हैं अपने पर्सनल, ठीक है। दोज वर नॉट वेरी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बट यस दे वर गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो इन टू शेरो शायरी, आई राइट अ फ्यू शेरो शायरीज एंड दैट्स इट।
1: अच्छा कहीं ओपन माइक वगैरह करते हो कुछ ऐसा?
2: या आई हैव डन मल्टीपल ओपन माइक्स।
1: दैट्स ग्रेट। अच्छा तो हर्ष के साथ ना कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट बैक, एक अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे, फिर हर्ष के साथ जो है कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और ये क्या आज आपको सुनाने वाला है, कैसे आपको हंसाने वाला है, वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आज हर्ष का होने वाला है, नॉट मी। हाँ मैं सपोर्ट में रहूंगा बट सारी कॉन्वर्सेशन को हर्ष हैंडल करेंगे। सो अभी मिलते हैं एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद वी कम बैक।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। आप आनंद के साथ हैं ऑफ कोर्स, एंड आई हैव विद मी हर्ष जैन। हाय हर्ष, वेलकम बैक यू वंस अगेन ब्रो। आपको बोरिंगनेस फील तो नहीं हो रही ना? एकदम बोरिंग शोरिंग तो नहीं लग रहा ना आपको यहाँ पे?
1: बिल्कुल भी नहीं,
0: होना भी नहीं चाहिए यार, बिकॉज ये एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है यार। यहाँ पे हमें फन करना है, एंजॉय करना है, ढेर सारे गाने हैं, म्यूजिक है, मस्ती है, तो मुझे लगता नहीं है कि यार आपको एंजॉय करने में मजा नहीं आ रहा होगा। टेल मी,
1: इट्स गोइंग गुड एंड होपिंग फॉर ग्रेट अहेड।
0: या श्योर। अच्छा तो हर्ष, अभी कुछ सुना दो यार। मैं चाह रहा हूँ यार, आजकल ना धोखे शोके बड़े मिल रहे हैं, चाहे वो प्यार श्यार में हो या इंस्टाग्राम पे एवे किसी फ्रेंड के साथ हो, तो आजकल ये धोखाधड़ी वाला सीन बहुत ज्यादा हो रहा है यार। तो इस पे कुछ है तुम्हारे पास, कोई बढ़िया सी पोएट्री या कोई शायरी?
1: बिल्कुल है। सो आई विल टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी, राइट? मैं जब कॉलेज गया था ना, सो आई एम सिंगल फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स। मैं स्कूल में भी सिंगल था, मैं आज तक की डेट में सिंगल हूँ, बट
0: मैं तो अखंड सिंगल हूँ भाई।
1: Same goes with me. एंड मीन वाइल ना, मुझे एकदम जैसे हमारे ग्रुप में सब लोग रिलेशनशिप्स में आ गए थे, तो मुझे भी लगातार रिलेशनशिप में आना चाहिए, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग अटेम्प्ट्स। एंड यू विल बी लाफिंग लिसनिंग टू दिस, मेरे को 6 अटेम्प्ट्स लगे गर्लफ्रेंड बनाने में।
0: Oh my God,
1: राइट? एंड मैं तब ये सोच रहा था 5 में सीए हो जाती है कंप्लीट, और मैं 6 में गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ, इससे अच्छा मैं बीबीए क्यों कर रहा हूँ, फिर मैं सीए कर लेता यार, दैट वुड हैव बीन अ लॉट इजी।
0: ट्रू ट्रू।
1: एंड उसने भी ना धोखा दे दिया, वो पता नहीं किसी और के साथ चीटिंग वगैरह कर रही थी एंड स्टफ। तो हम लोग का लगभग 7-8 दिन के बाद वो रिवील हो गया, ठीक है? तो फिर जब भी कोई प्यार मोहब्बत तैयारी करता है ना, तो मैं उसको 2 लाइन अपनी बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़का धोखा दे जाता है। आई एम नॉट, इट्स वेरी जेंडर न्यूट्रल, बट मैं इसमें कहना चाहूंगा, मैंने 2 लाइनें लिखी थी है, कि माना वो हर किसी से कम बोलती थी, माना वो हर किसी से कम बोलती थी, हाथ छूटा तब पता चला वो 2 और को हम बोलती थी।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: उसने इतना ऐसा धोखा दिया ना कि दीस लाइंस हैव स्टेड विद मी फ्रॉम देन एंड ऑनवर्ड्स।
0: ऑलराइट, बट प्लीज यू कैन रिपीट दिस लाइन, मैं दोबारा से इसको सुनना चाहता हूँ।
1: तो लाइन ऐसी थी, माना वो हर किसी से कम बोलती थी,
0: वाहना वो हर किसी से
1: कम बोलती थी, हाथ छूटा तब पता चला वो 2 2 और को हम बोलती,
0: 2 और को भी हम बोलती थी। वाह वाह वाह वाह। इस स्टोरी का, इस लाइन का मतलब क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हो?
1: सी, बहुत लोग कहते हैं ना कि यार जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो तो वो दूसरे लोगों से कम बात करता है, वो आपसे ज्यादा अटैच्ड होता है। मैंने भी मान लिया, मेरी वाली भी दूसरों से कम बोलती थी इन फ्रंट ऑफ मी, और जैसे ही मैंने उसका हाथ छूटा ना, सो व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप यू डोंट कॉल आई, यू कॉल हम, राइट? हम अपनी बात नहीं करते ना, मेरी, हम कहते हैं हमारी, राइट? तो वो भी जब हाथ छूटा तब पता चलता था वो खाली मुझे नहीं, वो 2 और लोगों को हम बोलती थी।
0: ऑलराइट,
1: सो दैट इज हाउ इट वेंट।
0: ऑलराइट, मतलब अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा पिक्चर की बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है। एंड आई डोंट थिंक, यार मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें ना बहुत सारे लोगों के साथ होती है, नॉट यू नॉट मी, एंड बहुत सारे ऐसे लोग जब स्कूल्स में जाते हैं, जहाँ कॉलेजेस में जाते हैं, तो हमें लगता है कि यार अब हमारी लाइफ में सब कुछ मिल गया है हमें।
1: yeah.
0: जब उस पहले इंसान को देखते हैं और हमारे अंदर दिल के अंदर तोते तोते वाले तार बजते हैं, तो हमें लगता है बस यही सब कुछ हमारा, एवरीथिंग इज मी फॉर मी, मेरे लिए वो है ना, बट बाद में पता चलता है कि नहीं भाई,
1: वो किसी और के लिए भी है।
0: हम गलत फहमी में है,
1: डेफिनेटली।
0: बिल्कुल,
1: ये तो बहुत होता है, एंड आई हैव सीन दैट सो मेनी टाइम्स। मेरे जब मेरा फिर ब्रेकअप हुआ तो फिर सब मेरे पूरा,
0: मतलब इस लड़के का ब्रेकअप भी हो गया भाई, आप सोच रहे हो ये कैसे?
1: दैट वाज इवन लेस देन अ सब्सक्रिप्शन पैकेज, मेरा सब्सक्रिप्शन आप कोई ले जाओ, ट्रायल भी आजकल 10 दिन का होता है, मेरा रिलेशनशिप 7 दिन का था।
0: आई कांट बिलीव दिस कि भैया आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हैं, सोचिए हम अभी भी अखंड सिंगल है।
1: मेरा ट्रायल पैक खत्म होने से पहले ब्रेकअप।

0: ओ भाई साहब, मतलब तुम्हारा थोड़ा तगड़ा वाला था, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है. सी, अच्छा, यू नो हर्ष, ऐसे बहुत सारी कॉन्वर्सेशन में हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं, हम लोग उनसे बात भी करते हैं. हर किसी की लाइफ में कोई ना कुछ ऐसा होता है कि किसी की लाइफ में पहला प्यार होता है. तो आपको कैसे पता लगा कि आपका ये यू नो फर्स्ट टाइम वाला है? यू नो
1: फर्स्ट टाइम वाला भी द सिचुएशन वॉज समथिंग लाइक कि उसने मुझे सामने से प्रपोज किया था. देन मैंने
0: कितने
1: कहा,
0: साल के थे जब तुम्हें ये प्रपोजल वाले यू नो पिक्चर्स और ये आने लगे?
1: मेरे को आज तक नहीं आया, मुझे बस
0: सिग्निफिकेशन आया तुम्हें कोई ऐसा?
1: नहीं, मुझे आज तक बस एक ही लड़की ने अप्रोच करा है, मैंने उसको हाँ बोल दिया था एंड वो 7 दिन बाद उसने धोखा दे दिया. मेरे को लगता है शायद इसीलिए धोखा दे दिया.
0: अच्छा, तुम इस बात को मानते हो यू नो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है?
1: डेफिनेटली यस.
0: अगर सपोज दैट वो 7 दिन के बाद ना देके 7 सालों बाद देगी तो सब ज्यादा दुख होता है,
1: तो ज्यादा दुख होता
0: है ना. 7 दिन में दे दिया तो एटलीस्ट रियलिटी
1: पता लग
0: गई. एंड आई थिंक अगर हम अभी भी सिंगल है तो अपनी लाइफ में हम बहुत हैप्पी है.
1: डेफिनेटली
0: यू नो सेटिस्फाई है अपनी लाइफ से कि ठीक है यार सिंगल है बट आई थिंक हैप्पी है.
1: मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए.
0: Absolutely. और जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है.
1: Definitely.
0: इसे चक्कर में फिर अब जो है ना बेवकूफ बनते रहते हैं कई बार. सो गाइज, आपको वो चीज नहीं करनी है. एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो भैया पहले रिसर्च करो, उसके बाद ही जो है किसी की तरफ आप हाथ बढ़ाओ. वेल, आगे बढ़ते हैं, हम एक गाने की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद लौट कर आएंगे स्टेशन ऑफ द नेशन पे. आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6.

0: रिसेंटली एक रिसर्च हुआ था और उसमें ना एक फैक्ट चेक किया था, तो रियलिटी चेक में पता लगा कि जिनकी बड़ी हाइट होती है ना, उनकी रात को सोने से पहले हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है। एंड जब मैंने ये रिसर्च किया तो मुझे लगा नहीं यार, ये तो मुझे खुद पे अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद ही मैं इस पे यू नो ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो आज रात को मैं अपनी हाइट सोने से पहले जरूर नापूंगा, बट उसके लिए फिर मुझे सुबह में भी नापनी पड़ेगी ना यार, तो वो कल वो प्रोसेस मैं फॉलो करूंगा। बट उससे पहले मैं, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन भी है और एक रिसर्च भी है, तो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए, क्योंकि अभी हाइट के ऊपर कुछ सुनने वाला हूँ मैं हर्ष से, तो मुझे लगा पहले आपको ही काम की बात बता दूं। हर्ष, आपको पता है ऐसा कुछ फैक्ट और रिसर्च?
1: यार हाइट से तो मैंने बात करना छोड़ दिया, बिकॉज हाइट इज द ट्रॉमा फॉर मी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा रिसेंट ब्रेकअप हुआ, मतलब रिसेंट क्या, मेरा एक लौता रिलेशनशिप ब्रेकअप ट्रायल बैकअप
0: सब कुछ एक ही था,
1: वो सब कुछ एक ही था। और वो भी जो हुआ ना, उसका कोर रीजन जो था, कोर रीजन भी ये था कि इसने, उसने स्टार्टिंग में ऐसा बोला कि इंटेलेक्ट बहुत कम है तुम्हारा, तुम ना बातें अच्छी नहीं करते, तुम ना ठीक से नहीं रहते, एंड ऑल। तो मैंने कहा यार ये सब तो पहले भी था, सो यू स्टार्टेड लाइकिंग मी फर्स्ट, है ना, तो ये सब तो पहले से था। सो देन शी सेड यार अब क्या रीजन लाऊं, तुम्हारी ना हाइट मुझसे कम है।
0: ओह माय गॉड,
1: एंड दैट हिट मी सो हार्ड, सो फकिंग हार्ड, कि मैं सोच रहा हूँ यार ये तो गलत हो गया। एंड ऑनवर्ड्स मैंने फिर हाइट पे बात करना ही छोड़ दिया। मैं कहता हूँ ठीक है, आपकी हाइट मेरी हाइट, मेरी हाइट।
0: एब्सोल्युटली, और वो मुझे लगता है कि इस पे तो जजमेंट होना भी नहीं चाहिए यार।
1: डेफिनेटली
0: आई थिंक ये तो हमारे और आपके हाथ में है ही नहीं यार।
1: हाँ,
0: है ना, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो ऊपर वाला डिसाइड करके भेजता है
1: बस, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं।
0: आप अपनी हाइट बढ़ाने के लिए जरूरी थोड़ी ऊंची ऊंची हील्स पहन के जाओगे, तो हम थोड़ी बोल रहे हैं आपको यार,
1: वो बिना हील्स के मुझसे बहुत ऊंची थी।
0: अरे यार, तो फिर उसमें फिर आपको प्रॉब्लम, यू नो, आपने सोचने का और अपने फैसले में थोड़ी जल्दबाजी कर ली आई थिंक, मुझे ऐसे लगता है। गाइस, आप क्या कहते हो, आप जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन। वेल टेल अस, इसके ऊपर तुम कुछ सुनाने वाले, सो आई थिंक मुझे लगता है कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा, आई एम श्योर।
1: मैं आपको एक वन लाइनर, एक दो वन लाइनर से शुरू करते
0: हैं, डेफिनेटली।
1: नेम एन एक्ट्रेस, आनंद भाई आप मेरे को एक एक्ट्रेस का नाम बताओ जिनको कोई रास्ता नहीं मालूम होता।
0: यार सच बताऊं तो मुझे खुद को ही रास्ते नहीं मालूम होते, क्योंकि मैं मुरादाबाद में खुद नया हूँ, तो तुम एक्ट्रेस की बात पूछ रहे हो, मुझे बिल्कुल नहीं पता है यार।
1: कोई एक्ट्रेस, एक रैंडम गेस के, उन्हें आपको भी पूछ लो कि ये रास्ता कौन सा, उन्हें कोई नहीं पता।
0: ओके, सी आई थिंक अनन्या पांडे, उसको सब्जियों के नाम नहीं पता, तो उसको रस्तों के नाम कहां से पता होंगे।
1: अनन्या पांडे को पता हो सकता है, बट देयर इज दिस वन एक्ट्रेस नेम्ड दिशा पतानी।
0: दिशा पतानी, ओ
1: सो शी मस्ट नॉट बी नोइंग ऑल द रूट्स।
0: दिशा पतानी, ओ भाई कहां दिमाग लगा रहा है, क्या बात है यार, अल्टीमेट यार, अल्टीमेट। अच्छा, और ऐसा तुम्हें दिमाग में क्यों आया, यू नो, ये वाला?
1: सो देयर वाज दिस वन पिक्चर दे वर प्रमोटिंग, आई डोंट रिमेम्बर द नेम,
0: वेलकम टू द जंगल।
1: हाँ, वेलकम टू द जंगल। सो वहाँ पे मैंने उनको देखा, एंड जैसे ही मैंने उनको देखा ना, बिकॉज दे केम टू टॉयर, तो मैंने वहाँ जैसे ही उनको देखा ना, रियलाइज यार ये तो बहुत अच्छा जोक निकल के आ सकता है यहाँ से। सो दैट इज हाउ।
0: आप गए थे वहाँ पे?
1: नहीं।
0: अच्छा, आपने सोशल मीडिया पे देखा?
1: ऑन सोशल मीडिया।
0: ऑलराइट डन। सो यार लेकिन ये बड़ा अल्टीमेट था, मतलब इतना फॉन्टेन यूज कैसे हो सकता है बंदा, किसी एक्ट्रेस के नाम से जो मैंने और आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा, उसने तुरंत उसका दिशा पाटनी का दिशा क्या है?
1: पता नहीं
0: बताओ यार। अच्छा, और भी ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनके ऊपर आप ऐसे करते हो या फिर कभी किया ट्राई?
1: लेट्स मूव ऑन फ्रॉम सेलिब्रिटीज टू फ्रूट्स, ओके?
0: हाँ, टेल अस,
1: कौन सा फ्रूट कहता है कि जी मैं सबसे खड़ूस हूँ, मैं एकदम बिल्कुल
0: यार सच में मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इस मामले में बहुत खराब है, मैं बहुत ही, मेरी मतलब बहुत ही गंदी वाली आदत है कि मैं इन चीजों में थोड़ा कम रिसर्च रखता हूँ, बट अब आप ही मुझे सजेशन दो यार।
1: ओके, एनी रैंडम गेस
0: जो कहता है कि मैं सबसे ज्यादा
1: खड़ूस हूँ, अड़ियल हूँ, और मैं मतलब गुस्सेल रहता हूँ थोड़ा सा, ऐसा
0: ऐसा कौन सा फ्रूट हो सकता है गाइस? सीरियसली आई हैव नो आइडिया, मैं किसको बोलूँ, सारे फ्रूट्स तो इतने सॉफ्ट इतने प्यारे से होते हैं।
1: Shall I tell you the name? Yes.
0: तू बताए।
1: It's guava.
0: Guava.
1: I'll tell you ना, ask me why is so guava.
0: यार मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या क्या चूज करूँ, किसको क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई, तू बोल दे यार अपना जो।
1: बिकॉज गुआवा सेज अमरूद,
0: ठीक है? ओह, गुआवा इज,
1: गुआवा इन हिंदी इज अमरूद,
0: अमरूद, अमरूद,
1: अमरूद।
0: अमरूद मतलब इसने अमरूद को कर दिया आई एम रूट, ये मुझे लग रहा है कि जापान से तो नहीं आया गाइस, ये मतलब सारे फ्रूट्स को उल्टे से सीधे और सीधे से उल्टे लेके जा रहा है भाई, ये करने के कितने पैसे मिलते हैं आपको
1: अभी? तो मैं या फिर देता हूं
0: या फिर क्रिएटिविटी कर रहे हो अभी?
1: जस्ट राइटिंग, तुम
0: कहीं पे कुछ ज्वाइन वाइन किए हो क्या, ऐसे कॉमेडी डार्क कॉमेडी क्लास आप कर रहे हो?
1: जस्ट माई फेवरेट कॉमेडियंस मधुर वेल्ली, कविराज एंड रवि गुप्ता।
0: अच्छा, तो आप इनको देखते हो? अच्छा, मतलब यू नो
1: टू मच, आई जस्ट लव देम,
0: वेरी नाइस। तो गाइस ये जो कॉन्वर्सेशन है इसको हम इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे ऐसे ही, हर्ष के साथ ढेर सारी बातचीत हो रही है और होती रहेगी। फिलहाल अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हर्ष से भी हम इजाजत लेंगे, एंड आई एम श्योर आपको भी मजा आ रहा होगा। अगर आपके पास भी ऐसे अल्टीमेट टैलेंट है तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है एफ मुरादाबाद 89.6 के नाम से मिलता है ऑफिशियल आईडी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रियो वाला आनंद के नाम से आपको मिल जाता हूँ। अगर आपके पास भी कोई अच्छा टैलेंट है तो डेफिनेटली आप मुझे डीएम कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पे आप डीएम कर सकते हैं अपना नाम और अपना टैलेंट. हो सकता है अगला नंबर आपका हो. यार फिलहाल एक अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद वी कम बैक.
2: के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी.
3: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है. हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायोलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायोलॉज को एडॉप्ट किया.
2: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है. राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी. लोकसभा ने इसे कल पारित किया था. विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है. विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है. संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी. इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है. लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है. विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है. विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है. संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी. श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है.
4: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा. जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए.
2: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं.
5: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं. यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं. ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है.
2: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है.
6: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है. इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है. पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं. बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है.
2: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए. जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
7: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली है।
2: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
8: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
2: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक

रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। JPSC और JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजेन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश। की संभावना और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना शो दिल से दिल तक अखिल संग। तो ये जो अभी गाना प्ले हुआ था बॉर्डर 2 मूवी से, ये था नरेंद्र सर जी की फरमाइश पे। वो कह रहे थे कि आज बॉर्डर मूवी से कोई सा भी गाना सुना दीजिए। तो सर, हमने आपको बॉर्डर 2 से एकदम बिल्कुल लेटेस्ट गाना सुनाया, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है पास में, और कहते ना जैसे जैसे 15 अगस्त पास में आ रहा है तो दिल से एक ही आवाज़ निकल रही है कि साहब अपना जो देश है ना सबसे आगे है और सबसे ऊपर है। ये एक जो दिन है ये सिर्फ एक तारीख पे नहीं है, जो भी हमारा दिन कहते ना जब आता है तो हमें यह याद जरूर दिलाता है कि हम जिस आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं उसके पीछे लाखों लोगों का संघर्ष और हमारे सैनिकों की अनगिनत कुर्बानियां हैं। सीमा पर खड़ा एक जवान शायद हमें जानता भी नहीं, लेकिन हमारी हिफाजत के लिए अपनी नींद, अपना परिवार और कभी कभी अपनी ज़िंदगी तक दांव पर लगा देता है। तो दिल जो है ना, एकदम कहते हैं एकदम दिल से सलाम है साहब हमारे सभी जवानों को, हमारे हर उस सैनिक को जो देश के लिए खड़ा है। लेकिन आज एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से कि आर्मी तो देश के लिए अपना योगदान दे रही है, लेकिन क्या हम अपने देश के लिए कुछ ऐसा योगदान दे पा रहे हैं या कुछ ऐसा कर पा रहे हैं जो थोड़ा सा कहते हैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हमारा भी रहे? तो हमें मैसेज कीजिए और बताइए, या फिर कॉल कीजिए 9837896896 पे। कोई भी आपकी कहानी, कोई भी दिल से ऐसी निकली बात जो अपने आप जवानों के लिए कहना चाहे, या कभी कोई ऐसी घटना कि आप कहीं रास्ते में सफ़र कर रहे हों, जैसे मेरे साथ हुआ एक बार कि मैं एक बार सफ़र कर रहा था और गाड़ी बीच में ख़राब हो गई थी, तो हल्का सा इशू आ गया था कार में, और ऐसा मतलब कहते हैं ना कि गाड़ी तो चलानी आती है साहब, मगर थोड़ी बहुत ही तकनीकी पता है कि अगर कुछ ख़राबी हो जाए तो हो जाए, मगर बाकी नहीं पता। तो वेट कर रहे थे, कॉल करी कि कोई रोड असिस्टेंट मिले, मगर इस बीच एक ट्रक मेरे को आर्मी का ट्रक मिला और मैंने हाथ दे के उन्हें रोकने की कोशिश की, तो वो आगे जाके हल्का सा थोड़ा सा आगे आके रुके और एक बिल्कुल एकदम जवान एक उतर के आए जो उस ट्रक को चला रहे थे। उन्होंने पूछा मुझसे कि हाँ भाई क्या बात हो गई है, ऐसा क्या दिक्कत आ गई है? तो मैंने उन्हें अपनी जगह बताई कि ऐसे ऐसा हौसला, तो उन्होंने थोड़ा सा चेक किया और उसके बाद उन्हें भी थोड़ा लगा कि ये जो गाड़ी है इसमें कुछ और ही दिक्कत है, तो उन्होंने मेरी को अपनी गाड़ी के साथ टो करके मतलब इतनी हेल्प करी कि पीछे गाड़ी को एक रस्सी से बांध के और आगे मैकेनिक तक जाके छोड़ दिया। तो कहते हैं ना साहब, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके साथ भी कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि आपने एक प्यारा से सैल्यूट मारा हो ट्रक में जवान जा रहा हो और उसने भी वहाँ से प्यारी सी स्माइल आपको दे दी। तो करेंगे खूब सारी दिल की बात, और हमारे साथ एक लिसनर है, चलिए करते हैं उन्हें ज्वाइन, क्या कहते हैं वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या हाल चाल है साहब आपके?
1: बहुत बढ़िया है सर, आप सुनाइए।
0: बस बढ़िया, अपना नाम बताइए अभी हमारे सभी श्रोताओं को और बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं इस समय।
1: मुरादाबाद
0: जेठालाल जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है सर, आप सुनाइए।
0: बिल्कुल ही एक्टिव रहते हैं आपको, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज हमने दिन के शो में भी हमें जब खुशी जी शो कर रही थी तो आपका इंटरेक्शन हुआ था और हम उस समय स्टूडियो में ही थे, सुन रहे थे हम बात।
1: हमने आपका नाम लिया था?
0: नहीं नहीं सर, आपने नाम लिया है और वो भी, मगर मैं वही कह रहा हूँ आप बहुत एक्टिवली रहते हैं और अच्छा लगता है कि ऐसे लिसनर्स हैं हमारे साथ जो एफएम पे बहुत ही अच्छे एक्टिव रहते हैं। तो आज बताइए कोई, अब आपने आज दिन में तो शायरी सुनाई थी, आज जब शाम की भी कोई शायरी सुनाइए कुछ हमारे जवानों को डेडिकेट करते हुए, या 15 अगस्त नज़दीक आ रहा उसके संदर्भ में।
1: जी सर, पहले तो मैं ये गाने को सुना दूं।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
1: तो गाना सुनना है। जाल फिल्म का गाना है सर।
0: कौन सी मूवी का?
1: जाल, जितेंद्र की फिल्म, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म। जाल
0: जार
1: जार
0: जार जार जार
1: जार जे ए एल।
0: अच्छा जार। आप भी साहब पूरा जाल बिछाने की तैयारी में हैं, कोई ना कोई जाल बिछा ही देंगे आप भी, मुझे पता है।
1: मेरे दोस्तों घर मोहब्बत करो, बाद में ये देख लो, ये गाना है।
0: ए मेरे दोस्तों,
1: दोस्तों अगर मोहब्बत करो,
0: अगर मोहब्बत करो,
1: हाँ ये गाना था।
0: ठीक है साहब, और आप बताइए क्या कोई शायरी कह रहे थे आपको?
1: सर आप ना हो, आप हमारे फायर ब्रिगेड हैं, आपसे तो बिगड़ आपके राय तो हम चल ही नहीं सकते सर।
0: सुनाइए सुनाइए।
1: उसने मुझे धोखा नहीं दिया, उसने मुझे धोखा नहीं दिया, वो मुझे ये सिखा कर गया है कि सच्ची मोहब्बत की गलती दोबारा मत करना।
0: क्या बात है, क्या बात है साहब, आपने तो ऐसा उसमें सुनाई सैड मोमेंट, मुझे लगा कि आज कहीं आंसू ना निकला है।
1: अरे नहीं सर, हम तो कहें आंसू क्यों निकले सर, हम तो आंसू निकले तो उसमें आप तो हमारे फ्रेंड मेरे फ्रेंड हैं सर।
0: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात जेठालाल जी, आपका नाम बिल्कुल दोस्तों ने आपका जेठालाल बिल्कुल सही सोच समझ के रखा है, आप एकदम खुश नवाज बातें जो करते हैं
1: सर, आप लग रहा हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे थे सर।
0: सुन रहे थे, थोड़ी बहुत हमने ध्यान से सुनी थी आपकी बातें, और आपकी बातें बहुत पकड़ में आई थी कि जेठालाल जी इसलिए आपको जेठालाल नहीं कहते सब। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत रणवीर जी, आपका बहुत अच्छा लगा, आपकी कॉल आई और करते हैं आपकी फरमाइश पूरी, धन्यवाद।
1: ओके नमस्कार।
0: तो श्रोताओ ये जुड़े थे हमारे साथ रणवीर जी, और जिन्होंने इतनी अच्छी कहते हैं ना शायरी जो है बहुत ही दिल से निकली हुई शायरी हमारे साथ हमेशा शेयर करते हैं। और अभी जो बातें चल रही हैं हमारी सरहद के पे जो हमारे खड़े जवानों से रिलेटेड, तो कोई ना कोई ऐसा आपके साथ भी वाक्य हो तो हमें ज़रूर मैसेज करें और बताएं 9837896896 पे। हमारे साथ मैसेजेस आए हैं लाइन पार से, कह रहे हैं कि नमस्ते अखिल जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर प्रकाश नगर चौराहे पर बहुत बड़ी रैली निकली थी इवनिंग के टाइम में। अच्छा अच्छा तो बहुत आप भी उस रैली में पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था? और नहीं किया था तो जब भी ऐसी रैलियां निकलें तो पूरी कोशिश करें कि आप भी पार्टिसिपेट करें, अपने देश रिलेटेड अगर कुछ भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो आप भी उसका पार्ट बने, बस दूसरा कोई उसमें उससे परेशान ना हो। वैसे भी अब तो 15 अगस्त आ रहा है तो मेरे भाई नमन यादव ने भी अपने स्कूल में पार्टिसिपेट किया है, उसके स्कूल का नाम श्री सत्य साई एकेडमी है। बहुत बढ़िया, आपने नमन जी आपने पार्टिसिपेशन लिया है और बहुत दिल से करिएगा, अच्छे से परफॉर्म करिएगा। सर सर जी आज हमारी फरमाइश है कि आप एक देशभक्ति का गाना सुनाएं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया। ज़रूर हम इस शो के अंत में आपको ये आपकी जो फरमाइश है देशभक्ति के गाने की ज़रूर पूरी करेंगे। सर अब तो चक्कर के मिलक पर मेला लग रहा है। अच्छा ये आपने इन्फॉर्मेशन दी है, तो चक्कर के मिलक के आसपास जो जो हमारा सुन रहे हैं श्रोताओं और जो रहते भी हैं तो ज़रूर उस मेले का आनंद ले जाके और देखें। नाम है शंकर लाल यादव जी, निरांशी यादव, नमन यादव, अमित यादव, ऋतु यादव, लाइन पार मुरादाबाद प्रकाश नगर चौराहे से। तो कितना बढ़िया मैसेज किया हमारे पास एक लिसनर का, और हमारे पास मैसेज आया। सर जी सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं, सलमान अख्तर दोस्त लाइविया और फातिमा जी, सर जी एक गीत मेरी तरफ से भी शामिल कर दीजिएगा, सलमान अख्तर बिजनौर UP 20। बिल्कुल सही, आपका पिन जो आपने पकड़ा ना UP 20 बिल्कुल सही बताया आपने, UP 20, 21, 22, 23। ज़रूर हमें मैसेज करके बताइएगा कहाँ कहाँ के हैं, आसपास के कौन कौन से जितने भी मुरादाबाद से लगे हुए ज़िले हैं उनके, ज़रूर आपको ये कोड हमें बताइएगा RTO वाले, और हमें आप प्रोग्राम में अपने शामिल कीजिएगा ज़रूर ज़रूर। और आज आपकी फ्रेंड लाइवा जी का जन्मदिन भी है तो हमारी तरफ से और पूरी FM टीम की तरफ से स्पेशली हैप्पी बर्थडे लाइवा जी, और आप आएँ और खूब सारी पार्टी दें सभी को, तो मस्त रहें मुस्कुराते रहें। चलिए दोस्तों 9837896896 आपका इंतज़ार कर रहा है, कॉल कीजिए और खूब सारी गुफ्तगू कीजिए। तब तक एक गाना सुनते हैं पहले जो जेठालाल जी का फरमान।

वो पहला नहीं कितने

0: तो अभी आप सुन रहे थे हाँ जी तेरा हैप्पी बर्थडे नहीं, तो ये आज बर्थडे सॉन्ग प्ले हुआ था लाइबा जी के लिए। आज उनका है जन्मदिवस और खूब खुश रहें और खूब पार्टी करें। सरहद पर जो खड़े हैं उन्हें सलाम हमारा, उनके हौसले से रोशन है हिंदुस्तान हमारा। हम भी कुछ ऐसा करें इस देश के लिए कि गर्व से कहे भारत ये है बेटा हमारा। तो हाँ जी कुछ ना कुछ तो ऐसे करते रहना चाहिए कि हमारा देश भी हम पे गर्व करे कि मैं ऐसे देशवासियों का लीड कर रहा हूँ, ऐसा हूँ कि मुझे खुद पे गर्व है, ना कोई आँख उठा के देख सकता है ना ही कोई आँखें दिखा सकता है। दोस्तों हम अक्सर कहते हैं आर्मी को सलाम, लेकिन एक सवाल हम खुद से भी पूछते हैं कभी कभी, क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर तिरंगा लगाने से हमारे देश के प्रति फर्ज पूरा हो जाता है? शायद नहीं ना। एक जवान सीमा पर अपनी ड्यूटी निभा रहा है, हम अपने काम पर इतनी ईमानदारी से ड्यूटी निभा सकते हैं? एक जवान जब देश की सुरक्षा कर रहा है तो हम अपने आसपास के माहौल को सुरक्षित और साफ रख सकते हैं? और जब एक जवान देश के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है हम कम से कम अपने हिस्से की जिम्मेदारी तो निभा ही सकते हैं? तो ये तो एक बार सोचने का बनता है और इतना तो करना भी बनता है साहब। अभी हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं, चलिए करते हैं उनसे बात। क्या कहते हैं उस्मान जी? हेलो दिल से दिल तक, उस्मान जी कैसे हैं आप?
1: बस दुआएं साहब, आपका प्रोग्राम सुनने से साहब रुका नहीं जाता, आपको फोन जरूर करना पड़ता है।
0: नहीं नहीं धन्यवाद साहब, आपको अपना
1: प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से अंदाज से बहुत प्रस्तुत करते हैं।
0: तो उस्मान जी आज आपने क्या क्या धन्यवाद उस्मान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी अच्छे और कहते हैं ना मोटिवेशनल वर्ड बोल देते हैं तो और भी मन करता है कि प्रोग्राम को और अच्छे से हम प्रस्तुत करें।
1: मैं बाकी में आप बहुत ही अच्छा तरीके से प्रोग्राम चालू करते, बहुत ही अच्छा होता।
0: तो उस्मान जी आप बताइए, 15 अगस्त जैसे पास में आ रहा है तो कभी कोई ऐसी बात जो आप शायरी के उसमें सुनाना चाहें या एक शायरी सभी के लिए एक डेडिकेट करना चाहें सभी श्रोताओं के लिए पूरे देश के लिए?
1: वैसे तो नहीं देख अभी कोई तैयारी तो न करी ऐसी, वैसे मैं आपको शेर तो सुना सकता।
0: हाँ हाँ जरूर, एक शेर सुना दिए साहब, आप ऐसा शेर सुनाइएगा कि हम सब पकड़ लें उसे।
1: ये बात है साहब, बदलने लगी रोशनी निखरने लगी, तेरी निगाहों में जादू जगाए हैं क्या क्या, तुम्हारी नींद में डूबी हुई नजर की कसम, हमें इद है कि जागे भी और जगाए भी।
0: क्या बात है साहब, क्या बात है उस्मान जी, आपने बहुत ही बढ़िया शेर सुनाया है और मैंने जगह जगह जो है पिंजरे लगा दिए हैं, जरूर ये एक दिन पकड़ लूंगा मैं से। आजकल हमारे आसपास शहर में अगर अखबार जैसी सुबह उठाता हूँ मैं खोलता हूँ उसे तो शेर तेंदुए इन सब की जो न्यूज़ है वो पहले फ्रंट पेज पे रहती है। आसपास के गाँव में इन लोगों ने तेंदुओं ने इस समय बहुत ही उत्पात मचा रखा है, क्योंकि जब हम लोग उनके वातावरण में एंट्री लेते हैं तो वो भी हमारे वातावरण में एंट्री ले सकते हैं, ये तो बात हमें समझनी ही होगी।
1: जी सर, ये बात तो मान लेंगे। एक अजब शख्स बसा है बोली में, आईना देखो तो डर लगता है।
0: क्या बात है साहब, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया आपने बात कही। तो उस्मान जी आज आप गाना कौन सा सुनना चाहेंगे? क्या बात है आज, मतलब आपके डॉन बने घूम रहे हैं आज, कैसे क्या मतलब, या काला चश्मा पहन के घूम लिए थे दिन में आज?
1: नहीं साहब, हम तो एक सादे आदमी
0: हैं। कभी कभी कभी कभी कभी फीलिंग आ जाती है जब दिन में हम काला चश्मा पहन लेते हैं तो हम सभी में कहीं ना कहीं कोई छोटा सा डॉन वाली फीलिंग तो आ जाती है, अरे यार आज तो लुक भी ऐसा डॉन जैसा चल रहा
1: है।
0: नहीं नहीं साहब, हम धन्यवाद साहब, धन्यवाद,
1: क्योंकि प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया तरीके से अंदाज से प्रस्तुत करते हैं।
0: बस बस, आप जो इतनी बातें तारीफ कर रहे हैं तो शायद मेरे घर वाले या मेरी वाइफ सुन ले उसे, तो और भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद धन्यवाद उस्मान जी। तो श्रोताओं, ये उस्मान जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो इन्होंने आज खूब अच्छी शेर हमें सुनाए, और हम उस शेर को पकड़ने की कोशिश के लिए हमने पिंजरे भी बिछा दिए। चलिए तब तक एक गाना सुनते हैं। आपकी भी कोई ऐसी बात, ऐसी कोई कहानी, कोई मैसेज हो तो ज़रूर हमें शेयर करें 9837896896 पर।

एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम 89.6 पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो खूब सारी बातें हुई हैं, खूब सारी कहते हैं ना फरमाइशें पूरी हुई हैं, और दिल से दिल की बातें हुई हैं आज की। कैसे होता है जब भी 15 अगस्त पास में आता है तो कैसे अपना जो है ना हम सब का अपना सेक्रीफाइस याद आ जाता है, और कैसे हम लोग अपना अपना योगदान दे देते हैं, और कितना आनंद सा महसूस करते हैं कि 15 अगस्त के दिन हम क्या क्या करने वाले हैं। तो कहते हैं ना, अब चलिए अब आते हैं कुछ अपनी खास बातों पर। और कहते हैं ना कि जब हमारे बीच हर कोई तो सोल्जर नहीं बन सकता, ना ही हर कोई बॉर्डर पर नहीं जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि हम देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। एक टीचर ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाकर देश बनाता है, एक डॉक्टर ईमानदारी से मरीज का इलाज करके देश बनाता है, एक बिजनेसमैन ईमानदारी से टैक्स और कस्टमर के साथ सही व्यवहार करके भी देश बनाता है, एक स्टूडेंट मेहनत करके देश बनाता है, और एक सफाई कर्मचारी भी अपना काम ईमानदारी से करके देश बनाता है, और एक आम नागरिक जो ट्रैफिक रूल फॉलोस करके कूड़े को सड़क पे ना फेंके या ज़रूरतमंद की मदद करके अपने काम में ईमानदार रहकर भी देश बनाता है। तो आज हमें आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जब ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो कैसा लगता है आपको, और क्या क्या फीलिंग्स आपके साथ आती हैं। हमारे पास मैसेजेस आए हैं, और एक बहुत बड़ी ऐसी शायरी आई है

ललिता कश्यप नवीन नगर मुरादाबाद से। जो दिल लगाकर हम सुनते हैं, हर बात पर प्यार से जुड़ते हैं, ऐसे प्यारे लिसनर्स को सलाम। आपसे ही रोशन है हमारी हर शमा। क्या बात कही आपने ललिता जी, और बहुत ही बढ़िया शायरी लिखी है आपने। एक और चीज़ लिखी है, वो भी पढ़ के सुनाते हैं। आप सुनते हैं तो हर लफ्ज़ खास होता है, आप मुस्कुराते हैं तो हर पल एहसास हो जाता है। आपका प्यार यूं ही मिलता रहे हर बार, इसी से सस्ती है हमारी महफिल हर बार। क्या बात कही आपने। आज लगता है ललिता जी जो है पूरी शायरी के मूड में हैं, और 15 अगस्त आने वाला, तो ये भी जो है झंडा लेके घर की छत पे भागती हुई नज़र आएंगी, कहीं इधर कभी उधर। तो दोस्तों, चलने से पहले एक बढ़िया सा सॉन्ग आप सभी के लिए डेडिकेट करूँगा मैं। और हमारे पास एक लिसनर का और मैसेज आया है अभी, अंकित रामपुर से। मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को समय पर सैलरी दे दूँ और कस्टमर के साथ ईमानदारी से काम करूँ। क्या बात है अंकित जी, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही। और अभी हम इसी बात पे कर रहे थे डिस्कशन भी, कि हम लोग अपना कैसे कैसे योगदान दे सकते हैं इस देश को और भी मजबूत बनाने में, इस देश के साथ पूरे अच्छे, कहते हैं ना असली पेट्रियटिज्म जो है वो यही है कि हम अपना काम अच्छे से पूरा करें। ज़रूरी नहीं कि क्योंकि हर कोई नहीं जा सकता बॉर्डर पे अपनी सेवाएं देने, मगर जो देश से जुड़ा हुआ है कुछ ना कुछ अपना काम कर ही रहा है, तो वो भी एक अच्छी सेवा है और बहुत ही पेट्रियटिज्म है उसके अंदर। अपने काम में ईमानदारी रखना ही तो एक पेट्रियटिज्म है। एक हम पे मैसेज है सुनिधि का। मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा कंट्रीब्यूशन है कि मैं मेहनत से पढ़ाई कर रही हूँ और फ्यूचर में मैं अपने देश के काम में आऊँ। क्या बात है सुनिधि जी, आपने बहुत ही बढ़िया मैसेज किया है। और मुझे खुशी ये बात है कि आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा समय निकाल के FM भी सुनती हैं, और अच्छा लगा कि जब हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे मैसेजेस करते हैं तो बढ़िया लगा। हमारे एक धैर्य हैं स्टूडेंट जिनसे हमारी वार्तालाप होती रहती है, आजकल वो भी 15 अगस्त की लगता है तैयारी में लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा है क्योंकि आप ही लोग हैं जो, और जो ये चल रही है जनरेशन, तो उसमें आप अपना अपना योगदान देंगे ज़रूर, और आगे आके बहुत ही अच्छा आपका भी नाम हो, और जब नाम होगा तो देश का भी नाम अपना आप ही होगा। क्योंकि आपका जो हथियार है ना वो किताब है, जब किताब आपके पास है तो आप सब कुछ पार कर सकते हैं। एक अच्छी किताब, पहले भी बातें हुई थी कि जब भी आप कुछ पढ़ें ज़रूर एक आदत डालें एक अच्छी किताब पढ़ने की, और किसी भी रूप में जो भी आपकी पसंद हो वो उस चीज़ को ज़रूर पढ़ा करें। हमारे पास एक लास्ट मैसेज और हम पढ़ते हैं अभी अपना। मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि अपने आसपास गंदगी ना फैलाऊं और दूसरों को भी रोकूं। इन्होंने अपना कोई नाम मेंशन नहीं किया, मगर बहुत ही बढ़िया कोशिश करती हैं और बहुत ही बड़ा बदलाव होता है। इस छोटी सी कोशिश होती है मगर होता हमेशा बड़ा बदलाव है। अगर हर नागरिक अपने 10 कदम के आसपास भी सफाई की जिम्मेदारी ले ले, तो मैं ये समझता हूँ कि शहर सच में बदल सकता है। स्मार्ट सिटी सिर्फ पेपर्स पे नहीं, सामने दिखना भी चाहिए कि जब कोई दूसरे शहर का व्यक्ति आपके शहर से गुजरे तो उसे लगे हाँ कहाँ कहीं ना कहीं कुछ तो इस शहर में अलग बात है, कुछ एक अलग हवा है, कि यहाँ के लोग भी इतने साफ़ हैं कि देखिए कितना अच्छा साफ़ सुथरा शहर है। एक हमारे पास मैसेज है कि मुरादाबाद UP से रणवीर सिंह जेठालाल जी। देखो फिर रात आ गई, गुड नाइट कहने की बात आ गई। हम बैठे थे सितारों की पनाह में, चांद को देखा तो अखिल सर जी आपकी याद आ गई। क्या बात है, चांद को देख के आपको जेठालाल जी मेरी याद आ गई। थोड़ा सा ना बदलना पड़ेगा, चांद को देख के आपको कोई चांदनी वाली याद आनी चाहिए थी, मगर कोई नहीं, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको मेरी याद आई, हमें भी आपकी याद आती है, हमने आपका आपका मैसेज पढ़ लिया है और बहुत ही बढ़िया। एक मैसेज और है, हेलो अखिल सर, गुड इवनिंग है, आप कैसे हैं? अदिति कश्यप। अदिति कश्यप जी, मैं बहुत सही हूँ और बहुत ही ठीक हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ, पूरी उम्मीद है आप भी अच्छी होंगी और खूब मस्त होंगी। तो चलिए श्रोताओं, आज हुई खूब सारी बातें, पूरे दिल से दिल की निकली हैं सारी बातें आप लोगों की, तो क्यों ना आप करते हैं विदाई का काना, और कल फिर मिलेंगे दोबारा ठीक 9 से 10 के बीच, जहां होगी दिल से दिल की बात अखिल संग, आपके और हमारे बीच खूब सारी ढेर सारी बातें।
तब तक के लिए गुड नाइट, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और बिल्कुल मस्त रहें। और हाँ, जब कल निकलें तो अपने साथ अपना तिरंगा ज़रूर लेके निकलें। हर घर हर तिरंगा की जो मुहिम चल रही है वो ज़रूर होनी चाहिए। छोटा सा फ्लैग ज़रूर आपके आसपास होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये मैं सही से इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा या यूज़ नहीं कर पाऊँगा, तो ज़रूर आप उसे अपने को किसी और रूप में ज़रूर एक ड्रॉ करके एक हल्के सा एक फ्लैग बना के अपने साथ अपनी पॉकेट में रखें, तो एक थोड़ी सी फीलिंग और अच्छी हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी इस गाने के बाद कल ठीक 9 बजे।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.